सुप्रभात। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन मंगलवार है। शक संवत 1947 के वैशाख मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो।

तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। इस संसार में सत्य ही एकमात्र है जो अनंत है। इसके अलावा सभी का अंत तय है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से कहीं अच्छा है एक दिन समझदारी के साथ जीना। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, अगर सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र को शुद्ध करो। सच्चाई को अपनी जमीन और घर ना बनाए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।

अभी आपने सुना जीवन सौरभ। आइए अब आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित की जाने वाले अन्य कार्यक्रम। अब से ठीक बाद सुनिएगा कार्यक्रम अक्षय निधि मंडल एक सूक्त 102 और उसके बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। रोजाना की तरह सुबह 6 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन, माफ कीजिए से दोबारा सुन ले, रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुधा अनुपम का। प्रकृति की पुकार यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर। मृदा विषय पर होगा आज का कार्यक्रम, डॉक्टर प्रवीण सोलंकी से फराज फैयाज की बातचीत आपको सुनवाएंगे। श्री राम की वैराग्य दशा इस विषय पर सुनिए आज का योग संवाद सुबह 9 बजे। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी से सुनीता सिंह की बातचीत कार्यक्रम में सुनिएगा। सुबह 9:30 पर सुनिए विशेष कार्यक्रम स्वर्गीय आशा भोसले जी पर, ये दिल अभी भरा नहीं। प्रस्तुत करता है फराज फैयाज़।

सुबह 10 बजे का समय होगा कार्यक्रम परिक्रमा का। आजाद हिंद, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। प्रतिलता वद्देदार की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम आजाद हिंद। गर्मी के मौसम में अपने पेट का ख्याल कैसे रखें, इस विषय पर सुनिए आज की स्वास्थ्य चर्चा 11 बजे। पशु चिकित्सक डॉक्टर अंकुर नारद से दीप्ति तंतवाय की खास बातचीत। युग प्रवर्तक विवेकानंद, ये कार्यक्रम सुनिए 11:30 पर। तो ये थे आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 102 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं इंद्र, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
2: इमाम ते धियम प्रभरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्त आनजे तमुत्सवे च प्रसवे च सासहिमिन्द्रम देवासह शव सामदन्ननु। हे महान यशस्वी इंद्रदेव, आप शत्रुओं को पराजित करके उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं। हम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। उत्साही देवगण अपने धनों की वृद्धि व रक्षा के लिए आपको प्रसन्न करते हैं। अस्य श्रवो नद्यः सप्त बिभ्रति द्यावा क्षामा पृथिवी दर्शतम वपुः। अस्मे सूर्या चंद्रमसाभिचक्षे श्रद्धे कमिंद्र चरतो वितर्तुरम। इन इंद्रदेव के कर्तव्य जलवर्षण की कीर्ति को सप्त सरिताएं तथा मनोहारी रूप को पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक धारण करते हैं। हे इंद्रदेव, आपकी तेजस्विता से प्रकाशित होकर सूर्यदेव और चंद्रमा प्राणी मात्र को श्रद्धा युक्त ज्ञान एवं आलोक देने के लिए नियम पूर्वक गतिमान होते हैं। तम स्मारथम मघवन प्राव सातये जैत्रम यम ते अनुमदाम संगमे आजान इंद्र मनसा पुरुष्टुत त्वायद भयो मघवन छर्म यच्छनः। हे वैभव संपन्न इंद्रदेव, आप हमारी विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं से प्रसन्न हों। आपके जिस विजय रथ को सेना के साथ होने वाले संग्राम में देखकर हम आनंदित होते हैं, उसी रथ को हमारी विजय के लिए प्रेरित करें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप हमें सुख प्रदान करें। वयम जयेम त्वया युजा व्रतमस्माकमं शमुदवा भरे भरे अस्मभ्यमिंद्र वरिवह सुगम कृधि प्रशत्रूणां मघवन वृषण्या रुज। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आपके सहयोग से हम घिरे हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। आप प्रत्येक संग्राम में हमारे पक्ष की सुरक्षा करें। आप हमारे शत्रुओं की सामर्थ्य को क्षीण करें, जिससे हम प्राप्त धन का निर्विघ्न होकर उपयोग करने में समर्थ हों। नानाहित्वा हवमाना जना इमे धनानाम धर्त रवसा विपन्यवह अस्माकं स्मा रथमा तिष्ठ सातये जैत्रम हींद्र निभृतम मनस्तव। धन को धारण करने वाले हे इंद्रदेव, आपके आवाहन करता और स्तोता अनेक मनुष्य हैं, अतएव आप संपत्ति प्रदान करने के लिए मात्र हमारे ही रथ पर आकर विराजमान हो। स्थिरता युक्त आपका मन हमें विजयी बनाने में पूर्ण सक्षम हो। गोजिता बाहु अमित क्रतु सिमह कर्मन कर्मन क्षतमूति खडंकर अकल्प इंद्र प्रतिमान मोजसा था जना वी हुयंते सिशासवः। बलवान इंद्रदेव की भुजाएं गौवों को जीतने में सक्षम हैं। वे श्रेष्ठ इंद्रदेव प्रत्येक कर्म में संरक्षण साधनों से संपन्न हैं। वे अतुलित शक्ति सामर्थ्य युक्त संघर्षशील अद्वितीय पराक्रम की प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए धन की कामना से मनुष्य उनका आवाहन करते हैं। उत्ते शतान मघवन्नुच्च भूयस उत्सहस्राद्री ऋचे कृष्टिषु श्रवः अमात्रम त्वाधिषणा तित्विषे महियधा वृत्राणि जिघ्नसे पुरंदर। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, मनुष्यों में आपकी कीर्ति सैकड़ों और हजारों रूपों से भी बढ़कर है। मनुष्यों की बृहत प्रार्थनाएं अतुलित शक्तिशाली इंद्रदेव की महिमा को प्रकट करती हैं। अभेद्य दुर्गों को तोड़ने में समर्थ हे इंद्रदेव, आप शत्रुओं का हनन करने में समर्थ हैं। त्रिविष्टि धातु प्रतिमान मोजसस्तिस्रो भूमिर नृपते त्रीणि रोचना अतीदं विश्वं भुवनं ववक्षिथा शत्रुरिंद्र जनुषा सनादसि। हे मनुष्यों के संरक्षक इंद्रदेव, आप तीनों लोकों में तीन रूपों सूर्य अग्नि और विद्युत में स्थित हैं। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से तीन भूमियों तीन तेजों तथा इन संपूर्ण लोकों को संचालित कर रहे हैं। आप प्राचीन काल से जन्म के समय से ही शत्रु रहित हैं। त्वाम देवेशु प्रथमं हवामहे त्वं बभूथ प्रतनासु सासहिः सेमं नः कारु मुपमन्यु मुद्भि दमिन्द्रः कृणोतु प्रसवे रथं पुरः। हे इंद्रदेव, आप देवों में सर्वश्रेष्ठ प्रधान रूप हैं। हम आपका आह्वान करते हैं। आप युद्धों में शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं। अति क्रोध युक्त शत्रुओं को भी पीछे धकेलने वाले इस कलापूर्ण रथ को आप सदैव आगे रखें। त्वं जिगेथ न धना रुरोधिथार भेष्वाजा मघवन महत्सु च त्वामुग्रमवशेषं शिशिमस्यथा न इंद्र हवनेषु चोदय। हे धनवान इंद्रदेव, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने पर धनों को अपने तक सीमित नहीं रखते, अर्थात संग्रह नहीं करते, सत्पात्रों को बांट देते हैं। छोटे और विशाल युद्धों में अपने संरक्षण हेतु योद्धागण इंद्रदेव को ही बुलाते हैं। अतएव आप ही उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्व परिहृवृताः सनुयामवाजम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः। हे इंद्रदेव, आप सदैव हमारे पक्ष के अधिवक्ता हैं। हम भी द्वेष पूर्ण व्यवहार से रहित होकर अनादि प्राप्त करें। इसीलिए मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और दिव्यलोक सभी हमें वैभव संपदा प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 102 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

आंध्र प्रदेश के कंदकुर्ती गांव में हेडगेवार परिवार रहता था। उसी परिवार के कुछ लोग महाराष्ट्र के नागपुर में आ गए। नागपुर में ही बलिराम हेडगेवार और उनकी पत्नी रेवती सुशीला के यहाँ 1 अप्रैल 1889 को गुड़ी पड़वा के दिन केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ। गुड़ी पड़वा का अर्थ है ध्वजारोहण करना। इसी दिन सभी लोग अपने घरों पर झंडा फहराते हैं और द्वारों पर तोरण आदि बांधकर उल्लास प्रदर्शित करते हैं। हजारों साल पहले इसी दिन लंका पर विजय के बाद भगवान राम ने अयोध्या में प्रवेश किया था और इसी दिन राजा शालिवाहन ने मिट्टी के घुड़सवारों में प्राण फूंक कर उनके द्वारा आक्रमणकारी शकों को मार भगाया था। बचपन में माता रेवती बाई केशव को शिवाजी की देशभक्तिपूर्ण कथाएं सुनाती थी। इन कहानियों का केशव के मन पर गहरा असर पड़ा। सन 1902 में भारत के कई शहरों में प्लेग फैला था, उससे नागपुर के लोग भी नहीं बच पाए। बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ उनका हाल पूछने नहीं जाता था, लेकिन केशव के माता पिता लोगों के घर घर जाकर उनका हाल पूछते। हालांकि उन्हें भी प्लेग का शिकार होना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। केशव नागपुर में जिस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी दौरान एक दिन अंग्रेज निरीक्षक विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए। कक्षा में उनके आते ही केशव के कहने पर सभी छात्र एक साथ

निरीक्षण का कार्य ठप हो गया, अधिकारी हेडमास्टर पर बरस पड़े। शिक्षकों ने लड़कों को मारा पीटा, डराया धमकाया, लेकिन किसी ने भी केशव का नाम नहीं लिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए विद्यार्थी घर वापस चले गए, लेकिन बात छिपी नहीं रह सकी। केशव पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला गया। केशव ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो शासन अपनी माँ को प्रणाम नहीं करने देता वो अन्यायी है। इस पर केशव को विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद केशव ने यवतमाल और पूना में पढ़ाई की। उनके पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं थीं, ऐसे में वे दूसरों से पुस्तकें मांगकर लाते थे, रात के एकांत में पढ़ते और सुबह लौटा देते। युवकों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाना ही उनका प्रमुख कार्य था। उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस के कार्यवाहक के नाते कार्य किया। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्हें भोजन व्यवस्था का कार्य दिया गया था। सन 1921 में असहयोग आंदोलन छिड़ा, तब उन्होंने उग्र भाषण दिए। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद केशव राव ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके नवयुवकों को एकत्र किया और सन 1925 के विजयदशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।

22 जून 1897 का दिन था। अंग्रेज महारानी विक्टोरिया राज के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में समारोह मना रहे थे। जिस स्कूल में केशव हेडगेवार पढ़ते थे वहां मिठाइयां बांटी गईं। सभी छात्र अंग्रेजों तथा रानी विक्टोरिया की स्तुति करने लगे। केशव से ये नहीं देखा गया, उन्होंने मिठाई को कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। केशव के एक इशारे पर सभी छात्रों ने मिठाई फेंक दी। जब विवाह के संबंध के प्रस्ताव आए तो उन्होंने अपने चाचा जी को पत्र लिखकर कहा था, मैंने आजन्म देश सेवा का व्रत लिया है, मेरे जीवन में न निजी सुख के लिए जगह है और न निजी परिवार के लिए। देश की सेवा करते समय न जाने कितनी बार जेल जाना होगा, हो सकता है जान की बाजी भी लगानी पड़े, इसलिए मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचें। सन 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध कानून तोड़ने का आंदोलन चला। इसी आंदोलन के अंतर्गत केशव राव ने यवतमाल जिले में जंगल सत्याग्रह किया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की जेल हुई। सतत काम करते रहने से केशव राव सन 1940 में बीमार हो गए और 21 जून 1940 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: गेल्मर वोसबर्ग एक डच सर्जन और मुगल दरबार की कूटनीति। 17वीं शताब्दी के बंगाल के आर्द्र नदी क्षेत्रों में शक्ति हमेशा औपचारिक संधियों या भव्य दूतावासों के माध्यम से नहीं दिखाई जाती थी। अक्सर ये एक शासक और डॉक्टर के बीच पाई जाती थी। इस अनूठी गतिशीलता के केंद्र में गेल्मर वोसबर्ग थे, जो एक डच सर्जन थे। वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक मीर जुमला के बीच एक कूटनीतिक सेतु बन गए थे। 1660 तक मुगल उत्तराधिकार के युद्ध ने साम्राज्य के पूर्वी सीमांत को उच्च तनाव की स्थिति में छोड़ दिया था। सम्राट औरंगजेब के मामा और एक प्रतिभाशाली उद्यमी सेनापति मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मीर जुमला का राजनैतिक और व्यापारिक प्रभाव इतना अधिक था कि वे अक्सर यूरोपीय कंपनियों पर अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए धन, हथियार और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए दबाव डालते थे। कपड़ा और शोरा के आकर्षक व्यापार को बनाए रखने के लिए बेताब वीओसी को लगा कि वे केवल तटस्थ नहीं रह सकते। जीवित रहने के लिए उन्हें मीर जुमला की सेवा में खुद को शामिल करना ही पड़ा। इस जबरन सहयोग के हिस्से के रूप में मीर जुमला ने वीओसी से विशेषज्ञ कर्मियों को लीज पर लेना शुरू किया, जिनमें जहाज निर्माता, नाविक और सर्जन गेल्मर वोसबर्ग शामिल थे। जहां उनका प्राथमिक कार्य नवाब और उनके आंतरिक घेरे के स्वास्थ्य की देखभाल करना था, वहीं बटविया के डच निदेशकों और ढाका के फैक्ट्री प्रमुखों ने डॉक्टर के लिए कहीं अधिक रणनीति उपयोग देखा। मीर जुमला के साथ निकटता के कारण कंपनी वोसबर्ग को दैनिक कूटनीतिक व्यवहार करने के लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति मानती थी। प्रांतीय कूटनीति की दुनिया में जहां विशिष्ट स्थानीय बातचीत अक्सर दिल्ली के शाही फरमानों से अधिक महत्वपूर्ण होती थी, वोसबर्ग एक मुख्य कड़ी थे। जहां ढाका के डच प्रतिनिधि को सप्ताह में एक बार नवाब से मिलने की उम्मीद थी, वहीं वोसबर्ग नवाब के घेरे के भीतर ही रहते थे। वे कंपनी की आंख और कान थे, जो मीर जुमला के मूड को भांपने और चिकित्सा देखभाल के अनौपचारिक क्षणों के दौरान चुपचाप डच हितों की वकालत करने में सक्षम थे। ये व्यवस्था एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी, जहां वीओसी ने अपनी विशेषज्ञता नौसैनिक शक्ति से लेकर चिकित्सा ज्ञान तक को महत्वपूर्ण बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल किया। वोसबर्ग की सेवा ने कंपनी को उस कठिन दौर में रास्ता खोजने में मदद की, जब मीर जुमला आक्रामक रूप से हिजली द्वीप जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे। एक ऐसा सर्जन प्रदान करके जिस पर नवाब भरोसा कर सके, वीओसी ने यह सुनिश्चित किया कि सैन्य समर्थन के लिए दबाव के बावजूद उनका व्यापार चलता रहे। गेल्मर वोसबर्ग की कहानी उस युग के ऐसे प्रविधि को दर्शाती है जहां यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई शक्ति संरचनाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार का इतिहास अक्सर व्यक्तिगत विश्वास और सामाजिक निकटता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के बंगाल में एक सर्जन की कैंची और गवर्नर के तंबू में फुसफुसाए गए कुछ शब्द कभी कभी वैश्विक साम्राज्य के हितों को सुरक्षित करने में युद्ध पोतों के बेड़े जितने ही शक्तिशाली होते थे।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है।
3: अब समय है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार का। श्रोताओं, प्रकृति की पुकार में आज हम बात करेंगे मृदा यानी मिट्टी की, यानी माटी की।
2: सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद में।
4: नमस्कार जी।
2: नमस्कार प्रवीण जी, पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ की मिट्टी में पले बड़े और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
4: जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण सोलंकी, मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ और वहीं से मैंने कुछ समस्याएं देखी थी कि एक तरफ हमें देखने को मिलता था कि जो आसुत जल है, मतलब गंदा पानी है, वो बहुत ज्यादा है, उसके प्रबंधन की समस्या हो रही है
2: जी।
4: और दूसरी तरफ जो शुद्ध जल है वो पीने तक के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है
2: जी।
4: तो वहीं से मैंने इस दिशा में कुछ कार्य करने का फैसला किया था और देखते देखते मैंने इस क्षेत्र में BSc कृषि किया, फिर MSc कृषि किया, उसमें पर्यावरण विज्ञान विषय लिया और फिर PhD जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है
2: जी,
4: वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वहां से मैंने पर्यावरण विज्ञान में PhD किया, जहां पर गंदे पानी को कैसे कम किया जाए और उसका उपयोग कैसे कृषि कार्यों के लिए किया जाए
2: जी,
4: ताकि कृषि कार्यों की जो शुद्ध जल पर निर्भरता है वो कम हो, शुद्ध जल केवल पानी के लिए उपयोग किया जाए
2: जी,
4: और जितना भी गंदा पानी है चाहे उसको एक लेवल के तक शुद्ध किया जाए, उसके बाद कृषि के लिए उपयोग किया जाए
2: जी।
4: कृषि में भी कोशिश ये की है हमने कि उस पानी को नॉन एडिबल, मतलब जो खाने के लिए उपयोग नहीं करना है उसके लिए करना है, जैसे पूरे फ्लावर
2: जी,
4: फ्लावर को हम यदि गंदे पानी से भी सिंचाई करें तो उसमें कीटाणु या फिर हैवी मेटल की कोई समस्या नहीं रह जाती है
2: जी।
4: इसलिए मैंने इस तरीके से आगे बढ़ के और विगत 8 वर्षों में मैं कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में मृदा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ
2: जी।
4: यहाँ पर हमने खेती किसानी में कैसे किसान कम खाद का उपयोग करके मिट्टी परीक्षण करवा के, हरी खाद का उपयोग करके मिट्टी को भी कैसे संरक्षित करे, क्योंकि मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है आवश्यक, वो हमारे फल के जो फूड के जो चेन है उसमें आते हैं और उसी से हमें फिर पोषक तत्व मिलते हैं।
2: अच्छा अच्छा।
4: मिट्टी की उर्वरता में भी हमारा बहुत पूर्ण योगदान है। हम केंद्र के माध्यम से नवीन कार्यक्रम करते रहते हैं, किसानों को जागरूक करते रहते हैं। इस तरीके से मैं धीरे धीरे एक छोटा सा प्रयास, लेकिन ट्रूथफुल प्रयास, एक मीनिंगफुल प्रयास कर रहे हैं ताकि जो मिट्टी की उर्वरता है, वातावरण की शुद्धता है
2: जी,
4: वो बनी रहे और सतत टिकाऊ का जो सिद्धांत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें हम थोड़ा सा योगदान करते रहे।
2: विश्व मृदा दिवस को बनाने का उद्देश्य क्या है, अगर आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, कब से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई?
4: कभी भी हमें अगर कोई दिन या फिर कोई विशेष अभियान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाना होता है तो निश्चित ही उसमें उस लेवल का मोटो दिया जाता है, उसे मनाने का क्या महत्व है ये बताने के लिए भी एक बड़ा बेस बनाया जाता है। तो जो विश्व मृदा दिवस है वो एक जो थाईलैंड के महाराजा थे
2: जी,
4: वो मृदा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयत्न करते रहते थे, तो उनका जो जन्मदिन है वो 5 दिसंबर को आता है और उनका जो नाम है राजा भूमि बोल, उनके जन्मदिन को यादगार के रूप में इस दिन का चयन किया गया। उसके बाद फिर 2002 में जो इंटरनेशनल सॉइल साइंस का यूनियन है
2: जी,
4: उसने भी इसको हरी झंडी दे दी कि ठीक है 5 दिसंबर को मनाना चाहिए। और आखिरी में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अनुशंसा पर जो अपना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होता है
2: जी,
4: उसने इसको पूर्ण रूप से मान्यता दी 2013 में। उस साल से ये विधिवत रूप से विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यहाँ तक कि जो हर 10 साल का एक कार्यक्रम होता है यूनाइटेड नेशंस का
2: जी,
4: उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर सॉइल संरक्षण, मतलब 10 साल तक एक कार्यक्रम चलाता है यूनाइटेड नेशंस, तो वो 2015 से 2025 तक हो चुका है, मतलब ये अपना 2025 जो है वो उसका 10वां साल है उस कार्यक्रम का, मतलब 10 साल तक एक कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस चलाता है जहां यूनाइटेड नेशंस को लगता है कि हाँ इस क्षेत्र में 10 साल तक कार्य करने की जरूरत है, तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बड़े प्रयास किए जाते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो और उसके संरक्षण में वो महत्वपूर्ण कार्य कर सके।
2: सर, मृदा हमारे जीवन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर आप समझाएं।
4: देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे भोजन में वही पोषक तत्व आते हैं जो हमारी मिट्टी में है
2: जी,
4: है ना। मिट्टी में वो भोजन के जो पोषक तत्व, जो भोजन पौधा जो पोषक तत्व दोहन करता है, वही पौधा पोषक तत्वों को अनाज में भी डालता है। अगर एक इसे उदाहरण से समझें कि अगर हम ऐसी मिट्टी का लगातार गेहूं खा रहे हैं जिसमें आयरन डिफिशियंसी है, लोहे की कमी है, तो निश्चित ही हमारे गेहूं में भी आयरन की डिफिशियंसी रहेगी और धीरे धीरे हमारे शरीर में भी आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी और हमें एनीमिया हो जाएगा। अब हमारी मिट्टी की उर्वरता और हमारा भोजन, हमारा जीवन का संतुलन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है। इसलिए कहते हैं कि मिट्टी का जो संरक्षण है, मिट्टी का जो संतुलन है पोषक तत्वों के मापदंड से, वो हमेशा संतुलित बना रहना चाहिए। इसके बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं कि कैसे ये संतुलन बना रहे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर मिट्टी में कोई पोषक तत्व कम हुआ तो निश्चित ही वो हमारे अनाज में भी कम होगा, और अनाज में यदि कम हुआ और उसी अनाज को हम लगातार खा रहे हैं तो हमारे शरीर में भी वो न्यूट्रिएंट डिफिशियंट हो जाएगा और उसके हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लगेंगे। फिर हम केवल पेट भरने के लिए भोजन करेंगे, क्योंकि पहले जो सिद्धांत था वो फूड सिक्योरिटी का था, मतलब खाद्यान्न सुरक्षा, इतना उत्पादन करना है कि कोई भूखा ना सोए। लेकिन आज जो उत्पादन है वो तो पर्याप्त है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कम है, मतलब जो पोषण सुरक्षा है, जो पोषक तत्व की सुरक्षा है कि हमने अगर भोजन करा है तो हमारे शरीर के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्या वो सब उसमें अवेलेबल है। अगर वो नहीं है तो फिर हम इम्बैलेंस डाइट ले रहे हैं, फिर हमें हमारी बैलेंस को डाइट करना पड़ेगा। और पर्टिकुलर हम डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जब विश्वव्यापी बात आती है, हर गरीब को भी बैलेंस डाइट मिले, तो वो तभी मिल पाएगा जब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का गेहूं है उस गेहूं में भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स रहे
2: जी।
4: तभी तो पोषक तत्व सुरक्षा होगी ना
2: जी।
4: हम इंडिविजुअल तो कर सकते हैं, लेकिन हर कोई कर ले, इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे सॉइल में ही न्यूट्रिएंट बैलेंस हो जाए, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो
2: जी।
4: वो फुलफिल करे सारे न्यूट्रिएंट्स को।
2: आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है और सब इससे जुड़े हैं, शहरों में, गांवों में, तो इसके जरिए किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है?
4: जी, बड़ा अच्छा ये प्रश्न है, क्योंकि अभी तो ऐसा एक सिनेरियो चल रहा है कि जो चीज पहले 10 दिन में पता चलती थी
2: जी,
4: जो चीज पहले 1 दिन में पता चलती थी, वो आज सेकेंड्स में पता चलती है
2: जी।
4: इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं कि जो भी अवेयरनेस है तो उसका हम लोग लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। कैसे हम सॉइल को वापस न्यूट्रिएंटिव कर सकते हैं, कैसे उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हमने हरी खाद का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो हमने किसानों को लाइव दिखाया था
2: जी।
4: कि कैसे हम लोग हरी खाद की फसल को 35 दिन या जो भी फसल हो उसकी फ्लावरिंग स्टेज पर रोटावेटर कर देते हैं और पानी चला देते हैं और उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 लीटर प्रति एकड़ डाल देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर अबंडेंट क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है, ये पूरा सॉइल में जाके सॉइल की जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जिसको मिट्टी की जान कहते हैं, वो अगर बढ़ जाता है तो निश्चित ही हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरीके से हम जो टेक्नोलॉजी है उसको बिल्कुल आसानी से वीडियोग्राफी करके भी बताना बहुत आसान हो गया है। मतलब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसका वीडियो बनाकर तुरंत ही लाइव टेक्नोलॉजी से उसको डिसिमिनेट कर देते हैं। हमारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, सबसे हम लोग किसानों को कनेक्ट करके रखे हैं, और जो भी कोई कार्यक्रम यहाँ करते हैं तो तुरंत उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ताकि किसान को इजी टू अंडरस्टैंड रहे और दूसरा वो तुरंत टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर ले। ये बहुत जरूरी है आज। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले इफको का वेस्ट डिकम्पोजर का भी डेमो किया था कि कैसे हम नरवाई का प्रबंधन कर सकते हैं। तो वो हमने पूरा यहाँ डेमो बनाकर दूसरे ही दिन उसको सारे YouTube Facebook पे डाल दिया और किसानों के फीडबैक भी आने लगे कि हमें ये चाहिए, हमें इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज करके कम समय में हमारी जो टेक्निक है उसको किसान तक इजी वे में पहुंचा सकते हैं।
2: एक सवाल और ये निकल के आता है कि मृदा क्षरण एक चुनौती क्यों बनता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
4: मृदा क्षरण देखिए एक चुनौती इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि हम एक तो फसल एकीकरण बहुत अपनाया है किसानों ने। किसानों की दृष्टि से यदि बात करें तो उसने फसल एकीकरण अपनाया है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने भी मृदा क्षरण में बहुत योगदान दिया है। कहीं ना कहीं जो हमारा डेवलपमेंट है, चाहे वो रोड की बात करें या रेलवे रोड की, या फिर जो कहीं भी अगर कोई अगर सिटी बनता है
2: जी,
4: तो वो सिटी पूरा आप ये मान लीजिए कि स्क्वायर किलोमीटर मोर देन दैट पूरा सीमेंट कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट? मतलब वहां का जो वाटर होल्डिंग या यूं कहें कि वाटर एब्जॉर्प्शन है वो जीरो हो जाता है। अब पानी की इंटेंसिटी तो उतनी है रेनफॉल की, तो वो जितना भी पानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में गिरा है वो पूरा फ्लडिंग करके बिल्कुल स्पीड से नदी का रास्ता ढूंढेगा।
2: जी जी,
4: है ना। जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का वाटर एब्जॉर्प्शन था वो पूरा एब्जॉर्ब न होके पूरा आगे बढ़ जाएगा।
2: जी,
4: इसे बहुत शुद्ध तरीके से यूं समझें कि अगर हम हमारे एक शर्ट पे पानी डालेंगे तो वो 1 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेगा।
2: जी,
4: वहीं अगर 1 लीटर पानी अगर हम रेनकोट पे डालेंगे पूरा उसको रिफ्लेक्ट करके आगे पहुंचा देगा।
2: सही।
4: तो वो जो वाटर की इंटेंसिटी है और वो जो अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसने सॉइल इरोजन को बहुत बढ़ाया है। मतलब सॉइल को पूरा इरोज करके बहा के अपने साथ नदी नाले में ले गया।
2: जी।
4: इसी तरीके से किसान ने भी केवल एक ही फसल एकीकरण किया है। मतलब अभी अगर हम नर्मदापुरम का उदाहरण लें तो हमारे जिले में अभी 90% एरिया में गेहूं लगा है।
2: जी।
4: तो गेहूं को धान के बाद लगाया गया है। 90% एरिया में धान भी था, तो धान को भी वही न्यूट्रिएंट चाहिए जो गेहूं को चाहिए, गेहूं को भी वही चाहिए जो धान से ले ऑलरेडी ले चुके हैं धान। तो ऐसे में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का जो सॉइल में बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। मतलब हमारे सॉइल में से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ न्यूट्रिएंट है जिनको फसल की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि फसल को बदल के नहीं लगाया गया। ऐसे तो में किसानों को चाहिए कि जैसे अभी मैंने अगर गेहूं का उदाहरण दिया तो चना भी लगाए कुछ किसान, या फिर सेम किसान 10 एकड़ है तो इस बार 3 एकड़ में गेहूं, 3 एकड़ में चना, 3 एकड़ में मटर मसूर, इस तरीके से अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे, फसल विविधीकरण, फसल एकीकरण की जगह यदि फसल विविधीकरण करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट भी यदि होता है जो कहीं ना कहीं हमें जो इथिकल नॉर्म्स है, जो CSR का जो नॉर्म्स होता है,

0: या बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हमने सुना है कि 1 इंच मिट्टी बनने में 1,000 साल लगते हैं। अगर कोई चट्टान है, उस 1 इंच की चट्टान पे 1 इंच मिट्टी बनना है, तो वो 1,000 साल लगते हैं। हजारों साल की प्रोसेस होती है, विदरिंग की और केमिकल ऑक्सीडेशन की, फिजिकल फिक्सेशन की, तब जाके 1 इंच मिट्टी बनती है। तो इस क्षरण पे बहुत ही गंभीरता से लेने का विषय है, चाहे वो किसान की बात हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अर्बनाइजेशन की। तो वहां पर जो भी इथिकल नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन या फिर जो भी अपन हरी खाद की फसल या फसल विविधीकरण है, वो सभी अपनाने चाहिए।
1: सर, मृदा स्वास्थ्य को किस तरह से मेजर किया जा सकता है?
0: जी, अगर एक किसान की दृष्टि से बात की जाए, क्योंकि मिट्टी दो तरीके से स्टडी की जाती है मिट्टी की। एक तो होता है पेडोलॉजी, मतलब मिट्टी कैसे बनी है, उसका विकास कैसे हुआ और उस पे कितनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है, मतलब अर्थक्वेक की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से, सुनामी की दृष्टि से। तो ये पूरा अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। तो दूसरा अध्ययन होता है इडेफोलॉजी, मतलब इसमें कितने पोषक तत्व हैं, इसकी उर्वरता क्या है, इसको कितने प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। किसान की दृष्टि से इडेफोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, मतलब हम मिट्टी परीक्षण से, सामान्य प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण की जो भी मशीनें होती हैं, उससे हम लोग ज्ञात करते हैं कि हमारी मिट्टी का जैविक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, अवेलेबल फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। तो इस तरीके से 12 पैरामीटर ज्ञात करके हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी की क्या उर्वरता की स्थिति है। अब अगर उर्वरता की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो हमें उसमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हम एक औसत उपज प्राप्त कर सकें। तो ये पूरा अध्ययन इडेफोलॉजी के अंतर्गत आता है, ताकि हम किसानों को भी बता सकें कि आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है, और अगर आप धान लगा रहे हैं तो विशेष रूप से आपको जिंक डालना है। अगर आपकी मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा है, तो आपको उसको मृदा सुधारक के द्वारा ऑप्टिमम पीएच तक लाना है, ताकि जो सभी पोषक तत्व की उपलब्धता है वो अच्छी रहे। तो इस तरीके से हम मिट्टी को जांच कर सकते हैं, मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं और किसानों को बता सकते हैं। और एक जो दूसरा मैंने बताया पेडोलॉजी का, उसमें ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी वाला अध्ययन होता है। ये जनरली जब बहुत बड़ी बिल्डिंग, जो मुख्यतः भूकंप के जोन में आती है, वहां बनाना है, या फिर बहुत बड़ा डैम बनाना है, तब वहां पर ये इडेफोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, ताकि ये पता कर सकें कि वहां पर क्या बिल्डिंग निर्माण करना चाहिए, या फिर करें भी तो कितने फ्लोर तक बनाना है। दैट्स इट।
1: सर, एक सवाल और हमारे जहन में आ रहा है कि मृदा की जो उर्वरता कम होने के मुख्य कारण आप किन को समझते हैं?
0: देखिए, जो मुख्य कारण है वो तो मृदा उर्वरता की, यदि खेती किसानी की दृष्टि से बात करें, तो एक किसानों ने क्या है, नरवाई का प्रबंधन सही से नहीं समझा है, उसका महत्व नहीं समझा है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाने का प्रयास करूं किसानों को, अगर आज से 25 साल पहले की खेती यदि देखें, तो उसमें जो मृदा उर्वरता या फिर पोषक तत्व प्रबंधन का जो सबसे ताकतवर सिद्धांत था, वो था कि जो भी फसलों से अवशेष निकलते हैं वो पशुओं को खिलाए जाते हैं, और पशुओं से जो भी अवशेष मल मूत्र, गोबर, उनकी त्वचा से गिरने वाले बाल, लार इत्यादि, ये सभी पोषक तत्व खाद के रूप में किसान वापस मिट्टी में डालता था। मतलब जो पोषक तत्व पौधे ने लिए हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से सारे मिट्टी में डालता था। अब ये कार्य किसान ने करना बंद कर दिया है। कारण चाहे कुछ भी कहें, एक तो वो नरवाई जला देते हैं, गोबर गोमूत्र की बहुत ही कमी है, पशु नहीं रख पा रहे हैं। तो ये जो कुछ सिद्धांत हैं, मतलब वास्तविक सिद्धांत था जो पोषक तत्व प्रबंधन का, मृदा उर्वरता का, ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रबल कारण कह लीजिए मृदा उर्वरता को खत्म करने का, कि उसने नरवाई का सही प्रबंधन नहीं किया, गोबर गोमूत्र नहीं डाला, और फसल का एकीकरण किया। मतलब कुछ ऐसी ही फसलें बहुत ज्यादा लगातार लगाई जिनका पोषक तत्व की आवश्यकता समान थी, इसलिए मिट्टी में वो पोषक तत्व कम हो गए।
1: जी
0: भाई मांग और सप्लाई का जो सिद्धांत था उसमें मांग ही मांग बढ़ती गई, बस
1: जी
0: उसने वो पोषक तत्व डाले कम, और कुछ पोषक तत्व बहुत मात्रा में मिट्टी में आज भी है, जैसे पोटेशियम है, लोहा है, तो ये मिट्टी में है क्योंकि इनकी जिन फसलों को आवश्यकता है वो तुलनात्मक रूप से उतनी नहीं लगाई गई।
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की जो

0: पकने की अवधि रहती है वो भी अलग अलग होती है।
1: जी
0: जैसे मैंने कहा कि कोई किसानों की जो मिट्टी का जो उसी जो उत्पादन इकाई है
1: जी
0: जिसमें एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, पीएसबी, माइक्रोबियल सोल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सब किसानों को हम लोग कम से कम लागत में उपलब्ध करवाते हैं। ताकि देखिए किसान के पास जब तक विकल्प नहीं रहेगा वो यूरिया डीएपी की लाइन में ही लगा रहेगा।
1: जी
0: हमें किसान को यदि कहना है कि यूरिया नहीं डालना है तो उसे कुछ देना पड़ेगा कि ये डालना है। इसी तरीके से हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है धान की फसल में एजोला का उपयोग। तो
1: जी
0: धान को तो वो नाइट्रोजन देता ही है, साथ में जब ये धान कट जाती है तो रोटावेटर से जो एजोला मिला दिया जाता है मिट्टी में वो पूरा नरवाई का जो पोषक तत्व प्रबंधन का है वो कार्य करता है। मतलब एजोला में जितना भी बायोमास रहता है वो मिट्टी की जो जैविक कार्बन की मात्रा है उसको बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये तो प्रत्यक्ष हमारे मॉडल हो गए। बाकी इन मॉडल को डिसिमिनेट करने के लिए हम लोग समय समय पर किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। मृदा दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया है जिसमें किसानों को मिट्टी को कैसे संरक्षित करें और जो भी केंद्र पर प्रैक्टिस होती है उसको हम लोग कैसे किसानों को इजी वे में बता पाए कि ये आप भी कीजिए, नरवाई प्रबंधन है या फिर हरी खाद को डालना है, कम गोबर में भी कैसे अच्छा खेती करें, ये सब जानकारी हम किसानों को केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं।
1: जी प्रवीण जी, आपने इतनी से चर्चा की, इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। और आपने
0: जी
1: रेडियो आजाद हिंद को अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी नमस्कार।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम प्रकृति की पुकार अभी आप सुन रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे मृदा यानी मिट्टी की यानी माटी की,
1: जिसमें हमने बातचीत की डॉक्टर प्रवीण सोलंकी, कार्यक्रम सहायक, कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर नर्मदापुरम में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का, और आपके साथ था मैं फराज फैयाज। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में योग वासिष्ठ की दिव्य कथा के वैराग्य प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें श्री राम के वैराग्य की गहन अनुभूति प्रवाहित है। संपूर्ण ऐश्वर्य, शक्ति और वैभव से युक्त होते हुए भी जब मन संसार से विरक्त हो जाए, जब हर सुख असार लगने लगे, जब ये जगत क्षणभंगुर और माया मात्र प्रतीत हो, तब जो स्थिति उत्पन्न होती है वही है श्री राम की वैराग्य दशा। आज के इस अंक में हम उसी भावभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। वो विरक्ति जो पलायन नहीं बल्कि सत्य की खोज का प्रारंभ है, वो प्रश्न जो मन को विचलित नहीं बल्कि जागृत करते हैं। तो आइए उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं जहां श्री राम का वैराग्य हमें अपने ही जीवन के प्रश्नों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। योग संवाद में आज की चर्चा श्री राम की वैराग्य दशा पर, और इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: श्री राम की वैराग्य दशा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले अंक में हमने बात भी की कि तीर्थ करके जब लौटते हैं भगवान श्री राम
2: जी,
1: तो उनकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। वो बहुत कमजोर और सोच में रहने लग गए हैं और इससे पिता उनके बहुत चिंतित हैं
2: जी।
1: तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तीर्थ करने के बाद श्री राम की स्थिति कैसी है, ये आप हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: आप इसमें देखिए, जब द्वारपाल जाता है राम जी को बुलाने के लिए
1: जी,
2: तो रामचंद्र जी के भवन में जैसे ही वो द्वारपाल पहुंचता है, देखता है कि राम जी अपने भवन में अमन होकर बैठे हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे जो भ्रमर होता है रात को कमल में बंद होकर उदास हो जाता
1: जी,
2: है ना, उसकी दुनिया सिमट जाती
1: जी,
2: है
1: जी, जी।
2: ऐसे ही रामचंद्र जी जो है, जो पूरा जगत जो कहते हैं ना, मैं जहाँ उस ब्रह्म का दर्शन करने का सामर्थ्य उनमें है, वो एक उदासीन मन के साथ अमन की स्थिति में बैठे हैं। अब कहते हैं कि यात्रा से लौट के आने के बाद उनका मन उदास हमेशा रहता है, और जो वो वैराग्य की स्थिति बता रहे हैं वो देखिए, कहते हैं कि वे बार बार खिन्न हो उठते हैं और उनके आंख आंसू से भर जाते हैं।
1: अच्छा।
2: जब जगत देखते हैं तो रो पड़ते हैं
1: जी जी जी।
2: जिसको कबीरदास जी भी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो ऐसे जब कोई तत्वदर्शी ऐसा होता है तो वो जगत को देखता है, कहता है देखो आप क्या कर रहा है, आदमी क्या करने आया था, क्या कर रहा है, अवलो नसानी अबना नसानी जी। तो राम जी कहते हैं कि संपत्ति से विपत्ति,
1: अच्छा,
2: ये उनके वैराग्य की स्थिति है कि जितनी विपत्तियां हैं वो सब संपत्ति से आ रही हैं।
1: अच्छा।
2: और जबकि संसार ठीक उसके उल्टा सोचता है कि सारी विपत्तियों को दूर करने के लिए संपत्ति प्राप्त करना चाहता है।
1: ये एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि संसार में हर व्यक्ति जो काम कर रहा है या जिस लिए जी रहा है, उसके जीने का एक बड़ा मुख्य ध्येय है संपत्ति। और क्या कह रहे हैं श्री राम?
2: कह रहे हैं कि संपत्ति से विपत्ति, घर अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या क्या होने वाला है। कहते हैं कि जितनी भी विपत्तियां हैं उस विपत्तियों का एकमात्र कारण संपत्ति है। और आप कभी देखिए तो आप एक बच्चे को कभी जब आप देखें, छोटे बच्चे को
1: जी,
2: तो वो जिस आनंद में होता है उसके पास कोई संपत्ति तो नहीं है, ठीक है, लेकिन संपत्ति नहीं है इसलिए कोई विपत्ति भी नहीं है। तो अकारण वो हंसता है, है ना,
1: बिल्कुल
2: है ना जी। लेकिन जब हम संपत्ति के महत्व को जैसे जानते हैं
1: वैसे वैसे दुखी होते जाते हैं
2: और विपत्तियां घेर लेती हैं
1: जी,
2: संपत्ति
1: जी।
2: आती है तो फिर आप संपत्ति की रक्षा करने की बात करते हैं, इसको इसके द्वारा ही अपने जीवन में आप सुख समृद्धि ला सकते हैं, ऐसी भावना आपके अंदर आती है। जब तक संपत्ति नहीं थी तब तक ये भाव भी नहीं था। तो वो कहते हैं कि ऐसा होता है, और वो कहते हैं यहाँ जगत में सब कुछ मिथ्या है, और ये कहकर वो चुप हो जाते हैं और अकेले बैठ जाते हैं। ये उनकी स्थिति है, है
1: ना।
2: तो एकदम किसी विषय में उनका कोई आसक्ति नहीं है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो अक्सर मौन हो जाते हैं। तो ये सब उनकी मतलब वैराग्य की स्थिति है, जो बार बार उन्हें सोचने पर विवश कर रही है कि वास्तव में है क्या ये संसार
1: जी,
2: और इसको लेकर के आपस में वो जूझ रहे हैं जी।
1: हाँ हाँ, तो श्री राम की जो ये स्थिति है इस पर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं?
2: इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुनंदन श्री राम की जो ये स्थिति है, ये स्थिति न तो किसी मोह से उत्पन्न हुई है और न किसी आपत्ति से। मोह जब होता है तो आपको आसक्ति होती है, और आपत्ति जब आपके जीवन में दिखाई देता है तो आप उस चीज से बचना चाहते हैं, विरक्ति होती है। लेकिन तो आसक्ति और विरक्ति का मूल कारण क्या है? मोह और आपत्ति। जैसे आपको किसी विषय से आपत्ति दिखाई दे रही है या उसमें विपत्ति दिखाई दे रही है तो उससे आप वैराग्य लेते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इससे जीवन में कष्ट आता है। तो ये कहते हैं कि राम जी की जो स्थिति है, जो संसार के तमाम लोगों की स्थिति है, कि वो जो आपत्ति जो उन्हें होता है और जो आसक्ति होता है और इसकी वजह से उनके जीवन में वैराग्य आता है, वो राम की स्थिति नहीं है। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, इसलिए उन्हें मोह नहीं बोध प्राप्त हुआ है।
1: अब तो क्या ये आसक्ति विपत्ति और आपत्ति की आपने जो बात की, इसको देखने से वैराग्य होता है क्या?
2: बिल्कुल, वैराग्य आपत्ति विपत्ति संपत्ति नहीं, उसके बोध से होता है। ये अच्छा। आपने बहुत सूक्ष्म सवाल किया। कई बार क्या होता है, जैसे हम जान भी लें, सभी को ये पता हो जाए कि ये मार्ग, जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं एक पंक्ति कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब पर हरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। तो उन्होंने लिख दिया कि ये सबसे ऊपर रघुवीर हैं। ये भरद्वाज जी भी इस बात को कहते हैं कि कैसे उन्होंने इस संकटपूर्ण जीवन को कैसे जिया, वो कथा मुझे कहिए। तो कहते हैं उसी का भजन संत करते हैं। तो भजन का अर्थ हम लोग राम नाम जपना समझ लेते हैं। राम नाम जपना नहीं, राम का नाम जिस नाते जपा जा रहा है उस कर्म को जीवन में अंगीकार करना, ये है भजन।
1: बहुत सुंदर।
2: ये भजन नहीं है कि आप उनके नाम को लें,
1: बल्कि
2: आप देखिए कितनी सुंदर बात है। कभी कभी कथा आती है, कई लोग कहते भी हैं कि रावण कहता है कि तामसी तन से राम का नाम लिया नहीं जाता।
1: जी,
2: और कई बार था आती भी है, बड़ा रोचक तरीके से लोग कहते हैं कि जब मंदोदरी कहती है कि आपको तो वेश बदलना आता है, अगर सीता में इतनी ही आसक्ति आपके पास है तो क्यों नहीं राम का वेश धारण करके आप सीता के सामने जाते हैं और वो आपके साथ हो लेंगी। पत्नी कह रही है।
1: हा, हा, हा।
2: तो वो कहता है कि मैंने ये प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही मैंने राम का वेश धारण किया मुझे पराई स्त्री माँ दिखते हैं।
1: ये प्रसंग सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाता है।
2: रोमांच हो रहा है,
1: पहले भी मैंने सुना है। अब आप कि रावण ऐसा कहता है,
2: कहते कहते रोमांच हो गया कि अगर ऐसी स्थिति है तो सोचिए उस आत्मी का अंतःकरण, मतलब और कैसा होगा
1: कि वो उसका स्वरूप लेने भर से उसको पराई स्त्री
2: माँ नजर आती है। तो अगर
1: ये राम तत्व है,
2: तो ये राम तत्व है। तो इस दृष्टि के साथ जब भी कोई शरीर धारण करेगा तो वो क्या भगवत्ता उससे प्रकट नहीं होगी? कौन है जो उससे विरोध कर सकता है? है ना? तो ऐसी स्थिति है। तो जो आपने कहा कि वशिष्ठ जी यही कहते हैं कि जो ये आसक्ति आपत्ति मतलब के दर्शन नहीं, इसके बोध से आपको वैराग्य होगा।
1: अच्छा, इसमें विश्वामित्र जी बीच में कहीं पर, मैं पलट रही थी इसके पन्ने, तो दिखता है कि वो सत्यता मुदिता और प्रज्ञा के विषय में भी बात करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो ये क्या है और वो क्या कह रहे हैं?
2: वो कह रहे हैं कि अगर हमारे उपदेश का वास्तविक बोध हो जाए तो रामचंद्र जी सत्यता की प्राप्ति करेंगे। अब देखिए सत्यता में कहते अमृत पिए हुए पुरुष की भांति। अब इसमें इशारा क्या है? अब जैसे अमृत की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कोई अमृत है।
1: मुझे लगता है कि पहले आप ये बताएं कि उनका कथन क्या था पूरा।
2: जी, उनका कथन ये था कि जो रघुनंदन ये राम हैं, हम लोगों की भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे जो उपदेश मैं कर रहा हूं, अगर ये उन्होंने सुन लिया।
1: अच्छा,
2: है ना? तो हम लोगों की भांति मतलब जैसे विश्वामित्र जी परम पद में प्रतिष्ठित हैं या ये अपने वशिष्ठ जी परम पद में प्रतिष्ठित हैं, तो ऐसी राम की स्थिति होगी, क्योंकि जो उनकी ये दशा हुई है वो संसारियों की तरह नहीं हुई है। है ना? कि वो आसक्ति और आपत्ति से उत्पन्न हो गई हो, विपत्ति से उत्पन्न हो गई हो, ये तो बोध से उत्पन्न हुआ है। तो बोध से उत्पन्न होने के बाद अगर वो उपदेश सुन सकें तो वो फिर ऐसी स्थिति बनेगी। और उसमें कहते हैं कि अमृत पिए हुए पुरुष की भांति, यानी जिसका मृत्यु भय समाप्त हो गया। अमृत पीने का मतलब अमृत जैसी कोई चीज नहीं है कि जो पी के जिसके चित्त से मृत्यु का भय समाप्त हो गया। वो सत्यता को प्राप्त हुआ। मृत्यु का भय समाप्त कभी भी शरीर से तो नहीं होगा, क्योंकि शरीर ने जन्म लिया है तो मृत्यु तो रहेगी, लेकिन इस शरीर से अगर सत्यान्वेषण हो गया और सत्य का बोध हो गया
1: जी।
2: तो वो सत्य जो है आपको मृत्यु भय से जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म, ये जो तीन तरह की संकल्पना लेकर के हम लोग संसार में व्यवहार करते हैं, इससे पूरी तरह से मुक्त कर देगा। तो वो सत्यता, क्योंकि सत्य शरीर नहीं है, सत्य शरीर ही है जिसने शरीर को धारण कर रखा है। जैसे कहते हैं हम लोग ना कि धर्मो रक्षति रक्षितः, कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो ऐसे में क्या है वो, इसका अर्थ कि अगर आपके जीवन की रक्षा हो पा रही है तो इसलिए हो पा रही है कि आपने धर्म की रक्षा जाने अनजाने में की है। तो ठीक ऐसे ही शरीरी शरीर में है, इसलिए शरीर की सारी क्रियाएं हो रही हैं, जो इसका बढ़ना है, डेवलपमेंट है, या जो साइको मोटर एक्टिविटीज हैं, जो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये हो किसकी वजह से रही हैं? शरीर की वजह से, उस निर्गुण निराकार की वजह से हो रही हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है वो उसकी वजह से दिखाई दे रहा है, ये आत्मतत्व है। तो कहते हैं कि ये जो जान लेगा वो अमृत पिए हुए पुरुष, यानी ऐसा पुरुष जिसको मृत्यु का भय नहीं है। और देखें, इसी को हम कहते हैं अभयता। भय जितने भी हैं, उस भय के पीछे आप देखेंगे तो मृत्यु ही किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगी। मृत्यु मतलब शरीर की मृत्यु ही नहीं हुई, आपके विचारों की मृत्यु, जो मान सम्मान यश जो कुछ भी आपने अपने शरीर या संसार के व्यवहार या संसार की लर्निंग से आपने सीख रखा है, उन सब में कहीं ना कहीं मिटने का जो भय होता है, जैसे मृत्यु शरीर के मिटने का भय है, तो ऐसे में कोई भी चीज जो आपने अर्जित की है सुख के लिए, उसके मिटने का भय, तो एक प्रकार की मृत्यु ही है वो, कह सकते हैं। तो वो कहते हैं क्षरण है, तो वो ऐसी स्थिति आती है उस सत्यता को जो त्रिकाल बाधित है। तो त्रिकाल बाधित कोई अगर है तो ब्रह्म रूपता है, शरीर त्रिकाल बाधित नहीं है। शरीर पर तीनों काल का असर होता है, भूत भविष्य वर्तमान का, तीनों अवस्थाओं का असर होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का। लेकिन उस चैतन्य पर जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बना हुआ है और तीनों अवस्थाओं से अलग है, उस पर जिसको तुरिया अवस्था कहा गया मांडुक्य उपनिषद में, तो ऐसे में उस पर कोई असर नहीं होता, तो राम को वो सत्यता का बोध होगा। उसके बाद कहते हैं मुदिता, सत्य के बिना व्यक्ति मुदित नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं मुदित हो गया, आनंद परमानंद स्वरूपता, तो उसका आनंद अब जाने आने वाला नहीं है, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया, तो वो मुदित हो गया। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, महर्षि पतंजलि कहते हैं ये चित्त के प्रसन्नता या उसकी पवित्रता के ये सूत्र हैं कि आप पुण्यात्मा के प्रति मुदित हो जाएं। ऐसे जो सत्य के प्राप्त करने वाले लोग हैं उनको देख करके आपके अंदर मुदित भाव हो जाए, तो यानी परम आनंद रूपता हो। और प्रज्ञा की प्राप्ति, प्रज्ञा का मतलब होता है अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपता। अब देखिए हम लोगों का जो ज्ञान है वो क्या करता है, हमको अलग करता है, परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता मतलब अलग करना, और अपरिच्छिन्नता का मतलब कि हम अलग ही नहीं है, सब मुझमें और सब में मैं हूं, ये अपरिच्छिन्नता है। तो इसको कहा गया, हमारे ऋषियों ने कहा प्रज्ञा। तो जब ये तीनों की प्राप्ति होती है, तीनों एक क्रमिक हैं, कह सकते हैं क्रमिक गति से इनकी स्थिति आपको मिलेगी। बिना सत्यानुसंधान के, बिना सत्य बोध के आप जो है मुदिता की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, और बिना मुदिता के आपको प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रज्ञा जो है वो है आपकी अपरिच्छिन्नता। जिसको फिर मैं गोस्वामी जी की पंक्ति में सहज करूं अपने श्रोताओं के लिए कि जो आदि योगी शिव हैं, क्योंकि योग ग्रंथ पर हम बात कर रहे हैं तो हम आदि योगी शिव की बात को करें, वो कहते हैं उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहिं जगत, केहि संग करहिं विरोध। वो फिर वही अपरिच्छिन्नता वाली बात आ गई कि निज प्रभु मैं, सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपानी। तो वो स्थिति होती है कि राम में पूरी सृष्टि दिखाई दे, वो स्थिति आती है तब जब प्रज्ञा आपके अंदर प्रकट होता है, और प्रज्ञा आपके सत्य और मुदिता की स्थिति आने के बाद ही होता है। तो राम जी को उन्होंने कहा कि ये प्राप्त हो जाएगा, और जब ये प्राप्त हो जाएगा तो वो परम सुख को प्राप्त करेंगे, संताप शून्य हो जाएंगे, और जो शरीर इनका ये कृष्ण दिखाई दे रहा है ये पूरी तरीके से हिष्ट पुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, आजकल आप देखेंगे जो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां विकसित हो रही हैं, और बहुत सारी नई नई बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो बीमारियां हैं उसमें 75% से 80% बीमारियां आपकी साइकोसोमेटिक हैं, जो मन से आती हैं, है ना। तो मन से क्यों आती हैं, क्योंकि मन की स्थिति यही तीन की नहीं है, न मन सत्य जानता है, न मन मुदित है, न मन प्रज्ञावान है, है ना। तो अब उसमें क्या हुआ, चित्त में दोष उत्पन्न हो गया। अब उस दोष का प्रभाव ये हुआ कि प्रभाव तो शरीर पर दिखेगा, तो शरीर किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो गया। कैंसर जैसी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है स्ट्रेस, तनाव, कि कोशिकाओं पर बार बार आप प्रहार कर रहे हैं, तो फिर अंत में वो अपना स्वरूप भूल जाती हैं। वो आपके जीवन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आई थी, अब वो इम्यून को ही खाने लगी हुई हैं, आपको ही मिटाने पर लगे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्थिति जब उनको प्राप्त होगी तो वो फिर संताप शून्य होंगे। तो आज आदमी देखे तो संताप में है। भागवत कथा में हम कहते ना कि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो तीन ताप जो है जिससे चित्त संताप ग्रसित है, जब तक इससे आप अपने को मुक्त नहीं करेंगे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग ही, सत्संग मतलब वही सत्य, जो सत्य का अनुसंधान, जिसमें आप त्रिकाल बाधित सत्ता को जान सकें और जान करके आप फिर हमेशा अपने आनंद स्वरूप में रह सकें, और साथ ही साथ आप अपनी अपरिच्छिन्नता यानी शिवत्व का बोध कर सकते हैं। यही है सत्यम शिवम सुंदरम।
1: जी, तो इस कथा में हम कहाँ पहुंचे हैं कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम फिर से वैसे हो जाएंगे
2: जी,
1: अगर मैं जो कह रहा हूँ उसको वो सुने।
2: आप जो राम के शरीर की ये दशा देख रहे हैं, जिसको देख करके आप दुखी हो रहे हैं,
1: पिता की चिंता वो
2: जी, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि राम को अब योग की जरूरत है, और ये वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ का उन्हें जो ज्ञान देंगे, उसके बाद वो इस अवस्था को प्राप्त होंगे, सत्य मुदिता और मोक्ष प्रज्ञा उनको मिलेगा। तो इससे फिर वो फिर अब उनका जो शरीर है वो हृष्ट पुष्ट हो जाएगा और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे।
1: अच्छा, इसी में आगे कहीं लोकव्यापी निर्गुण और सगुण ब्रह्म की चर्चा होती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म का बोध कैसे होता है, कैसे हो सकता है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, प्रकृति के तीन गुण है, चूंकि व्यवहार तो प्रकृति के साथ प्रकृति में ही होगा, है ना। तो कहते हैं उसमें जो सत्वगुण है, उस सत्वगुण का गुण प्रकाश है। आजकल के मतलब समय में बहुत प्रचलित है एनलाइटेंड, कहते हैं कि एनलाइटेंड हैं, एनलाइटेंड गुरु हैं। अब एनलाइटेंड गुरु का मतलब समझते हैं लोग कि कोई दिव्यता उनमें आ गई। दिव्यता ने उनके पास प्रज्ञा है, वो अपरिच्छिन्नता का बोध है, वो अपने को अलग नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके अंदर परिच्छिन्न भाव नहीं है, है ना, वो श्री राममय की स्थिति में जगत को देख रहे हैं
1: जी।
2: तो कहते हैं कि सत्व गुण से युक्त होने पर जो लोक व्यापी, लोक में जो व्याप्त है निर्गुण सगुण, ये दो संप्रदाय बने
1: जी,
2: निर्गुणिया और सगुणी, सगुण वाले संप्रदाय। कुछ लोग सगुण उपासक हो गए, कुछ निर्गुण उपासक हो गए, लेकिन कहते हैं ये दो नहीं है। तो कहते हैं कि ये सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये अभेद है, लेकिन ये जानते कौन है, बुद्ध पुरुष।
1: अच्छा।
2: जी, और ये वेद कह रहा है, ये स्थिति है। तो वो कहते हैं कि जब ये तत्व चिंतन होगा तब ये भेद मिटेगा। तो जो लोक व्यापी ये सगुण निर्गुण रूप ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न जैसे वो होंगे, वैसे जो ये भेद की स्थिति है, वो जो आज जगत को देख रहे हैं, जगत का व्यवहार देख रहे हैं, जिन कारणों से उनके चित्त में संताप हुआ है या जिस पर विचार करने लगे हैं, या जो कहते हैं ये वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो वो जीवन मुक्त हो सकेंगे। और जीवन मुक्त होने के बाद अभी वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने क्रिया से अपने आप को अलग कर लिया, तब वो बोध के साथ जो है समस्त क्रियाओं को ऐसे करेंगे जैसे कीचड़ में रहने वाला कमल, कीचड़ से सर्वथा मुक्त है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये स्थिति उनकी होगी।
1: ये बता रहे हैं विश्वामित्र जी।
2: जी,
1: दुख परंपरा के उत्पादन की बात भी इसमें की गई है। मैं चाहती हूँ इस कथा को आगे बढ़ाते हुए इस बिंदु पर आप आइएगा।
2: जी,
1: तो वो भी एक जगह दिखता है कि दुख परंपरा के उत्पादन की बात दिखाई देती है। तो क्या कारण है जीवन में दुख का?
2: अब जब राम जी को ऐसी स्थिति में देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाबाहु राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो, तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर विजय पा ली है। अब देखिए, शूरवीर होने का मतलब किसी व्यक्ति को जीतना नहीं है, किसी स्थान को जीतना नहीं है। विषय जो बार बार उन विषयों को अपना समझ लेना या अपना बनाने की चेष्टा करना, ये है शत्रुता। आज देखें तो किसी प्रकार का जो विश्व में ये जो शत्रु भाव है, वो शत्रु भाव एक्चुअल में विषय रूपी विषयों को पाने की आकांक्षा से उत्पन्न हो रहा है
1: जी।
2: तो वो कहते हैं कि विषय रूपी शत्रुओं पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है। राम को उनके स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ऐसी स्थिति में क्यों हो, क्योंकि अब तो तुम ऐसी स्थिति में हो कि कोई विषय तुम्हारे आकर्षण और विकर्षण का कारण ही नहीं है। सामान्यतया देखें आप तो जो राग और वैराग्य, ये दो शब्द आते हैं, ये आकर्षण और विकर्षण के संदर्भ में आते हैं, या एक दूसरे के सापेक्ष इन्हें समझा जाता है कि संसार में जिनको राग है उन्हें अपने आत्मस्वरूप से वैराग्य हो गया, वो रूप के ही राग में फंसे हुए हैं, और जिनको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया वो संसार से राग छोड़ के वैरागी हो गए। यही दो रूप दिखाई देते हैं। ये कहते हैं ये दोनों स्थिति नहीं है, लोकव्यापी ये सगुण निर्गुण का जो ब्रह्म तत्व है उसका ये वास्तविक ज्ञान नहीं है।
1: अच्छा।
2: और यही जो है दुख की परंपरा का उत्पादक है, जो बड़ी कठिनाई से नष्ट होता है। अच्छा। इतना आसानी से नष्ट नहीं होता। इसीलिए आप देखते होंगे कि आदमी जब कहीं किसी कर्म से उबता है तो किसी दूसरे कर्म का चुनाव करता है उससे अपने आप को बचाने के लिए। तो अंततः देखें तो कर्म से कर्म को काटने का प्रयास करता है, जबकि कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म अनासक्त भाव से करना है, जिसके लिए गीता भी योग शास्त्र का ग्रंथ है और वो भी कहती है। तो राम जी से ये कहा जा रहा है कि आप जो ये देख रहे हैं जगत को, ये जगत में अनासक्त व्यवहार करके आप जीवन मुक्त हो करके यहाँ सारे अपने दायित्वों का निर्वाह करें के लिए आपका यहाँ आगमन हुआ है, और प्रकृति ने जिन जिन चीजों के लिए आपको यहाँ आने का अवसर मिला है, जिसको भगवान कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना है। अब धर्म की संस्थापना के लिए कई बार लोग कहते हैं कि धर्म भी एक बंधन है। कई लोग धर्म से बंध जाते हैं और कहते हैं यही धर्म है जो मैं समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप देखें कोई भी चीज अगर अपने अस्तित्व में है तो अपने धर्म के साथ है, इसलिए है ना। और अगर उसके अस्तित्व को खतरा है तो आपने अधर्म का रास्ता चुन लिया है, जो राक्षस यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ तो प्रकृति का पोषण है, शोषण नहीं है। और आज हम लोगों ने क्या किया, प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया। जैसे हमारा बौद्धिक ज्ञान विकसित हुआ तो ये जो अभी हमने सत्य और मुदिता और प्रज्ञा वाली बात नहीं रही, तो परिणाम ये हुआ कि हमने समझ लिया कि अब तो प्रकृति की सारी शक्तियों के अधिपति हम हो गए, और हम उसका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले समय में वो पीढ़ियां भुगतेंगी। डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अगर आपके पूर्वजों ने प्रकृति के नियमों या प्रकृति के धर्म का पालन किया तो प्रकृति आपके जीने योग्य रही, लेकिन आप तो इतने बुद्धिमान हो गए कि आपने प्रकृति को ऐसा बना दिया कि कल आने वाली पीढ़ियां जन्म लेने के साथ ही वो सांस लेने में संकट में हों। कितने मतलब बड़े मतलब राक्षस कह सकते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति तो है।
1: इसलिए इन दिनों संवहनीय विकास की जो बात चल रही है।
2: जी बिल्कुल,
1: इसीलिए
2: तो कहते हैं विकास ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में जो आए उनको भी ये धरातल वैसा मिले जैसा आपको मिला था।
1: अच्छा, इसमें भोग के साधनों पर भी चर्चा है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है?
2: अच्छा, भोग के साधनों।
1: लेकिन इसके पहले मैं चाहती हूँ इस कथा को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लें, क्योंकि वो कथा भी हमारे जो श्रोता है उन तक पहुंचती रहे।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो विश्वामित्र जी ने फिर राम जी से कहा कि तुम्हारे जो नेत्रों में जो चंचलता दिखाई अभी दे रही है उसको त्याग कर बताओ कि मोहित क्यों हो रहे हो। क्योंकि राम जी को यहाँ ये दो लोग मतलब गुरु के रूप में हैं, एक वशिष्ठ जी और दूसरे विश्वामित्र। विश्वामित्र उन्हें कर्म शास्त्र का बोध कराने के लिए आए हैं, कर्म शास्त्र के लिए उत्प्रेरित करना है, क्योंकि कर्म शास्त्र छोड़ चुके हैं। लेकिन कर्म शास्त्र बिना तत्व ज्ञान के,
1: जो भूमिका गीता में श्री कृष्ण की है वो यहाँ विश्वामित्र की है, और जो स्थिति वहाँ अर्जुन की वो यहाँ श्री राम की हो गई,
2: कह सकते हैं तुलनात्मक रूप से सापेक्षता को समझाते हुए कह सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि वहाँ यहाँ तो कृष्ण ही वो रूप प्रकट कर रहे हैं जो अर्जुन ने किया है वहाँ, है ना। तो खैर, तो ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि त्याग कर तुम मोहित क्यों हो रहे हो, तुम्हारे इस मोह और भ्रम का क्या कारण है, ये राम जी से पूछते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि इस सांसारिक विषय आस्था में मेरा मन बिल्कुल नहीं जाता।
1: नहीं।
2: संसार में जो आस्थावान लोग दिखाई देते हैं, जब उनको मैंने देखा और उनकी दशा देखी, तो मेरा तो उस दशा को देखने के बाद, कहते ना कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो ठोकर से गिरते नहीं है, ठोकर देख के समझ जाते हैं, है ना। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो ठोकर खा के भी नहीं संभलते, तो राम जी उस तरह के मैं देखा। और संसार में जितने भी भोग हैं ये सब के सब अस्थिर हैं, क्षणभंगुर हैं। राम जी को इसका बोध है, हम लोग इसको कहते हैं
1: बिल्कुल,
2: और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं उन्हीं भोगों के प्रति, नए नए भोगों के प्रति हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं कि अब गाड़ी थोड़ी बड़ी कर ली जाए, घर थोड़ा बड़ा बना लिया जाए। अब इसके पहले जब ये घर नहीं था तो ऐसे ही घर की कल्पना थी और लगता था कि ये घर मिल जाता तो भगवान तेरी बड़ी कृपा होती, इसके लिए मन्नतें कर रहे थे। अब जब ये घर आ गया तो फिर ये भी छोटा पड़ने लगा, फिर और बड़े घर की कल्पना होगी। तो कहते हैं कि हम लोग भोगों की क्षणभंगुरता के बारे में बोलते हैं, क्षणभंगुरता हमको दिखती नहीं है। अगर दिखे तो बुद्ध की स्थिति, जैसे बुद्ध ने राज्य ही तो छोड़ा था,
1: बिल्कुल,
2: है ना। वो जबकि जो चीज हम पाना चाहते हैं या जिसके लिए आज दुनिया लड़ रही है वो सारी चीज छोड़ के वो चले आए।
1: बिल्कुल,
2: आप देखें अयोध्या को, तो अयोध्या में भी राम जी राज्य ही छोड़ के जा रहे हैं जंगल में, तनिक भी उनको राज्य में आकर्षण नहीं है। तो क्योंकि उनको इस तत्व का बोध हो चुका था कि ये सारे भोग अस्थिर हैं, इनका स्वभाव जो है वास्तविक इनका रूप है, इनकी क्षणभंगुरता है और आपत्तियों के स्वामी हैं, ये सब विपत्ति में डालते हैं। अब देख कितनी उल्टी बात है, सांसारिक दृष्टि से आप देखें तो संसार का व्यक्ति इनसे अपनी विपत्ति दूर करना चाहता है भोग के साधनों से, क्योंकि वो विपत्ति में इसलिए है कि ये साधन नहीं है उसके पास।
1: और श्रीराम कह रहे हैं कि हाँ, आपत्तियों का साधन,
2: हाँ, ये कहते हैं
1: मतलब जो सांसारिक संपदाएं हैं इनका मनुष्य पर प्रभाव अच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं वो?
2: हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब पाप स्वरूप है, मतलब आपको पाप से पाप करवाएगा। अच्छा पाप का मतलब होता है कि पाप हम किसी दूसरे के संदर्भ में करते हैं, दूसरे के संदर्भ में तो करते ही करते हैं, अपने प्रति भी तो पाप करते हैं कि हमने अपने जीवन को एक ऐसी क्रिया में लगा दिया जिस क्रिया का कोई अर्थ नहीं है। जैसे आप देखें जीवन भर जिन चीजों को हम संकलित करते हैं एक दिन उसी को छोड़ के जाते हैं, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी जीवन भर संकलन लगा हुआ और क्या क्या नहीं करता उस संकलन के लिए, है ना? तो ये क्या है, एक प्रकार की अज्ञानता है कि नहीं? अगर आप देखें तो जो प्रकृति है, प्रकृति ने कहा भी गया है कि आवश्यकता पूरी करने का सामर्थ्य इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब की आवश्यकता पूरी करने में पृथ्वी समर्थ है, लेकिन एक व्यक्ति की आकांक्षा पूरी करने में पूरा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा।
1: बिल्कुल, लालच को तो नहीं पूरा किया
2: नहीं किया जा सकता, इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, और हर आदमी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगा है जो कभी पूरी ही नहीं होती। तो ये बात कहने सुनने का नहीं है, ये बात निरंतर चिंतन का है। और राम जी ने तीर्थ यात्रा के दौरान यही चिंतन किया और देखा कि लोग बात तो वो सारे कर रहे हैं जिन बातों को हम कहते हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं जो व्यवहार कर रहे हैं उस ज्ञान की बातों से बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। तो वो उनकी स्थिति है। और कहते हैं कि मूढ़ बुद्धि लोग इस संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। और ये बात क्या आज नहीं है समीचीन? आप देखें जिन जिन में आपने सुख देखा था, अगर वो सुख था कुछ समय के लिए था, क्षणिक था, तो फिर वो क्षणभंगुरता हुई ना। तो आपको आगे जिन जिन चीजों के न होने की वजह से आज आप दुखी हैं, तो उस दुख का भी शमन इस ज्ञान से करना था, पूर्व के अनुभव से करना था, लेकिन वो करने के बजाय आपके जीवन में वो चीजें नहीं है, उसके लिए आप परेशान और दुखी हो रहे हैं। तो ये भोगों का जो वास्तविक स्वरूप है वो राम जी ने बताया कि यहाँ पर लोग इधर उधर भटकते रह रहे हैं लोभ के कारण, जबकि सच ये है कि ये सारे जो भोग हैं ये पाप में डालते हैं, ये मनुष्य को विपत्ति में डालते हैं, और आपत्तियों का स्वामी कहा गया इन्हें, ये स्वामित्व है इनमें आपत्ति लाने का, और हम लोग आप विपत्ति मिटाने का स्वामी बना के बैठे हैं,
1: बनाकर बैठे हैं और उसी को जुटाने में पूरा जीवन खर्च
2: लगाए हुए हैं। जी,
1: तो बहुत संक्षेप में एक बात आप बताएं कि चूंकि श्री राम कह रहे हैं कि जो सांसारिक संपदाएं हैं उनसे विपत्ति आती है, तो संपदा को किस दृष्टि से मनुष्य देखे?
2: बिल्कुल, सांसारिक इसका अर्थ कदापि ये नहीं हुआ कि कोई ये समझ ले कि हम इसका तिरस्कार कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसके सत्य को आप जाने और अपने जीवन को जीवन मुक्त की भांति जिए, बंधन में ना जिए। वो कहते ना कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो देखिए, तो ये जैसे नदी है, नदी का कोई मार्ग नहीं है और न उसने कोई चुनाव किया है। जैसे हमारे एक मित्र है, वो नर्मदा परिक्रमा करें तो कहीं नर्मदा जी बहुत सक्रिय हैं, कहीं बहुत विशाल रूप है, और सागर में मिलके तो सागर हो जाती हैं। तो कहने का आशय यह है कि ये संसार की यात्रा में आप निर्विघ्न और निश्चिंत रहें, मतलब द्वंद ना पालें, क्योंकि द्वंद पाल करके आप अपने सामर्थ्य को घटा लेंगे।
1: जी जी।
2: आपसे जो होने की संभावनाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी, और संसार की संपदाएं सदा वंचना ही करती रहती हैं। हाँ, ये राम जी कह रहे हैं कि सदा वंचना करती हैं, क्योंकि उनके वैराग्य में ऐसा उनको दिखा है। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती हैं और उनकी सगुण राशि का नाश करती हैं। अब देखिए, संसार जो है आपके सगुण को नष्ट करता है, सद्गुण का, और तरह तरह के दुख दिया करता है, दुखों का जाल बिछा देता है, धन वैभव की चिंताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसलिए मुझे ये आनंद नहीं देते।
1: जी। तो ये एक कारण उनके वैराग्य का है, और भी उनके मन में बहुत सी बातें हैं,
2: बहुत सारी बातें हैं जी,
1: तो वो बातें हम एक एक कर आगे सुनेंगे, क्योंकि अब इस कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है। तो इसी बिंदु पर हम ठहरते हैं और अगले अंक की प्रतीक्षा करते हैं। आपने आज बहुत ही सुंदर व्याख्या की भगवान श्री राम की वैराग्य दशा की, यही चर्चा आगे हम जारी रखेंगे अगले अंक में। आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज आपने भगवान श्री राम की वैराग्य दशा पर चर्चा सुनी। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था। परिकल्पना अदिति गौड़ की थी। ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का। समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और आपके साथ मैं हूँ फराज। श्रोताओं, बहुत से गीत याद आ रहे हैं, बहुत से नगमे याद आ रहे हैं, भजन याद आ रहा है। तोरा मन दर्पण कहलाए,

कई शायर और गीतकार याद आ रहे हैं, साहिल लुधियानवी, राजेंद्र कृष्ण, शैलेंद्र, शकील बदायूनी, कई संगीतकार भी याद आ रहे हैं, ओपी नैयर, आरडी बर्मन, एसडी बर्मन, खयाम, रवि, और कई फिल्में याद आ रही हैं, हावड़ा ब्रिज, नया दौर, कश्मीर की कली, मेरे सनम, उमराव जान, इजाजत।

श्रोताओं, आशा जी का जब नाम आता है तो न मालूम कितने ही गीत हमारे जहन में गूंजने लगते हैं, दिल में उतर आते हैं, चाहे वो भजन हो, रोमांटिक नगमे हों, गज़लें हों, डांस नंबर हों, कैबरे सॉन्ग्स हों, फिल्मी हों, गैर फिल्मी हों, हिंदी भाषा में हों, मराठी भाषा में हों, बंगाली में हों, किसी भी भाषा में हों। आशा जी ने इतने गीत गाए हैं, यूं आता है कि 12,000 के ऊपर नगमे उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, सोलो और ड्यूट्स। 80 साल तक, 80 ईयर्स तक फिल्मी दुनिया में और लोगों के दिलों में बने रहना कोई मजाक नहीं है दोस्तों।

आशा जी का जन्म हुआ 8 सितंबर 1933। जी हाँ, 1933 में उनका जन्म हुआ संगली में। और ये बताने की जरूरत नहीं कि उनकी बहन रहीं लता जी, आशा लता दीनानाथ मंगेशकर, जो बाद में बन गईं आशा भोसले। उनके पिता रहे पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी और माँ रहीं शेवंती दीनानाथ। घर में संगीत का माहौल था, लेकिन एक हादसा जब हुआ जब आशा जी महज 9 साल की थीं तो उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, और वहीं से फिर शुरू हुआ दौर परेशानियों का, जिसने आशा जी का पीछा ताउम्र नहीं छोड़ा।

लता जी ने अपना अलग मकाम बनाया और आशा जी ने जो मकाम बनाया उससे भी हम वाकिफ हैं। आशा जी का जो पहला गीत रिकॉर्ड हुआ वो था मराठी में। जी हाँ, 1943 की बात है। फिल्म थी मजहा बल और फिल्म के संगीतकार थे दत्ता दावजेकर। उसके बाद 1948 आया, फिल्म थी चुनरिया, गीत था सावन आया। ये रहा पहला हिंदी गीत आशा जी का। और पहला सोलो गीत जो आशा जी ने गाया वो थी फिल्म रात की रानी 1949 में जो रिलीज हुई।

उसके बाद फिर आशा जी फिल्मी दुनिया में आ गई और फिर 50 का दशक आया, फिर 60 का दशक आया और फिर हम जानते हैं कि 70, 80, 90। शुरुआती दिनों में आशा जी गा रही थीं और तमाम संगीतकार थे, नौशाद साहब हों, सी रामचंद्र जी हों, एस जी बर्मन साहब थे, शंकर जयकिशन आ गए, उसके पहले हुसन लाल भगतराम जी संगीत दे रहे थे, श्याम सुंदर जी, वो बहुत गुणी संगीतकार फिल्मी दुनिया में आ गए और वो दौर था, उभर रहे थे कई गायक, चाहे वो मेल सिंगर्स हों, मोहम्मद रफ़ी साहब हों, मुकेश जी हों, तलत साहब हों, मन्नाडे जी हों, और फिर किशोर दा भी आ गए।

0: ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा।
1: आशा जी 50 के दशक में नगमे गा रही थी, फिल्में उनकी आ रही थी, संगीतकार उनकी आवाज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस तरह के गीत आशा जी को नहीं मिल रहे थे जिसकी वो हकदार थी। 50 के दशक में आशा जी की कई फिल्में आ रही थी, चाहे वो वचन हो।

बाप रे बाप हो, फंटूश हो। लेकिन फिर आई नया दौर, और नया दौर में संगीत किसका था? जी हाँ, ओपी नैयर साहब। ओपी नैयर साहब आ चुके थे। ओपी नैयर इसके पहले गीता दत्त जी की आवाज़ का इस्तेमाल करते थे या शमशाद बेगम जी की आवाज़ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर नया दौर के गीतों ने जब इतिहास रच दिया, तो उसके बाद तो फिर आशा जी और ओपी नैयर साहब की ऐसी ट्यूनिंग बैठी कि फिर ये काफ़ी सालों तक दोस्तों चली। और फिर रफ़ी साहब और आशा जी गाते थे ड्यूट्स। इन दोनों ने तकरीबन 900 के आसपास ड्यूट्स गाए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितने कामयाब ये लोग रहे होंगे और लोग कितना पसंद करते होंगे।

0: जहां। और बाद में फिर आशा जी ने किशोरदा के साथ भी खूब ड्यूट्स गाए और सोलो गीत तो गाए हैं।
1: हाल कैसा है जनाब का,
2: हाय क्या ख्याल है आपका,
1: हाय तुम तो मचल गए हो।
0: अब जो 50 का दशक श्रोताओं चल रहा था तो कई एक्ट्रेस जो थीं वो नई अदाकाराएं फिल्मी दुनिया में आ रही थी, जैसे कि ये बीच की बात कर रहा हूँ 50s के में, माला सिन्हा आईं और फिर वहीदा रहमान आ गईं, वैजयंतीमाला थीं पहले से और तमाम, फिर आशा पारेख जी भी आईं और फिर बाद में 60 के दशक में सायरा बानो जी आ गईं, साधना जी आ गईं, नूतन जी थीं और भी बहुत सारी एक्ट्रेस, और फिर लता जी इनके लिए गाती थीं और सिंगर्स गाते थे, लेकिन फिर हुआ ये कि आशा जी को भी संगीतकारों ने उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया। खास करके कुछ संगीतकारों ने आशा जी की आवाज़ का बहुत इस्तेमाल किया, जिनमें सबसे पहला नाम हम जानते हैं ओपी नैयर साहब का। संगीतकार रवि ने आशा जी की आवाज़ का खूब इस्तेमाल किया, एसडी बर्मन साहब ने भी किया, एसडी बर्मन साहब ने भी आशा जी की आवाज़ का खूब इस्तेमाल किया है।

बीआर चोपड़ा साहब ने जितनी भी फिल्में बनाई ज्यादातर उनमें लता जी तो खैर गाती थी, लेकिन ये एक खास बात है जो मैं आपको बताऊं कि आशा जी की आवाज का इस्तेमाल बीआर चोपड़ा साहब ने बहुत किया है। चाहे संगीतकार कोई भी हो, उनके यहाँ संगीतकार अलग अलग रहे, एन दत्ता साहब रहे, संगीतकार रवि रहे, ओ पी नैयर भी रहे, चाहे वो धर्मपुत्र फिल्म हो या गुमराह फिल्म हो या वक्त फिल्म हो, आप जब इनके नगमे सुनेंगे, आगे भी जाने ना तू फिल्म वक्त का नगमा आशा जी ने गाया है, तो आशा जी बी आर चोपड़ा साहब की यहाँ खूब नगमे गाती थी, खूब गीत गाती थी।

0: और अब ये 50 से 60 का दशक आ चुका था। तमाम बड़ी एक्ट्रेस उस दौर में रही और लता जी तो गाती ही थी और आशा जी की आवाज। और इस बीच एक बड़ी बात यह हुई कि लता जी और रफी साहब के बीच कुछ मतभेद हो गए रॉयल्टी को लेकर। तो 1963 से 67 तक लता जी और रफी साहब ने साथ में काम नहीं किया। इस बीच रफी साहब के साथ अपनी आवाज मिलाई आशा जी ने, और भी सिंगर्स ने गाया, सुमन कल्याणपुर जी हैं और भी लोग थे, लेकिन आशा जी के बहुत ड्यूट्स रफी साहब के साथ इस वजह से हो गए क्योंकि ये पीक टाइम था तमाम एक्टर्स का और एक्ट्रेसेस का, और तमाम संगीतकारों ने भी इनकी आवाज का खूब इस्तेमाल किया।
1: अच्छा

0: अब हुआ ये कि जब ये दौर चल रहा था तो आशा जी इतनी बड़ी सिंगर हो गई और सब लोग उनकी आवाज का इस्तेमाल करते थे। बहुत सी फिल्में मुझे याद आ रही हैं, कश्मीर की कली का जिक्र किया, सावन की घटा एक फिल्म में मुमताज जी के लिए आशा जी ने क्या गीत गाया है, आज कोई
1: प्यार से दिल की बातें कह गया है।
0: और आदमी और इंसान फिल्म याद आ रही है, बीआर चोपड़ा साहब की जिंदगी के रंग कई रे, बहुत सारी फिल्में हैं और नगमे हैं, हम बीच बीच में सुन रहे हैं वो गीतों की झलकियां ताकि मज़ा और बरकरार रहे, क्योंकि आशा जी का जिक्र हो रहा है तो फिर उनके गीत ना हो तो कैसे मज़ा आएगा।
1: बस

जब आशा जी की बात चल रही है, तो आशा जी ने इतने लंबे अरसे तक काम किया फिल्मी दुनिया में, 80 साल, 10 साल की उम्र से, और तो लाजमी सी बात है तमाम बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, चाहे वो B.R. चोपड़ा हों, राज खोसला हों, बिमल रॉय हों, महबूब खान हों, सबके साथ काम किया, तमाम संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें SG बर्मन साहब, खयाम साहब रहे, नौशाद साहब रहे, OP नैयर, RD बर्मन तो रहे, और शंकर जयकिशन रहे, संगीतकार रवि रहे। और यहाँ इस बात का जिक्र करते हैं खास करके SG बर्मन साहब और मदन मोहन जी। SG बर्मन साहब लता जी की आवाज़ का बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर बीच में उन्होंने आशा जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया, और सुजाता फिल्म हो, बंदनी फिल्म हो, क्या क्या नगमे हैं आशा जी के इन फिल्मों में। और मदन मोहन साहब तो लता जी की आवाज़ का इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर, लेकिन कौन भूल सकता है झुमका गिरा रे। अगर हम गहराई में जाएंगे तो बहुत सी ऐसी बातें जो पता चलती हैं, अगर हम उन नगमों को सुने आशा जी के, तो ये हमें मालूम चल जाता है कि खाली उनके फास्ट सॉन्ग या रोमांटिक नगमे या कैबरे सॉन्ग्स ही नहीं है, हर तरह के गीत उन्होंने बखूबी गाए हैं।

कई किस्से आशा जी शेयर करती रहीं कि किस तरह से किशोर दा के साथ वो गाना रिकॉर्ड कर रही थी और उन्हें और किशोर दा को शुरुआती दौर में रिजेक्ट कर दिया गया था और फिर किस तरह से बुरा लगा था, लेकिन फिर इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद इनका सफ़र जो है वो चलता रहा और उसके बाद क्या इन्होंने मकाम हासिल किया ये हम बखूबी जानते हैं।

अब ओपी नैया साहब के साथ आशा जी काम कर रही थी, लेकिन फिर वो किन्हीं वजहों से फिर उनके साथ उन्होंने काम कम किया। फिर आर डी बर्मन आ गया, आर डी बर्मन साहब के साथ खूब काम किया आशा जी ने। इस बीच हम ये जिक्र करते हैं कि दूसरे संगीतकारों के साथ भी वो काम कर रही थी। तीसरी मंजिल को कौन भूल सकता है, 1966 की फिल्म, शम्मी कपूर साहब, आशा पारेख जी, हरे रामा हरे कृष्णा, 1971 में कारवां, अमर प्रेम, यादों की बारात, इजाजत, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। और हर तरफ आशा जी की आवाज की धूम थी। कोई भी एक्ट्रेस हो, वो 70 के दशक में अलग एक्ट्रेस आ गई, परवीन बॉबी थी, जीनत अमान थी, रेखा जी थी, हेमा मालिनी जी थी। टाइम बदल रहा था और एक्ट्रेस नई आ रही थी, लेकिन आवाज वही थी आशा भोसले जी की।

उसके बाद दोस्तों खयाम साहब आते हैं और आशा जी को जिंदगी की वो फिल्म देते हैं जिसने ये साबित कर दिया कि आशा जी हर तरह के नगमे गा सकती हैं, चाहे वो भजन हो जैसा हमने जिक्र किया है पहले। गजलें जो आशा जी ने गाई उमराव जान फिल्म के लिए, शहरयार साहब ने लिखी, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, जुस्तुजू जिसकी एक एक गजल। हालांकि जानकर तो पहले ही से जानते थे कि आशा जी हर तरह के नगमे गा सकती हैं, लेकिन वो होता है ना कि जब ये गजलें आईं और लोगों के दिलों और दिमाग पर छा गईं और आज भी लोग जितनी शिद्दत से उस वक्त इन गजलों को सुनते थे आज भी सुनते हैं, तो फिर क्या कहने।

बीच में गाने बहुत से आए, बहुत सी फिल्में आई, लेकिन सबका हम जिक्र नहीं कर रहे, सबका जिक्र करना आसान नहीं है, लेकिन नगमे हम जरूर झलकियां सुन रहे हैं, तो इससे अंदाजा हो जाता है कि आशा जी का क्या कद रहा।

आशा जी के कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये बताया कि उस जमाने में बड़ा हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था लता जी के साथ, और तमाम सुमन कल्याणपुर हों या मेल सिंगर्स रफ़ी साहब हों या किशोर दा हों, मुकेश जी हों, मज़ा आता था कि एक हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था कि ये ऐसा गा रहे हैं इतने ऊंचे, इतने ऊपर जाकर, तो हम भी ऐसा गाएं। वो एक अलग ही दौर था।

हालांकि आशा जी ने बाद में भी कई फिल्में उनकी आई, चाहे वो ताल हो, रंगीला हो, दिल तो पागल है, नई हीरोइंस के लिए उन्होंने गीत गाए और ये साबित कर दिया कि जो सफर 40 के दशक में शुरू हुआ 50, 60, 70, आशा जी की आवाज वैसी ही रही कि कोई बिल्कुल यंग एक्ट्रेस हो। और ऐसा लगता नहीं था कि आशा जी की इतनी एज हो गई है, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई वही उम्र की कोई गायिका गा रही है। ये कमाल और कौन कर सकता था सिवाय आशा जी के।

जहां आशा जी ने पुराने संगीतकारों के साथ काम किया तो वहीं नए संगीतकारों के साथ भी खूब काम किया, चाहे वह अनु मलिक हों, जतिन ललित हों, नदीम श्रवण हों या हों ए आर रहमान।

हमने जिक्र किया आशा जी की जिंदगी में दर्द, हालांकि जो नगमे उन्होंने गाए हैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन शुरुआत से ही उनकी जिंदगी में जो दर्द रहा हम उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन 2012 में उनकी बेटी वर्षा इस दुनिया में नहीं रही और हेमंत भोसले जी उनके बेटे भी 2015 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ से वो गुजरी होंगी।

लेकिन उसके बाद भी आशा जी जिंदा दिल रहीं। मिलती तो लोग यही समझते कि ये युवा हैं, दर्द को छुपा लेती, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि खैर वो सबकी लाइफ में इस तरह की बातें होती हैं, कि हम उसको मैनेज कैसे करते हैं ये ज़रूरी है। और ये मैनेजमेंट आशा जी बहुत अच्छे से जानती थी। खुश मिजाजी से सबसे मिलती थी, बेहतरीन खाना बनाती थी, और लोग जब उनके घर जाते तो उनके खाने के मुरीद हो जाते हैं।

श्रोताओं, आशा जी के बारे में तो हम बात करते रहेंगे और न मालूम कितना वक्त बीत जाएगा, लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि उन्होंने खाली हिंदी गीत नहीं गाए, उन्होंने कई मराठी नगमे भी गाए। यहाँ तक कि उन्हें 1962 के लिए मराठी फिल्म मानिनी के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ मराठी फिल्में हैं जेत रे जेत, संगते आयिका, सिंहासन, सामना और बहुत सी। यही कमाल उन्होंने बंगाली गीतों में भी किया। 1958 में उन्होंने पहला बंगाली गीत रिकॉर्ड किया जिसका संगीत दिया सुधीन दास गुप्ता और विनोद चट्टोपाध्याय ने। राहुल देव बर्मन ने भी कई हिंदी गीतों को भी बांग्ला में उन्होंने परिवर्तन किया उनका, जैसे कि आराधना का गीत है गुनगुना रहे हैं भंवरे, और भी बहुत से और बहुत सी लैंग्वेजेस के लिए उन्होंने गीत गाए। विदेशों में भी उनकी आवाज की धूम रही, जैसे बॉय जॉर्ज के साथ उन्होंने गाया और उसके अलावा कई इंग्लिश सॉन्ग्स में भी उन्होंने अपनी आवाज दी। आइए सुनते हैं आशा जी की आवाज में कुछ दूसरी भाषाओं के गीत।

जहां आशा जी ने तमाम मेल सिंगर्स के साथ गाने गाए, वहीं कई फीमेल सिंगर्स जैसे कि गीता दत्त हों, शमशाद बेगम हों या खुद लता जी के साथ एक से बढ़कर एक गीतों को अपनी आवाज़ दी है।

अगर हम बात करें जो सम्मान उनको मिले, जो अवार्ड्स मिले, फिल्म फेयर की हम बात करें, तो फिल्म फेयर के लिए उन्हें जो अवार्ड दिए गए वो फिल्म 10 लाख के लिए गरीबों की सुनो, उसके बाद पर्दे में रहने दो फिल्म शिकार, और फिर बहुत सी फिल्में आती चली गईं और कई फिल्मों के लिए वो नॉमिनेट भी हुई। 18 बार वो नॉमिनेट हुई और 7 बार उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया, उससे सम्मानित किया गया।

श्रोताओं, यहां इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि आशा जी को फिल्म रंगीला के लिए स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर नेशनल अवार्ड की बात की जाए तो 1981 में फिल्म आई उमराव जान, इसके लिए, इसके गीत के लिए, दिल चीज क्या है के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और 1987 में फिल्म आई इजाजत, इसका हम नगमा जानते हैं, मेरा कुछ सामान, इसके लिए भी उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर।

0: श्रोताओं, उसके अलावा कई अवार्ड्स से आशा जी को सम्मानित किया गया। सन 1989 में उन्हें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया। सन 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुनिया भर में उन्हें कई अवार्ड्स मिले और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और ये कहें कि उन्हें कई अवार्ड्स मिले, लेकिन जो कलाकार मानता है कि सबसे बड़ा जो उसका अवार्ड होता है, जो जिससे खुशी मिलती है कलाकार को, वो होता है लोगों का जो प्यार मिलता है, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है।
1: वो उम्मीद के मोहब्बत को निभाया हमने।
0: श्रोताओं, आशा जी की बातें हम करते रहेंगे और कभी खत्म नहीं होंगी, चाहे उनकी फिल्मों के किस्से हों, उनकी पर्सनल लाइफ हो, उनकी फैमिली लाइफ हो, लता जी का जिक्र हो, उनकी दूसरी बहनों का, भाई का जिक्र हो। एक कलाकार को ऊपर वाले ने ये इज्जत बख्शी है, ये तोहफा दिया है कि कलाकार भले ही इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसकी कला के जरिए, उसके काम के जरिए वो हमेशा हमेशा सदियों तक जिंदा रहता है अपने काम के जरिए। उसकी कला को पूरी दुनिया में प्यार मिलता है, और ऐसी ही रही हमारी आशा जी। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस्मानी तौर पर इंसान नहीं रहता, लेकिन उसके काम के जरिए वो हमेशा हमारे बीच में रहता है। रोज ही हम आशा जी की आवाज़ सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे, एक से बढ़कर एक गीत, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। फिल्म मेरे सनम में एक गीत उन्होंने गाया है, वैसे तो कई गीत हैं, जाइए आप कहाँ जाएंगे, उसमें एक लाइन है, दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज़ चली जाएगी।

यकीनन आशा जी की आवाज़ दूर तक हमारे साथ रहेगी, जो हमारे दिलों पर हमेशा राज करती रही, जिनकी आवाज़ से हमारी सुबह होती रही, शाम होती रही। ऐसी महान गायिका और बेहतरीन इंसान आशा जी को हम एक बार फिर से नमन करते हैं। और एक गीत जो बड़ा मशहूर है फिल्म हम दोनों का, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, जिसमें आशा जी ने कहा था, अगर मैं रुक गई अभी तो जा ना पाऊंगी कभी, लेकिन फिर भी ये दिल है हमेशा यही कहता है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

सात साल से लेकर 35 साल की 110 शिष्याओं ने दी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम की प्रस्तुति। गर्मी भरे दिन के बाद सोमवार शाम श्री यलियम नाट्यश्री कला समिति का नाट्य उत्सव 2026 सुर लय और भावों से सजी सांस्कृतिक संध्या बन गया। कार्यक्रम में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव में 7 से 35 वर्ष तक की 110 शिष्याओं ने मंच पर अपनी साधना और कला का प्रदर्शन किया। इनमें 62 साधिकाओं ने अरंगीत्रम के तहत पहली औपचारिक सार्वजनिक प्रस्तुति दी। शास्त्रीय नृत्य में अरंगीत्रम वर्षों की साधना के बाद कलाकार की मंचीय यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। वहीं रंग आरोहण के अंतर्गत 23 नन्ही कलाकारों ने घुंघरू पूजन के बाद पहली बार घुंघरू धारण कर नृत्य यात्रा की शुरुआत की।

वहीं भोपाल बर्ड संस्था द्वारा समर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत भोजताल के विशनखेड़ी क्षेत्र में बर्ड काउंटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रीष्म ऋतु में सक्रिय स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की पहचान कर उनकी उपस्थिति का वैज्ञानिक दस्तावेज तैयार करना है। इस दौरान करीब 60 से अधिक पक्षी प्रजातियों को चिन्हित किया। इनमें फ्रीजेंट टेल्ट जयकाना विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। ये जल पक्षी अपने लंबे पैरों और पंजों के कारण तैरती हुई वनस्पति खासकर लिली के पत्तों पर सहजता से चल सकता है, जिससे यह पानी पर चलते हुए प्रतीत होता है। प्रजनन काल में इसकी लंबी पूंछ और काले सफेद रंग इसे और भी आकर्षक बनाते हैं।

प्रजा प्रवाह मध्य भारत प्रांत द्वारा वरिष्ठ लेखक प्रशांत पोल द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया से भारत का विमोचन समारोह मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हेमंत शर्मा करेंगे। स्वाधीन भारत में औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ संघर्ष और भारत की भारतीयता की समीक्षा करती है। वरिष्ठ लेखक और संस्कृति कर्मी राम प्रकाश की 2 पुस्तकों स्मरण में है आज जीवन और यदा कदा पर केंद्रित एक विशेष पुस्तक चर्चा का आयोजन 8 मई को किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शाम 5:30 पर दुष्यंत कुमार स्मृति पांडुलिपि संग्रहालय में होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कथाकार शशांक करेंगे।

भोपाल किताबों से आगे बढ़कर जिंदगी को करीब से समझने की दिशा में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT भोपाल ने एक अहम कदम उठाया है। 4 मई से शुरू हुए वर्किंग विद कम्युनिटी सप्ताह में भावी शिक्षक अब कक्षा से बाहर निकलकर समाज के बीच सीखने का अनुभव ले रहे हैं। 4 से 9 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में BEd के 107 और इंटीग्रेटेड BEd MEd के 53 छात्र सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, सहानुभूति और जमीनी समझ विकसित करना है। कार्यक्रम से पहले 30 अप्रैल को आयोजित अभिमुखीकरण सत्र में विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन से जुड़कर सीखने के लिए प्रेरित किया। आजकल टोट बैग का चलन है। लोग मार्केट से लेकर ऑफिस तक इन बैग्स को लेकर जा रहे हैं। ये टोट बैग और खूबसूरत लगे इसके लिए प्रयास आर्ट गैलरी में कलाकार शश्मि जैन के निर्देशन में टोट बैग पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में 7 से 60 वर्ष तक की लगभग 25 महिला और बच्चों ने भाग लिया।

पद्मश्री श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के जन्मदिवस पर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर पुरातत्व शोध संस्थान भोपाल में विभागीय अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संस्थान में वाकड़कर जी के पुरातत्व और कला क्षेत्र में योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई, जिसके तहत ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत संस्थान को इंक्यूबेशन सेंटर घोषित किया गया है। इस पहल के तहत मध्य प्रदेश की पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। नटराज कथक कला अकादमी के प्रतिष्ठित फुलवारी 2026 का आयोजन इस वर्ष विश्व योग दिवस 21 जून को होगा। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग आरंभ कर दी गई हैं। इस आयोजन के तहत नृत्य कार्यशाला 15 मई से अकादमी के प्रशिक्षण केंद्र मंदाकिनी कोलार रोड पर आरंभ हो रही है। शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी ने लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। लाइब्रेरी की पहचान को दर्शाने वाला आकर्षक लोगो डिजाइन करना होगा। बता दें कि लाइब्रेरी 1955 से चल रही है और यहाँ दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है। लोगो डिजाइन में विजेता को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए mp.mygov.in/task/logo-design-competition मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी स्पेस भोपाल पर विजिट कर सकते हैं। किसी कलाकार के नजरिए से दुनिया को देखने और अपनी रचनात्मकता के माध्यम से भावनाओं को साझा करने का एक सशक्त माध्यम है चित्रकला। प्रतिभाले आर्ट्स एकेडमी में इन दिनों चल रही कार्यशाला में एक्सपर्ट प्रतियोगियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर की शिष्या एवं चित्रकार डॉक्टर रेखा भटनागर ने कैनवास पर चेहरे और उनके भाव बनाना सिखाया। इस कार्यशाला में अभिनय, वॉइस, स्पीच, थिएटर गेम्स, सीन वर्क, इम्प्रोवाइजेशन, संगीत, चित्रकला एवं प्रॉपर्टी मेकिंग आदि पर कार्य किया जाएगा। तो ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जैक्स स्पिक्स और जापानी मर्सिनरी एक साम्राज्यवादी सैन्य प्रयोग 1615 में हिराडो के सकरे और व्यस्त बंदरगाह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC के मुख्य व्यापारी जैक्स स्पिक्स ने भटकते हुए लोगों की एक बेचैन भीड़ को देखा और उसमें एक साम्राज्य के उद्धार का रास्ता पाया। उस समय VOC सैन्य जनशक्ति के पुराने संकट से जूझ रही थी। यूरोपीय सैनिक महंगे थे, देरी से पहुंचते थे और अक्सर 8 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के दौरान ही दम तोड़ देते थे। स्पिक्स को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी के मोहरे के रूप में काम करने के लिए साहसी पुरुषों की एक व्यवस्थित भर्ती शुरू करें। यह कोई गुप्त अभियान नहीं था। टोकुगावा शोगुन की स्पष्ट सहमति के साथ स्पिक्स ने हिराडो की लड़खड़ाती फैक्ट्री को एक रणनीतिक भर्ती केंद्र में बदल दिया। जॉन पीटर्स कोइन जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी जापानियों को एक विशेष मार्शल रेस यानी लड़ाकू प्रजाति के रूप में देखते थे, जिनका मानना था कि ये योद्धा केवल अपनी प्रतिष्ठा के बल पर स्थानीय आबादी को शांत कर सकते हैं। स्पिक्स का नवाचार उन कठोर अनुबंधों में था जो उन्होंने इन उत्तेजित जुझारू रंगरूटों को भरोसेमंद सैनिक बनाने के लिए तैयार किए थे। 31 दिसंबर 1615 को उन्होंने 59 रंगरूटों के एक दल को 3 साल के पूर्ण आज्ञा पालन के लिए बाध्य किया, जिसमें उन्होंने डच अधिकारियों को कभी भी जवाब न देने का संकल्प लिया। ये समझौते विशेष रूप से डरावने थे क्योंकि इनमें सामूहिक दंड का प्रावधान था। यदि कोई सैनिक विद्रोह करता तो VOC जापान में मौजूद उनके माता पिता, पत्नियों, बच्चों और गारंटरों को सजा देने का अधिकार रखती थी। स्पिक्स ने इस सैन्य दल को विशेष हथियारों से लैस किया, जापानी आग्नेय अस्त्र, धनुष और बाण, अलग अलग लंबाई के अनेक भाले। ये दस्ता फॉर्चून नामक एक स्थानीय जहाज पर सवार हुआ, जिसे स्पिक्स ने विशेष रूप से इस यात्रा के लिए खरीदा और मरम्मत करवाया था। हालांकि पेशेवर भाड़े के सैनिकों का सपना जल्द ही एक कड़वी हकीकत में बदल गया। 4 महीनों तक रंगरूट हिराडो में ही रहे, जहां शहर के शराबखानों और जुआ घरों ने उनके बीच असंतोष पैदा कर दिया। ओसाका से भर्ती किए गए कप्तान कुसुनोकिजी इत्सिमोन के अकुशल नेतृत्व में बांटन की 51 दिनों की कठिन यात्रा के दौरान ये दल विद्रोह के करीब पहुंच गया। स्पिक्स ने खुद बाद में तर्क दिया कि तलवार ही एकमात्र दवा थी, जिसे ये सैनिक वास्तव में समझते थे। हालांकि इन सैनिकों ने बांदा द्वीपों के क्रूर दमन और व्यापार की झड़पों में असाधारण निडरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कई डच अधिकारियों की नज़र में वे हमेशा एक विद्रोही भीड़ ही रहे। ये प्रयोग अंततः 1623 के अम्बोइना साजिश के बाद पूरी तरह विफल हो गया, जिसके बाद VOC ने जापानी सैनिकों पर हमेशा अविश्वास रखने का फैसला किया। भले ही जैक्स स्पिक्स का डच झंडे के नीचे जापानी सैनिकों की लंबी कतारें मार्च कराने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एशियाई सैनिकों की व्यवस्थित भर्ती का वह बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया, जिसने अंततः पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यों की सफलता को परिभाषित किया।
2: भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन, जिसे यॉर्क फोर्ट या फोर्ट मार्लबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था, कि एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें, जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गुआताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा, यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद नहीं होते यदि शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा, फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था, जिसने जीवित बचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की लहरों के पार भागने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर्स मंथ इस बात की याद दिलाता है कि भले ही कंपनी व्यापारियों की एक संस्था थी, लेकिन इसके दुरुस्त ठिकाने अक्सर अय्याशी के विक्षुब्ध अड्डे थे, जहां पुरुष अपने निर्वासन की सड़ांध भरी वास्तविकता से बचने के लिए शाब्दिक रूप से कंपनी के मुनाफे को पी जाते थे।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मेरा नाम है इतिहास और मैं उन व्यक्तित्वों को कभी भुलाई नहीं भूल पाता जिन्होंने गुलामी के दौर में यह विश्वास हमेशा बनाए रखा कि हम हमेशा गुलाम नहीं रहेंगे और जो सोचा वो कर भी दिखाया।
1: ये तारीख भी सभी श्रोताओं का स्वागत करती है। मैंने हमेशा उन यादों को तारीख के साथ इतिहास के पन्नों में उतारा है जो ये समझकर शहीद हुए थे कि ईश्वर ने हमें केवल देश को आजाद करने की ही जिम्मेदारी दी है।
0: तारीख, आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी युग की प्रथम शहीद महिला की, जो मुक्ति संग्राम में आत्मविसर्जन के लिए हमेशा भयानक विष पोटेशियम साइनाइड लेकर के साथ चलती थी।
1: जी हाँ इतिहास, हम बात कर रहे हैं प्रीति लता वादेदार की।
0: आजादी की लड़ाई के इतिहास में प्रथम शहीद महिला के रूप में गोलपांडा चटगांव की बेटी प्रीति लता वातेदार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। 5 मई सन 1911 को गोलपांडा चटगांव में जन्मी प्रीति लता के पिता जगबंधु वातेदार चटगांव म्युनिसिपैलिटी में हेड क्लर्क थे। 1921 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। प्रीति लता की माता प्रतिभा भी देशभक्त और शिक्षा प्रेमी थी। बचपन से ही प्रीति लता में देश प्रेम की भावना बलवती हो उठी। उनके पिता कहते थे, मेरी यह बिटिया एक दिन चटगांव की सरोजनी नायडू बनेगी, और उन्होंने कर भी दिखाया।
1: किंतु जलियांवाला बाग की कहानी सुनकर प्रीति लता के मन में भी बंगाल के अन्य युवाओं की तरह ये भावना घर कर गई थी कि सशस्त्र संग्राम ही स्वाधीनता प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए जब 1928 में प्रीति लता ने प्रवेशिका परीक्षा पास कर ढाका के ईडन कॉलेज में प्रवेश लिया तो बंगाल के क्रांतिकारी दल श्री संघ की नेत्री लीला राय के दल में शामिल हो गई बिना किसी भय के और कहा,

0: प्रीति लता के साथ उसकी प्रिय सहेली कल्पना दत्त भी कलकत्ता से चटगांव आकर के महिला सम्मेलन में शामिल हो गई। उन दिनों चटगांव क्रांतिकारी दल का संचालन महानायक मास्टर दा यानी सूर्य सेन कर रहे थे। प्रीति लता और उसकी सहेली की दिली इच्छा उनके दल में शामिल होने की थी, पर उस समय क्रांतिकारियों के दल में महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता था, अतः उनके प्रयत्न सफल नहीं हो पाए। इसी बीच प्रीति लता ने ढाका विश्वविद्यालय से आईए पास करके कलकत्ता के बैथुन कॉलेज में बीए में प्रवेश ले लिया।
1: ठीक उसी समय 18 अप्रैल 1930 की रात इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने जिले के सभी शस्त्रागारों पर कब्जा कर मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में भारत की प्रथम गणतांत्रिक सरकार की घोषणा कर दी और सभी नर नारियों छात्र छात्राओं का देश की आजादी के लिए काम करने का आह्वान किया।

0: इसके बाद की घटनाओं ने युवक युवतियों को गहरे से प्रभावित किया। इस समय प्रीति लता और कल्पना दत्त का प्रभावित होना भी स्वाभाविक ही था। जलालाबाद का पहाड़ युद्ध, अमरेंद्र के आत्म उत्सर्ग, कालारपुर के खंड युद्ध, चंदन नगर की लड़ाई, ढाका में लोमेन की हत्या, चांदपुर में तारणी मुखर्जी हत्याकांड आदि घटनाओं ने उनके मन में भी क्रांतिकारियों के गोरिल्ला युद्ध का हिस्सा बनने की ललक तीव्र हो उठी।
1: उस समय चटगांव के क्रांतिकारी दलों के स्थानीय छात्र नेता मनोरंजन राय कलकत्ता में थे। उन्हें कलकत्ता से काफी मात्रा में एसिड चटगांव पहुंचाने का काम सौंपा गया था। इस काम के लिए उन्हें लड़कियों की जरूरत थी, क्योंकि खुफिया पुलिस पुरुषों पर नजर रखती थी, लड़कियों पर नहीं। प्रीति लता और कल्पना दत्त ने इस अवसर को भुना लिया और उनके दल में शामिल हो गईं। अब उन्हें मातृभूमि के लिए काम करने का रास्ता मिल गया था।
0: इसी दौरान प्रीति लता की भेंट क्रांतिकारियों की मददगार गुनुबुआ से हुई, जिनकी सहायता से उसकी भेंट चटगांव में क्रांतिकारी और मृत्यु दंड से दंडित रामकृष्ण विश्वास से जेल में हुई। रामकृष्ण विश्वास को 4 अगस्त 1931 को अलीपुर जेल में फांसी दी गई। फांसी से पहले 40 बार प्रीति लता और उनकी मुलाकात हुई थी। विश्वास ने प्रीति लता की क्षमता पहचान कर उससे कहा था, जितनी जल्दी हो सके मृत्यु शपथ लेकर के किसी काम में लग जाओ। और प्रीति लता ने प्रतिउत्तर में कहा था, मैं आज ही आपकी शपथ लेकर कहती हूँ, मैं काम करते करते अपने कार्य क्षेत्र में ही अपने आप को उत्सर्ग कर दूंगी। क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते।

0: सन 1931 में ही प्रीतिलता और कल्पना दत्त को मास्टर दा, निर्मल दा, तारकेश्वर दस्तीदार, शैलेश्वर चक्रवर्ती और काली किंकर के दल में शामिल कर लिया गया। इसी वर्ष बीए पास करने के बाद 1932 में प्रीतिलता चटगांव के नंदन कानन उच्च बालिका विद्यालय में प्रधान अध्यापिका हो गई। साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती रही। शीघ्र ही उसे सशस्त्र संग्राम का अनुभव भी मिल गया, जिसमें कैप्टन कैमरून मारा गया। साथ ही भारी गोलाबारी के दौरान प्रीतिलता के साथी निर्मलदा और अपूर्व सेन शहीद हो गए।
1: सन 1932 की जुलाई में उन्हें यह खबर मिली कि चटगांव के सभी उच्च अधिकारी यूरोपियन क्लब में इकट्ठे होकर के मदिरा पी रहे हैं और नशे में नाच रहे हैं। बस फिर क्या था, योजना बनाई गई कि सभी को वहीं ढेर कर दिया जाए। क्रांतिकारी शैलेश्वर चक्रवर्ती के नेतृत्व में 10 अगस्त 1932 को आक्रमण की योजना बनी, पर वह सफल नहीं हो पाई। शैलेश्वर ने असफल होने पर विष खाकर के आत्मसर्ग कर लिया।
0: आखिर इस योजना को सफल बनाने का दायित्व प्रीतिलता के नेतृत्व में महिला प्रभाग को सौंपा गया। 24 सितंबर 1932 को आक्रमण का दिन निश्चित हुआ। प्रीतिलता के नेतृत्व में आक्रमण सफल हुआ। सारा इलाका घायलों की चीख पुकार से दहल उठा। गोलाबारी में प्रीतिलता भी घायल हुई थी, किंतु उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए अपने सभी साथियों को निश्चित स्थान पर मिलने का कह जाने का आदेश दे दिया। घायल प्रीतिलता के साथ केवल कालीदा थे। 500 गज चलने के बाद प्रीतिलता की हिम्मत जवाब दे गई।
1: तब उन्होंने कालीदा से कहा कि इससे पहले कि अंग्रेज सिपाही आ पहुंचे, आप अपना साइनाइड मेरे मुंह में डाल दीजिए। और वे बेहोश होकर के गिर पड़ी। कालीदा ने प्रीतिलता की आज्ञा के अनुसार साइनाइड उसके मुंह में डाल दिया और प्रीतिलता ने शपथ के अनुसार आत्म आहुति दे दी, जैसे कह रही हो, विदा करो माँ, अब तो हम जाते हैं।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। नमस्कार, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं कहते हैं कि अगर आप किसी पेट को नहीं पालते हैं या किसी जानवर को नहीं पालते हैं तो आपके इमोशन का एक हिस्सा अनछुआ रह जाता है। हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि अगर आप किसी पेट को, पालतू जानवर को घर में रखते हैं तो इससे भाग्य और समृद्धि आती है। अगर वास्तुशास्त्र की बात करें तो कहा जाता है आपके घर में पेट है तो उससे पूरा एनवायरनमेंट, पूरी हवा ही बदल जाती है। लेकिन इन सबसे परे जो आपका प्यार है आपके पेट के लिए अनकंडीशनल, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गर्मियों में पेट की, पालतू जानवर की देखभाल कैसे की जाए, किस तरह की बीमारियां हैं जिनकी जड़ में वो आ सकते हैं, लेकिन आपके पास सलूशन क्या है वो हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर नारद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच मैडम।
1: सबसे पहले हम आपके बारे में और आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे।
2: मैं डॉक्टर अंकुर नारद हूँ। मैं BBSc NAH, MVSc वेटनरी पैथोलॉजी एंड PhD वेटनरी पैथोलॉजी में किया मैंने, फ्रॉम वेटनरी कॉलेज महू, NDVSU जबलपुर। करेंटली मैं भोपाल में, मेरा पेट क्लिनिक है RGCN पेट क्लिनिक रचना नगर में, जो कि विगत 4 वर्षों से चला रहा हूँ मैं। और मैं पेट प्रैक्टिशनर स्पेशली इन कैट्स के नाम से ज़्यादा फेमस हूँ। और भोपाल में मैं साथ में ही प्रिंसिपल हूँ एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज NDVSU जबलपुर का। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज इस स्टूडियो में आमंत्रित किया इसके लिए। और रही बात कि गर्मियों में पेट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं
1: जी।
2: तो गर्मियाँ एक ऐसा मौसम होता है जिसमें सबको ही बेचैनी रहती है, चाहे वो ह्यूमन हो या पेट्स या कोई आवारा पशु ही क्यों ना हो, सबको इस मौसम में अलग सी बेचैनी रहती है। हाई गर्मी मची रहती है हर तरफ। तो आज हम जानते हैं मिलकर के कि कैसे हम और पेट्स के लिए गर्मी के मौसम को कैसे आनंदमय बना सकते हैं। तो पहला ये रहेगा कि पानी की कमी ना होने दें हमारे पेट्स में, क्योंकि गर्मी में सबको प्यास लगती है, गला सबका सूखता है
1: जी।
2: तो इसीलिए कि पेट्स में भी ऐसा ही होता है, डॉग्स हमारे दिन भर पैंटिंग करते रहते हैं, अपनी जबान को बाहर निकाल के बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, तो उसके द्वारा भी उनको गर्मी लगती है। और साथ ही साथ उनके पॉज, जो पंजों के बीच में एरिया है सॉफ्ट सा, उस जगह पे भी काफी ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जहां से कि वो अपने स्वेट का यानी पसीने का स्पेल करते हैं बॉडी से, और इस द्वारा उनको गर्मी से अपना टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल और मेंटेन कर पाते हैं। तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए कि जैसे कि हम रूम में पानी की अवेलेबिलिटी रखें उनके लिए, जब भी उनको पानी पीना हो एक बढ़िया फ्रेश बाउल वाटर का उनके लिए रेडी रहे। इवन यही चीज हम घर के बाहर भी पेट्स के लिए कर सकते हैं, जो घर के बाहर स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, हमारी गौ माता हैं, जिनको हम हमेशा रोटी तो खिला देते हैं
1: जी,
2: लेकिन पेट्स के पानी के लिए या उनके पानी के लिए बाउल नहीं रखते
1: जी।
2: तो इसीलिए हमको पानी की व्यवस्था जरूरी है गर्मी में। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट, पानी की व्यवस्था वहां पर बनाई जाए। साथ ही में हमको उन्हें ठंडी और कंफर्टेबल जगह देनी चाहिए, जैसे हमको भी पेड़ की छाया पसंद है, कहीं शेड पसंद है या एसी ही क्यों ना पसंद हो, वैसे ही हमारे पेट्स को आजकल पसंद आने लगा है एसी। काफी सारे पेट पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमारा डॉग सब खड़ा हो जाता है एसी की तरफ ऐसे आंख करके और कहता है कि इसको ऑन करिए, और ऑन करने के बाद ही वो ऐसी चैन की नींद में सोता है कि सुबह 7 बजे उठता है हमारे बाद। तो कई बार एसी डॉग्स को आजकल एक बेसिक मैंडेटरी हो गया है उनकी लाइफस्टाइल से कि भाई एसी चलेगा तभी नींद आएगी। और ऐसे ही बेचारे हमारे बाहर जो आवारा पशु हैं, हमारी गौ माता हैं, हमारे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, चिड़िया हैं, उनके लिए भी क्यों ना हम कहीं शेडी प्लेस या हरे पर्दे, हरी चादर उनके लिए लगा दें, जिसमें वो आराम से कुछ देर दोपहर का टाइम 12 से 4 वहां पे गुजार सके। अब हमें दूसरी एक और चीज का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बाहर जाने का समय। हम लोग पहले पेट्स को कोशिश करते हैं, जैसे छोटी स्टेज में, पपी स्टेज में, छोटे छोटे श्वानों को बार बार यूरिन और पॉटी कराने के लिए हम उनको बाहर ले जाते हैं
3: जी।
2: अब इस मौसम में बार बार बाहर ले जाना तो मुश्किल है, क्योंकि उनके छोटे छोटे पैर होते हैं, पॉज का साइज भी छोटा होता है, प्लस उनके पॉज इतने हार्ड नहीं होते नीचे से जैसे कि बड़े डॉग के होते हैं, तो उनके सॉफ्ट रहते हैं, तो उसके कारण उनको सनबर्न्स हो सकते हैं
3: अच्छा
2: स्किन में। और दूसरी चीज कि वो इतना हाई टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड्स को एकदम से तपती हुई सड़क पे हम डामर की उनको ले जाएं घुमाने के लिए वॉक पे, वो भी थोड़ी दूर, क्योंकि आजकल क्लोज सोसाइटी का कैंपस है तो सभी लोग चाहते हैं कि बाहर रोड के साइड में कहीं फुटपाथ के आसपास या डिवाइडर या खाली जगह पे ग्राउंड में, जहां पे लोग यूरिन और पॉटी के लिए ज्यादातर डॉग्स को ले जाना पसंद करते हैं, सोसाइटी में तो अलाउड नहीं है आजकल, तो वहां पे लोग ले जाते हैं। तो वहां पे भी यही होता है कि इतना लंबा रन लेकर के जाना, दिन में 4 बार या सुबह एक बार ले गए और फिर उसके बाद दोपहर में, फिर शाम का, फिर रात का, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता गर्मियों के मौसम में। कि दोपहर का और सुबह वाला तो फिर भी 6-7 बजे का तो ठीक है, बट 10-12 बजे 11 बजे वाला जो एक राउंड है उसको हम थोड़ा चाहें तो डिले कर सकते हैं, शाम के 4 या 5 के बाद उसको निकालें और अपने घर में ही कहीं प्रोविजन बनाएं, जैसे कि आगे वरांडे में या कोई कॉरिडोर हो वहां पे, कि वहां पे ही वो यूरिन और पॉटी करने के लिए कुछ समय के लिए व्यवस्था बन जाए।
3: अच्छा सर, मैं यहाँ एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि यूरिन और पॉटी के लिए हम एक ऐसा स्थान बनाए, तो जिसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्या हम ऐसे एनिमल को भी सिखा सकते हैं?
2: हाँ मैडम बिल्कुल, यूरिन और पॉटी की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे आजकल गैजेट्स आ गए हैं।
3: अच्छा,
2: गैजेट्स का मतलब यह है कि आजकल काफी सारे ट्रीट्स आ गई हैं।
3: अच्छा,
2: कि आप अपने पेट को ट्रीट्स दे करके उनको सिखा सकते हैं कोई भी चीज, कोई भी कमांड आप उनको सिखा सकते हैं, जैसे कि आप सिट, मूव, हैंड शेक, रोल डाउन, स्लीप, बार्क, चुप हो जाना, शांत हो जाना, साइलेंट, ऐसे छोटे छोटे कमांड्स तो साथ हैं, साथ साथ में हम उसको यूरिन और पॉटी के लिए भी बोल सकते हैं गो एंड टेक।
3: हाँ।
2: तो हम जाके वहां पर के उस जगह पे पर्टिकुलर साइट पे उनकी, वैसे भी एक कई बार डॉग्स की एक आदत होती है टेरिटरी मार्किंग की, कि वो अपनी एरिया को पहचानते हैं और अपनी एरिया की रोज जाके रक्षा करके आते हैं सीमाओं की, तो वो उसको चेक करने जाते हैं बाउंड्रीज को अपनी।
3: अच्छा।
2: कि मेरे घर की, मेरी गली में कोई नया तो नहीं मेहमान आया है, तो उसको वहां तक, वो उसको एक राउंड फिक्स होता है कि मेरे को उस टेरिटरी के उस लाइन के उस छोर तक मुझे घुमा के ही लाना है, वो मेरा एंड पॉइंट है, वहां तक मैं जाऊंगा, देख के आऊंगा। तो उसी तरह से हमारे पेट्स का ऐसे ही से मूड होता है कि हाँ भाई वहां तक जाना ही है, तो रोज का एक राउंड होता है, तो वो उस जगह पे एक पर्टिकुलर स्पॉट तय करके आते हैं कि हम जाएंगे तो गाड़ी के टायर हुए या कोई कार खड़ी नहीं है तो वहां पेड़ है, ट्री गार्ड
3: है,
2: दीवार है और नालियां हैं या रोड के एक छोटा सा कॉर्नर जो होता है उस जगह है, तो एक सेट पॉइंट होते हैं उनके कि मैं इस जगह पे जाके जरूर यूरिनेट या पॉटी करके आता हूँ, और या तो फिर कोई दूसरा डॉग की स्मेल करके उस जगह पर, यदि वहां पे कोई दूसरा डॉग करके गया है उसकी स्मेल मिटाने के लिए ही अपने वहां पे यूरिन करके आते हैं।
3: अच्छा,
2: तो इसी कारण से हम उनकी ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं पॉटी ट्रेनिंग आजकल डॉग्स में, उसके लिए स्प्रेज अवेलेबल है, पेट पॉट स्प्रे, यूरिन डिस्ट्रॉयर स्प्रे, यदि हम चाहते हैं कि वो सामने वाले के घर के दीवार पे ना करे तो हम अपने साथ वो स्प्रे लेकर के जा सकते हैं।
3: अच्छा,
2: वो स्प्रे हम उसके वहां उस जगह पे कर देंगे तो वहां पे वो यूरिन नहीं करेगा, वो
3: अच्छा।
2: दूसरी जगह जाके करेगा। और वैसे पेट पॉट स्प्रे है, ये पेट पॉट स्प्रे जो बना हुआ है ये इसलिए बना है कि आप अपने पेट को यहाँ पॉटी करवाना चाहते हैं, ऐसे ही हम हमारे चाहते हैं कि हमारे पेट्स हमारा टॉयलेट यूज करना स्टार्ट कर लें यदि घर में है तो। काफी सारे डॉग्स हैं जो घर में टॉयलेट को यूज कर लेते हैं। टॉयलेट का यूज करने का मतलब कि वो घर में जो पास में टॉयलेट के आसपास कोई नीचे ड्रेनेज सिस्टम नाली बनी होती है उसी में जाके यूरिन करके वापस आ जाते हैं। कई बार घरों में दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, चाइल्ड होते नहीं है, उनकी मदर होती है, ओल्ड एज होते हैं या सर्वेंट्स होते हैं कई बार, या डॉग पेरेंट्स को, बेसिकली पेट पेरेंट्स को कहीं जाना होता है तो वो अपने पेट को कहीं छोड़ के जाने चाहते हैं 8 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, तो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम इसको अकेला छोड़ सकते हैं, हम बाकी कैमरे वगैरह लगा के जाएंगे, कुछ होगी तो हम तुरंत आ जाएंगे या हमारे पड़ोसी को हम भूल के जाएंगे देख ले। लेकिन क्या होता है, डॉग का मेन उद्देश्य जो जीने का है वो यही है कि खाओ और सो, क्योंकि डॉग्स आर नॉट प्रोडक्टिव एनिमल्स। आप डॉग को दूध धोने के लिए नहीं पालते हैं, डॉग को आप अपने एक सोशलाइजेशन, आजकल तो स्टेटस भी हो गया है। स्टेटस ऐसे कि पहचान हो गई है कॉलोनी में लोगों की, कि भाई उनके यहाँ 2 बड़े बड़े डॉग्स हैं, उनका घर 4 कुत्ते वाले भाई साहब,
3: अच्छा,
2: दो कैट वाली मैडम।
3: हाँ हाँ,
2: ऐसे करके भी जाना जाता है। इवन आजकल तो मैंने ये भी देखा है मैडम, एक नया ट्रेंड है पेट लवर्स का कि उनकी सगाई की अंगूठी भी वो पेट के थ्रू आजकल स्टेज पे ला रहे हैं।
3: अच्छा,
2: ट्रेंड हो गया है कि उसके गले में वो छोटी सी बास्केट बांधी हुई है और वो स्टेज तक जा रहा है बढ़िया, और वहां पे वो दूल्हे और दुल्हन को, कपल्स को रिंग दे रहा है उनकी एंगेजमेंट पे। तो आजकल का स्टेटस सिंबल बहुत डिफरेंस है, सोसाइटी बहुत अच्छे से इन सब चीजों का एडॉप्ट कर चुकी है और आजकल दोनों तरह के लोग हैं, कुछ पसंद भी करते हैं कुछ ना भी पसंद करते हैं, बट पसंद करने वालों की संख्या ना पसंद वालों से ज्यादा है।
3: सर, अब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अभी चल रहा है गर्मियों का मौसम, तो हम अपने पेट की देखभाल कैसे करें?
2: सबसे बड़ी मैडम पेट की सब खतरनाक चीज यदि अब इस समय है तो वो है ग्रूमिंग एंड केयर। ग्रूमिंग कैसे करी जाए? अब साहब की सबको रहता है सर कितनी बार नहलाएं, ये तो पानी में ही बैठा रहता है। कई बार ये बोलते हैं सर हफ्ते में एक दिन नहलाएं, कई बार बोलते हैं सर हफ्ते में, ये तो रोज नहाना चाहता है, कई बार बोलते हैं कि नहीं सर इसको तो महीनों में एक बार नहला दो तो बड़ी आफत होता है। तो इस समय हमारे पेट की स्किन और हेयर्स फर कोट की क्वालिटी को देखते हुए हमको उसको बात देना चाहिए। पहली सबसे बड़ी चीज, लोगों को लगता है कि गर्मी आ गई बाल कटवा दो, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल कटवाने से और स्किन जो है उनकी पेट्स की वो डायरेक्ट कांटेक्ट में जाती है सन के।
3: अच्छा।
2: और उससे स्किन में उनको ड्राइनेस हो जाती है, रेडनेस, पैचेस होते हैं, इरिटेशन होती है, कई बार तो उनको पैरासाइट्स का भी खतरा रहता है।
3: अच्छा।
2: जैसे कि टिक्स, फ्लीज, माइट्स, इनका भी खतरा बढ़ जाता है क्योंकि ये जो फर है वो उनका प्रोटेक्टिव कवरिंग है।
3: ओके।
2: वो उनको गर्मी, ठंडी, बारिश, टिक्स, फ्लीज, डोर डस्ट सबसे बचाता है, और हमने उसको करा दिया जीरो तो अब प्रोटेक्टिव तो बची नहीं, तो वो बेचारे पूरे एक्सपोज हो जाते हैं सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो ऐसा ना करें, जीरो ट्रिमिंग बिल्कुल नहीं कराएं। बहुत बड़े बाल वाला डॉग है, जर्मन शेफर्ड ब्रीड का, तो मीडियम साइज ट्रिमिंग करा सकते हैं।
3: अच्छा।
2: बट जिसके फर छोटे साइज के हैं उसको नहीं कराना है, 10 दिन से लेकर के हफ्ता या 2 हफ्ते में 1 से 2 बार बात देना पेट्स को जरूरी है, और साथ में उसको कॉम्बिंग करना जरूरी है जिससे कि उसकी नॉर्मल हेयर फॉल जो शेडिंग हो रही है हेयर्स की वो रूटीनली शेडिंग हो जाए और नए हेयर्स ग्रो कर सके, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, टिक्स फ्लीज का पता चले, यदि टिक्स फ्लीज है बॉडी में तो उसके लिए आप स्पॉट ऑन्स अवेलेबल है, मार्केट में स्प्रेज अवेलेबल है, टिक कॉलर्स तक आ गई हैं जिनके अंदर दवाइयां डली हुई, आप बस कॉलर पहना दीजिए और पेट को घूमने दीजिए, वो दिन भर उसके बॉडी में खेलता रहेगा, उसमें से जो पाउडर है उसकी बॉडी पे स्प्रिंकल होता रहेगा और कोई भी टिक उस पर अटैच नहीं हो पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी एक चैलेंजेस वाली बात है कि खाना नहीं खाते पेट्स।
3: अच्छा।
2: कूलिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको ठंडा खाना पसंद हो जाता है, हर पेट आइसक्रीम खाना चाहता है, कई बार तो हमने ये तक देखा है कि सर बिना आइसक्रीम के तो ये पसंद ही नहीं करता, रोज ऐसे देखता है कि आज कौन सी आइसक्रीम लाए, आज कुल्फी है तो कल शायद वेनीला और उसके बाद बटर स्कॉच और मैंगो फ्लेवर इसकी फेवरेट है, मैंने तो ये भी सुन चुका। हमको क्या करना चाहिए इस समय कि हम उनको ठंडा पानी दे दें पीने के लिए, कुछ आइस क्यूब्स उनके पानी में डाल दें जिससे कि उनका एंटरटेनमेंट होता रहे, आइस क्यूब्स इधर से उधर फिसलते हैं उनके कटोरी में और वो उसको पकड़ने की बार बार कोशिश करते हैं। आपने बहुत ध्यान दिया होगा, एक डॉग पानी पीता है तो वो पानी को चाटता है, लैप करता है, और एक गाय पानी पीती है तो वो पानी को सक करती है स्ट्रॉ की तरह।
3: अच्छा।
2: आपने दोनों की अलग अलग पानी पीने की विधि देखी होगी, कभी गाय को पानी पिलाने देखा होगा और आपने डॉग को पानी पीते हुए देखा होगा।
3: हाँ।
2: तो डॉग जो है वो पानी को लैप करता है।
3: अच्छा।
2: उसका पानी पीने का बर्तन, उसका पानी पीने का तरीका अलग है, और गाय का पानी पीने का बर्तन और उसका पानी पीने का तरीका अलग।
3: तो क्या हमको दोनों के बर्तन भी अलग अलग
2: अलग अलग? बिल्कुल यस। गाय को एक ऐसा टैंक या डीप ड्रम टाइप की चीज चाहिए जिससे कि वो उसमें क्वांटिटी से सक कर सके, और डॉग के लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए।
3: अच्छा।
2: मतलब परात जैसा बर्तन या बाउल जिसमें वो आराम से उसके टंग को मूव करके लैप करके कैच कर सके। डॉग को पानी सक करते नहीं बनता।
3: अच्छा।
2: डॉग लैप करता है।
3: ओके।
2: और हम उसके साथ साथ उनके लिए फूड जो है वो हम ठंडा करके दे सकते हैं।
3: ये तो पेट एनिमल की बात हुई, लेकिन जो हमारे घर के बाहर एनिमल है उनको हम किस तरह का खाना दे सकते हैं?
2: उनको, उनके लिए आप घर में खुद एक आइसक्रीम ऐसे तैयार कर सकते हैं जैसे कि तरबूज के आइस क्यूब्स। आप तरबूज के आइस बर्फ में जमा के थोड़ा सा तरबूज के बीजे निकालने पड़ेंगे, सीडलेस करना पड़ेगा उसको, उसके आइस क्यूब्स बना सकते हैं। खीरा बहुत अच्छा है, आप बाहर के कोई डॉग है तो उसको थोड़ा दही दे सकते हैं, दही चावल,
3: दही खा सकते हैं।
2: बिल्कुल मैडम, दही खा सकते हैं डॉग्स में। पहले तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले पूरा डॉग्स अपना जीवन दूध रोटी पे ही व्यापन कर लेते थे। अब ये नए चलन में है कि भाई पेडिग्री खिलाई जाए, ट्रीट लाई जाए, बोन लाई जाए।
3: ये तो अपने पेट एनिमल को हम खिला सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग को तो नहीं।
2: स्ट्रीट डॉग को भी खिला रहे हैं बहुत सारे पेट लवर्स हैं जो घर में पेट नहीं रख सकते, लेकिन घर के बाहर जितने भी पेट्स हैं उनके लिए बहुत 100 रुपए किलो में आजकल पेट फूड अवेलेबल है। 100 रुपए किलो।
3: अच्छा।
2: एक बाउल सुबह एक बाउल शाम, 100 से 150 ग्राम आप सुबह शाम उसको दे रहे हैं, वो पेट की पूर्ति हो जाती है। बाकी दिन भर वो इधर उधर से रोटी और जो उसको मिलता है सामग्री वो अपना उसमें दिन गुजारा कर लेते।
3: इन दिनों किस तरह की बीमारियां और ऐसी कौन सी कॉमन बीमारियां होती हैं जिनकी चपेट में जो हमारे एनिमल हैं वो आते हैं, चाहे हमारे पेट हो या हमारी गाय हो बिल्लियां हो?
2: जैसे ही हम जानते हैं कि हमको ही लू लगती है, ऐसे ही हमारे पेट को भी लू लगती है।
3: अच्छा
2: जी। जैसे लू लगना यानी गर्म तपा, नौ तपा जब हमारे चालू होते हैं तो उसमें जो गर्म हवाएं चलती हैं हीट वेव्स, उसके द्वारा उसकी चपेट में हम आ जाते हैं और हमारी बॉडी में हाइपरथर्मिया हो जाता है।
3: अच्छा।
2: हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, तब हम लोग ठंडे वस्त्र मतलब एक टॉवल से अपने लू उतारने का जो प्रक्रिया होती है पुराने घरों में वो करते हैं, पानी में गीला करके। कई बार घर में पना बनाया जाता है, पना पिलाया जाता है, नींबू पानी दिया जाता है, इलेक्ट्रोल्स दिए जाते हैं। ऐसे ही पेट के लिए भी इलेक्ट्रोल्स आजकल अवेलेबल है, उनमें 500 ml से 1 लीटर में आप घोल करके वो फ्लेवर्ड होते हैं, तो आप घर का पेट हो या बाहर का उसको वो दे सकते हैं।
3: अच्छा।
2: साथ ही साथ गर्मियों की चपेट में अपने पेट्स को बचाने के लिए आप उन पे गीली टॉवल लगा सकते हैं, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। जो हमारे पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, वो भी अपने फॉगिंग सिस्टम आजकल अवेलेबल है, उसमें कुछ नहीं है, कुछ सेट पर्टिकुलर टाइम में फॉग्स स्प्रे होते रहते हैं, फॉग यानी पानी के फुहारा, वो पानी का फुहारा वो बार बार स्प्रे करते रहते हैं जिससे कि वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ऐसे ही घर के बाहर की यदि कोई गाय है तो उसके लिए हमको बड़े पेड़ के नीचे सुविधाजनक स्थिति बना देके, वहां हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हो, एनिमल होगा तो हम उस पर पानी डाल देते हैं और बोलते हैं कि ये हमारी जगह, यहाँ से हटो या हम कार खड़ी करेंगे ठंडी, तो वो एनिमल कहाँ धूप में बैठेगा। ये गलत है, आप अपनी कार अपने घर के अंदर रखें या उसके लिए कहीं व्यवस्था बनाएं, बट हमारे एनिमल के लिए जो पेड़ वाली जगह है उसके लिए दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि उस एनिमल को बैठने के लिए भी तो कोई जगह बचे। वो बेचारे ना रोड पे रह सकते हैं, ना घर के सामने खड़े हो सकते हैं, पशुपालक है उनने उनको आवारा कर दिया होता है, या वो कहीं एक्सीडेंट में बेचारे थोड़े से टूट फूट जाते हैं, उनके हाथ पांव फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो वो बेचारे पूरे कॉलोनी में पूरे शहरों में मंडराते रहते हैं। शहर से बाहर जाते हैं तो हाईवेज में एक्सीडेंट हो जाती है, बड़ी बड़ी बसें आजकल जो बहुत हाई स्पीड में चल रही हैं,
3: एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है।
2: स्वाभाविक है। हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए हमको इस समय थोड़ी सी जगह अपना दरिया दिल बनाना पड़ेगा और उनको थोड़ी सी जगह देनी चाहिए। बेचारों को छांव में यदि जगह मिल जाती है तो वो वहां अपनी दोपहर तक काट लेते हैं, फिर शाम और रात में वो अपने फिर खाने पर निकल जाते हैं।
3: अभी बात हमने की हीट वेव्स की, तो यदि ये हीट वेव्स होती है और इस समय हमारे जो एनिमल हैं उनको लू लगती है तो वो कौन से लक्षण होते हैं और उससे बचाव कैसे किया जाए?
2: उसमें लक्षण की बात तो मैं बताऊंगा मैडम कि उसमें सबसे ज्यादा आंख पे दिखता है कि आंखें लाल हो जाती हैं।
3: अच्छा।
2: नाक के पास सूख जाती है, जो उनके नाक के नॉस्ट्रल्स होते हैं नथुने बोलते हैं जिनको, वो एकदम ड्राई हो जाते हैं वो।
3: अच्छा।
2: जबकि वेट रहने चाहिए।
3: अच्छा।
2: जवान हल्की सी सफेद पड़ने लगती है, कान एकदम गर्म हो जाते हैं, पंजे गर्म हो जाते हैं, इवन उनका पेट एब्डोमिन जो है वो तक गर्म हो जाता है।
3: तो ये सेम लक्षण हमारे मतलब गायों
2: को भी, हम लोग हमारी गायों को भी प्यार करने जाएंगे तो हम कभी हमारी गाय को गले के पास प्यार करें, उसके थन के पास प्यार करें, कभी हम उसके चेस्ट के पास नीचे हाथ लगा के देखें और कानों को हम छू के देखें, तो हमको उसमें भी समझ में आएगा कि उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है।
3: अच्छा।
2: और हमारी गाय जो नथुने हैं, जो उसके नॉस्ट्रिल्स हैं सामने मजल है उसका, वो भी ड्राई मिलता है।
3: अच्छा।
2: तो हम उसको भी देख सकते हैं कि ये काफी ड्राई है, मतलब उसको कोई ना कोई तकलीफ है। साथ ही साथ हम उसका रेक्टल टेम्परेचर, मतलब हम पीछे से टेम्परेचर चेक करते हैं उनका एनस के थ्रू, तो रेक्टल टेम्परेचर उनका देख सकते हैं। नॉर्मल डिजिटल थर्मामीटर जो हम घरों में यूज करते हैं उससे भी हम यूज कर सकते हैं और उससे हम टेम्परेचर देख सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 102.5 डिग्री मैक्सिमम रेंज है।
3: अच्छा।
2: और मिनिमम रेंज है 99.9, 100 से स्टार्ट होती है 102.5। यदि इस रेंज में टेम्परेचर है तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। यदि इससे ऊपर जा रहा है 103, 103.5, आजकल तो 104, 105, 106 के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें काफी हाई टेम्परेचर के कारण हाइपोथर्मिया, पेट खाना छोड़ देता है। लोग ये सोचते हैं गर्मी है, एक आध दिन छोड़ देते हैं, दूसरे दिन तक वो 103-104 हो जाता है, फिर आदमी सोचता है आज भी खाना नहीं खा रहा है, ठीक है कल लेके जाएंगे डॉक्टर, वो 105-106 करके लाते हैं। ब्लड रिपोर्ट चेक करने पर डॉग में अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं पाया जाता, बट बिकॉज ऑफ दी हीट वेव्स, इनका हाइपरथर्मिया हो जाता है जिसके कारण टेम्परेचर जो हाइपोथैलेमस है हमारी बॉडी में वो टेम्परेचर अपना राइज कर लेता है और जिसके कारण ये तकलीफ बन जाती है। पेशेंट्स एनोरेक्सिया में चले जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं, वीकनेस आती है और कई बार तो इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, वो खड़े तक नहीं हो पाते।
3: गर्मी के मौसम में हम पशुओं का आवास और आहार का प्रबंधन कैसे किया जाए?
2: मैम, आवास के लिए तो बेस्ट है कि आप उनके लिए शेडी प्लेसेस दें। घर के अंदर हैं तो आप एसी और कूलर का प्रबंध बनाएं। घर के अंदर नहीं रख सकते हैं तो आप बाहर एक शेडी प्लेस, शेड नॉर्मल या फिर हरी कनात बांध करके उनको दे सकते हैं जिसमें वो अपना गुजारा कर लें कुछ दोपहर का जो टाइम है 12 से 4 का उस समय के लिए। आहार के लिए तो मैडम फ्रोजन फूड्स, आइसक्रीम्स, खीरा, कर्ड, राइस, ठंडा दूध, ये सब चीजें उनको दे सकते हैं।
3: सर, पशुओं को कौन कौन से जो वैक्सीन होती है, टीकाकरण होता है और क्यों कराना जरूरी होता है और कब कब कराना चाहिए?
2: मैडम, पशुओं का टीकाकरण जो है वो बेसिकली डॉग्स का हम देखेंगे तो वो 45 दिन से शुरू हो जाता है। 45 दिन में उनका पहला टीका लगता है जिसको बोलते हैं 9-in-1। उसमें 5 वायरसेस और 1 लेप्टोस्पायरा के 4 स्ट्रेन होते हैं। उसके कई सारे आजकल एडिशनल फॉर्म्स आ गए, 10-in-1, 11-in-1 भी आ गया है, लेकिन 9-in-1 सबसे बेसिक है और इजिली है, इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है और बेस्ट है। आप 9-in-1 से पहला 45 दिन पे उसको वैक्सीनेशन करें। उसके बाद उसकी डीवर्मिंग बहुत जरूरी है।
3: अच्छा।
2: पहले पेट्स को 30 दिन पे डीवर्मिंग करनी चाहिए। जब आप नवजात पशु लेकर के आ रहे हैं, किसी पपी को खरीद के ला रहे हैं, तो 30 डेज पे उसकी फर्स्ट डीवर्मिंग कर दें। डीवर्मिंग के 15 दिन बाद उसका पहला वैक्सीन लगवाएं। पहला वैक्सीन लगने के बाद उसका बूस्टर जरूर लगवाएं, जैसे हमने कोरोना में लगवाए थे, कोरोना में कोविशील्ड कोवैक्सीन, वैसे इनके बूस्टर्स हमने समय पे लगवाए, उसी तरह इनके भी वैक्सीन के बूस्टर हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रेबीज एक लाइलाज बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। रेबीज का वैक्सीन पशुओं में 90 दिन पे लगता है, पशु पैदा हुआ उससे 90 दिन, डेट ऑफ बर्थ जानना बहुत जरूरी है। आप उसके 90 दिन होते ही उसका वैक्सीन,
3: 90 दिन से पहले भी लग सकते हैं?
2: 90 दिन से पहले नहीं लगा सकते मैम। यदि वो स्ट्रेप अप है तो भी उसकी एक अंदाजन उम्र पता चल जाती है, उसकी बॉडी कदकाठी वेट देख करके, उसके दांत देख करके और उसकी बेसिक ग्रोथ देख करके तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये 2 महीने का होगा या 30 दिन का होगा। यदि वो 60 दिन का है, 30 दिन का है या उसके बीच का भी है तो कुछ वेट कर करके, क्वारंटाइन पीरियड मान करके उसमें 1-2 सप्ताह या 2 सप्ताह या 3 सप्ताह वेट करके रेबीज का वैक्सीन लगाया जा सकता है। रेबीज एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है, इट इज अ वेरी नोटोरियस वायरस, वो बहुत ही बदमाश वायरस है। जैसे हम जानते थे कि कोरोना को रोकने के लिए हमारा सैनिटाइजर ही काफी है या हमारे मास्क काफी है, हमने हर चीज को सैनिटाइज किया और हमने उसको यूज किया, वैसे ही रेबीज भी है। है तो वो बहुत कमजोर, लेकिन जब बच गया, यदि हमने उसमें लापरवाही करी और हमसे वो चूक होके वो बच गया तो वो सबसे खतरनाक बन जाता है। किसी ने उसको बाइट करी, कुछ भी आपको लक्षण लग रहा, आप तुरंत जाके वैक्सीन लगवा लें, जिसमें बोलते हैं प्री बाइट एंड पोस्ट बाइट।
3: कितने समय, जैसे अगर किसी डॉग ने जो रेबीज हुआ है उसने बाइट किया है किसी को, तो कितने समय के अंतराल पे हम
2: उसमें, मतलब, कितना समय? बोलूंगा कि समय का इंतजार ना करा जाए, वैसे तो 24 घंटे तक का समय रहता है लेकिन हमें समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, आजकल तो हर इंसान के लिए अवेलेबल है 24/7 हॉस्पिटल्स पूरे भोपाल में। किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, बहुत महंगा वैक्सीन नहीं आता है, 300-350-400 रुपए के बीच का वैक्सीन है, आप वो वैक्सीन लेकर के लगवा लें। वैक्सीन लगवाने के साथ आपको डॉग काटा है तो फर्स्ट एड नाम की चीज होती है। फर्स्ट एड में हमको सबसे पहले उसके अपने हाथ उसके साबुन से धुलवाने हैं, बीटाडीन, सेवलॉन या फिर सैनिटाइजर ही क्यों ना, आप उससे उसके हाथ का घाव जो है वो पूरा वाइप करें और तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो सके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा इसके अंदर अंदर जाके आप एक वैक्सीन लगवा लें।
3: और अगर समय पे यदि वैक्सीन नहीं लगा पाया इंसान तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे हमें?
2: सिम्टम्स मैडम बहुत एग्रेवेटेड होते हैं।
3: अच्छा।
2: जैसे कि पानी से डर जाना, आवाज से लैरिंजाइटिस हो जाती है, आवाज नहीं निकाल पाता इंसान, संग ढंग से बोल नहीं पाता, लाइट से डरना,
3: तो ये सारे सिम्टम्स जो दिख रहे हैं ये ठीक नहीं होते हैं,
2: ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी है मैडम।
3: अच्छा।
2: जैसे हमने कोरोना का आज तक कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए, सिर्फ हमने वैक्सीन ही एक उपाय ढूंढा, वैसे ही रेबीज है, रेबीज का भी कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक वैक्सीन ही उसका आखिरी उपाय है। इसलिए हमको जागरूक रहना है, यदि हमारे आसपास किसी भी डॉग, यदि हम खुद ही क्यों ना हम हमारा पेट पालें, हमने उसको वैक्सीन भी लगवा रखी, तो भी हमारा फर्ज बनता है कि हम स्वयं वैक्सीन लगाएं और जिसको भी काटा है उसको भी वैक्सीन लगवाने की सलाह दें।
3: तो डॉग को वैक्सीन लगाना भी जरूरी है और हमें खुद को भी
2: लगाना जरूरी है। यस बिल्कुल मैडम, क्योंकि हमारे डॉग के संपर्क में तो रहते हैं लेकिन हाँ। हमें ये नहीं याद रहता कि हमारा डॉग किस किस के संपर्क में गया है।
3: अच्छा,
2: हमारे डॉग वॉकर्स के भरोसे छोड़ देते हैं हम, हमारे स्टाफ प्यून या घर में जो हाउस हेल्प है उनके भरोसे छोड़ देते हैं डॉग को। डॉग जाता है, घूम फिर के आता है, लड़ झगड़ के आ गया, आपका डॉग आ गया, आपके डॉग को आपने बोला कि ठीक है भाई उसको जाओ डॉक्टर साहब के पास ले जाओ, डॉक्टर साहब ने जाके उसको वैक्सीन लगा दी पोस्ट बाइट, वो वापस घर गया, ओनर के साथ घर में खेल रहा है, उसके टॉयज छू रहा है, उसके सलाइवा से तो सिक्रीट होता है मैडम रेबीज वायरस, उसी
3: तो
2: से तो
3: घर के जितने भी मेंबर हैं सभी को वैक्सीन लगवा,
2: प्रिकॉशन रहना चाहिए। अच्छा। जो भी उसके कांटेक्ट में आता है उसको प्रिकॉशनरी रहना ही चाहिए कि हमको वैक्सीनेशन कराना है और हमारे डॉग को किसी ने काट लिया है, क्यों ना हम सभी वैक्सीनेशन साल में एक बार करा लिया करें।
3: अच्छा, साल में एक बार जरूरी है।
2: आपको आपके डॉग और किसी और डॉग से भी, कैट से भी, किसी भी एनिमल से भी यदि बाइट का कोई भी खतरा है तो वो दूर हो जाएगा।
3: और जो नहीं पालते उनको भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है
2: यदि वो पेट के संपर्क में आते हैं तो। यदि उनको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी जगह रह रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉलोनी में काफी सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स तो नहीं रखे हैं घर में पेट, लेकिन बच्चे
3: खेलते हैं ना
2: पेट्स के साथ, हाँ, खेलते हैं पपीज के साथ, हाँ, छोटे छोटे किटन्स के साथ, हाँ, जाके रोज दिन भर खेलते हैं,
3: हाँ, उनको पसंद
2: अब बच्चों
3: है।
2: को यदि चोट लग जाती है तो बच्चे घर में आके ये बात छुपाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कल फिर मम्मी या पापा डांट देंगे और नहीं खेलने देंगे, तो इसलिए वो इस बात को छुपा देते हैं और वो अपने हाथ में कोई भी क्रीम कुछ भी पाउडर लगा करके चुपचाप बैठ के पढ़ाई करके नेक्स्ट डे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन इस बात को छुपाना नहीं चाहिए। आपके बच्चे यदि खेल रहे हैं तो आप जागरूक हो, आप अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। ये कोई वैक्सीन जानलेवा नहीं है, ये बहुत अच्छा वैक्सीन है, बहुत सेफ वैक्सीन है। इस वैक्सीन से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो आपका भला ही हो। किसी भी हॉस्पिटल में आपके अच्छा। घर के पास जो भी हॉस्पिटल हो, बच्चा है तो कोई पीडियाट्रिक डॉक्टर हो उनके पास चले जाएं, लेडीज हैं तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, कोई भी जनरल फिजिशियन के पास चले जाएं, या आपके घर के आसपास कोई गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हो उसमें भी जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं। प्राइवेट में इसके चार्जेस हैं लेकिन बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, 300 रुपए में आराम से ये वैक्सीन अवेलेबल है।
3: सर, ये तो बात हुई पेट्स की, अब हम बर्ड्स की बात करना चाहते हैं, तो बर्ड्स के बारे में कुछ बताएं।
2: बर्ड्स को मैडम मेरे हिसाब से जो हमारे घर के बाहर पेड़ों पे आते हैं उनके लिए हम कुछ पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और कुछ दाने की व्यवस्था कर सकते हैं। बर्ड का मिश्रित मल्टीग्रेन फूड आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, पूरे हमारे जहांगीराबाद के एरिया में काफी सारे बर्ड मार्केट लगता है, वहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में अलग अलग तरह से बर्ड फूड अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां से 150 रुपए का बर्ड फ्लू ला करके अपने घर के पास थोड़ा सा कटोरी में लेकर के पेड़ पे लटका सकते हैं, जिसमें वो बर्ड दिन भर उसमें दाना चुगती रहेगी। और अन्यथा आप अपने घर में खुद स्वयं बना सकते हैं, जिसमें कि जौ, बाजरा, खली, चरी, चुनी, ये सब चीजें आप मिला सकते हैं, जो पाउडर करा हुआ अनाज है उसको मिला सकते हैं, दलिया मिला सकते हैं,
3: अच्छा,
2: छोटे छोटे चावल के दाने डाल सकते हैं, जौ, बाजरा, ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, तो आप मक्का यूज कर सकते हैं, आप ये सब अवेलेबल ड्राई फूड, ड्राई ग्रेन्स के फॉर्म में उस कटोरी में रख दें और उनको खाने दें, साथ में पानी की व्यवस्था बनाएं। यदि घर में पेट्स हैं, यदि हम घर में एक केज में बर्ड्स पाले हैं या हमने घर में एक बहुत बड़ा केज बना रखा है बर्ड्स की व्यवस्था के लिए, तो हम उन बर्ड्स के लिए भी एक कुछ एडिशनल दे सकते हैं, जैसे कि हम हमारी बर्ड्स के लिए कुछ हल्का सा स्प्रे या पानी की व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें वो हमारा बर्ड्स मतलब गर्मी में ठंड का मजा ले सके, जैसे कि उसमें वो खुल के खेले, नहाए, फाउंटेन में उछल कूद के अपने आप में स्प्रे कर ले, जैसे पैरट्स को बहुत मजा आता है, आप जब भी उनपे स्प्रे करें तो वो पूरे पंख खोल के आराम से ऐसे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल जैसे कि बहुत अच्छे से उनको मजा आ रहा हो स्प्रे और पूरी बॉडी में आगे और पीछे कर दे। ऐसी छोटी छोटी चिड़ियाओं के लिए आप एक छोटा सा बाउल या फाउंटेन रखें तो वो दिन भर उसमें पानी में खेलती रहेंगी। और साथ ही साथ हम हमारी बर्ड्स को फ्रूट्स दे सकते हैं।
3: अच्छा।
2: इस मौसम में हम उनको ठंडे फल खिला सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ तोता है तो वो अमरूद खाता ही है, अमरूद तो अवेलेबल नहीं है तो हम तरबूज दें, आम दें, चीकू दें, कीवी दें, इवन हम कुछ फलों में विटामिन सी के लिए नींबू भी निचोड़ के दे सकते हैं।
3: अच्छा
2: जी, जिससे कि उनको विटामिन सी की मात्रा भी मिले।
3: अच्छा।
2: और कुछ मल्टीविटामिन्स ड्रॉप अवेलेबल हैं जैसे कि बर्ड प्लस, वेन ग्रो, जो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, आप कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं उस पानी में और खाने में वो उसको पर्टिकुलरली चूज करके खा सकते हैं।
3: जी बिल्कुल।
2: अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पेट्स की, एक हमारे घर में आजकल नया पेट है, एक्जोटिक पेट, जिसका नाम है रैबिट और गिनी पिग्स। पहले हाँ। तो ये सिर्फ लेबोरेटरी एनिमल्स के नाम से ही जाने जाते थे, सिर्फ इन पे ड्रग्स और दवाइयां ही टेस्टेड होती थी, कुछ कुछ फार्मेसी के प्रोटोकॉल चलते रहते थे और ये बेचारों का जीवन सिर्फ केजेस में ही रह जाता था। लेकिन अभी अभी बहुत रिसेंटली मैंने देखा कि रैबिट, गिनी पिग, इवन हैमस्टर्स का भी बहुत अच्छा चलन आ गया है। लोग आजकल रैबिट और गिनी पिग्स को बिल्कुल ऐसी तरह से पाल रहे हैं जैसे कि डॉग और कैट। काफी सारे लोग कॉल करके पूछते हैं कि सर आप रैबिट देख लेंगे, आप हमारे गिनी पिग देख लेंगे, क्योंकि इसके पेट प्रैक्टिशनर्स भी नहीं मिलते उनको इजीली। बहुत सारे पेट क्लिनिक्स हैं लेकिन उनको डर लगता है, वो उनको बोल देते हैं कि हम रैबिट और गिनी पिग्स नहीं देखते। तो इसीलिए रैबिट और गिनी पिग्स भी आजकल बहुत सारे पेट्स, मतलब पेट पेरेंट्स पाल रहे हैं। और इनके लिए भी हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं।
3: अच्छा,
2: हरे पत्तों की सब्जियां, पालक, मूली, गोभी और जो भी पत्तेदार सब्जी है, मेथी, धनिया, पुदीना, आप इनको, गाजर, आलू बॉइल्ड, आप टमाटर, ये सब चीजें, इवन फल, पपीता, केला, तरबूज, आम, चीकू, कीवी, आप इनको दे सकते हैं खाने के लिए। अंगूर, ये सब चीजें ये बहुत पसंद करते हैं। साथ ही में हम इसमें लेमन ड्रॉप्स ऐड करें और इनके लिए जो बेडिंग मटेरियल है उसकी में आजकल कई लोग बेडिंग मटेरियल यूज करते हैं जिसमें कि ये लोग हे यूज करते हैं, बेसिकली अच्छा। सूखी हुई घास।
3: हाँ हाँ।
2: और इन लोगों के लिए टिमोती हे भी अवेलेबल होती है जिसको बोलते हैं हम लोग हरी घास या दुआ घास, जो रैबिट्स और खाते हैं। इसमें भी इनको पानी की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाती है।
3: अच्छा।
2: तो गर्मियों में इनके लिए हरी घास और लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लेमन ड्रॉप्स, नींबू के कुछ बूंद, कुछ भी एडिशनल आप उसमें ऐड करें तो उससे उनको बहुत फायदा मिलता है।
3: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने और मैं चाहूंगी एक अच्छा सा संदेश दें आप हमारे सभी श्रोताओं को, उनकी अपने पेट एनिमल के लिए भी और जो हमारे घर के बाहर जो जानवर हैं उनके लिए भी।
2: मैम मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि जियो और जीनो दो का मैसेज जो है वो बहुत अत्यधिक हमारे आज के लाइफस्टाइल में लागू होता है। सभी के लिए हमको सोचना चाहिए और सस्टेनेबल एनवायरमेंट के लिए बारे में हमको आगे चलना चाहिए कि हम जैसे भी हैं पन्नियों का कम से कम उपयोग करें ताकि हमारे पेट्स को या फिर हमारे जानवर जो पशु हैं बाहर घूम रहे हैं, गाय घूम रही हैं, आवारा पशु हैं, वो इन पन्नियों के द्वारा, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि अननोटिस्ड है अभी भी, जिसमें पॉलिथीन का बैन होना अत्यधिक जरूरी होता जा रहा है, ना कि हमारे पोल्यूशन के लिए बल्कि हमारे एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि ये बेचारे हम कहीं भी हाईवेज पे जा रहे हैं, खा रहे हैं बिस्किट और फेंक दे रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं फेंक दे रहे हैं, ये सारी पन्नियां कहीं ना कहीं हमारे ही लाइफ साइकिल में वापस आएंगी और हमें इसके लिए बहुत बहुत बहुत सारी डेंजरस सिचुएशंस आगे देखने को मिल सकती हैं। इसलिए पॉलिथीन का कम से कम उपयोग करें, हमारे जानवरों को बचाएं।
3: अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर अंकुर नारद जी से और सर आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच मैम।
3: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा और चलते चलते हम आपको बताएंगे, इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी अदिति गौड़ की और साउंड रिकॉर्डिंग थी अमित कुंदानी का और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। अब हमारी पूरी टीम को दे अनुमति, नमस्कार, सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अंततः स्वामी जी बंबई से जहाज में बैठकर अमेरिका चले। बंबई छोड़कर जहाज दक्षिणी दिशा में कोलंबो की ओर चला। यात्रा का अंत होगा अज्ञात अमेरिका के अपरिचित जन समाज में। जब तक भारत की पुण्य भूमि दिखाई देती रही, तब तक वे उसे सतृष्ण नयनों से देखते रहे। और जो लोग प्रेम पूर्वक विदा काल में इतने दूर आए हैं और यात्रा की सारी व्यवस्था कर दी है, अथवा जो लोग आ तो नहीं पाए पर उनकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब की बातें वे याद करते रहे और सबकी मंगल कामना करते रहे। उनकी आंखें भीग गई। उन्होंने अपने गुरु को स्मरण किया, मां शारदा को शीश नवाया और अपनी मां से आशीर्वाद मांगा। जन्मभूमि को छोड़कर जाते वक्त उनका दिल टूट रहा था। उन्होंने देखा चारों ओर केवल समुद्र की नील जलराशि। उन्होंने मन ही मन जन्मभूमि को प्रणाम करके कहा, त्याग भूमि को छोड़कर मैं भोग भूमि की ओर चला।
1: परंतु उस भोग भूमि में भी वे भोग के लिए नहीं बल्कि कठिन कर्मों का पालन करने गए थे। वहां जाते ही वे जीवन युद्ध में जुट गए। विरामहीन प्रचार व्रत, अनिश्चयता और हाड़ तोड़ परिश्रम, विश्राम करने तक का अवसर नहीं, परंतु वैदिक ज्ञान का अनंत भंडार जिनके हृदय में हो, उन्हें भय या उद्वेग कहां। जहाज असीम सागर के जल में तैरने लगा। स्वामी जी देश कालातीत अनंत के ध्यान में डूब गए।
0: धीरे धीरे समुद्र यात्रा के तौर तरीके और रीति नीतियों के वे अभ्यस्त हो गए। शुरू शुरू में वे अपने माल असबाबों और सामानों को लेकर परेशान हो उठते थे। दंड कमंडल धारी सन्यासी के लिए ट्रंक, सूटकेस, बिस्तर आदि संभालना एक कठिन समस्या हो गई थी। क्रमशः सब कुछ ठीक हो गया और दो चार दिनों के भीतर अन्य यात्रियों से परिचय भी हो गया। इनमें कोई कोई जर्मन थे, गैरिक वस्त्र पहने, गौर बदन, दीर्घ लोचन, निर्भीक गति तथा प्रतिभा मंडित व्यक्तित्व संपन्न इस युवक ने सबकी आंखें आकर्षित कर ली। उनकी सरलता, मधुर व्यवहार और व्यक्तित्व ने यात्रियों का हृदय जीत लिया। स्वयं कैप्टन साहब उनसे गपशप करते और आग्रह पूर्वक पूरे जहाज को घूम घूम कर दिखाते। प्रायः सभी यात्री विदेशी थे और स्वामी जी उन लोगों के शिष्टाचार से अनभ्यस्त थे, किंतु ये सारी दूरियां क्रमशः मिट गईं। स्वामी जी की समुद्र यात्रा का विवरण हमें उनके 10 जुलाई को योकोहामा जापान से लिखे पत्र में मिलता है। उस पत्र में कोलंबो तक का विवरण है।
2: अपने कार्यकलाप की सूचना तुम लोगों को बराबर ना देते रहने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यात्रा में जीवन बहुत व्यस्त रहता है और विशेषतः मुझे तो बहुत सा सामान असबाब साथ में लिए घूमने की आदत नहीं थी। इन सब वस्तुओं की देखभाल में ही मेरी शक्ति लग रही है। ये सचमुच एक बड़े झंझट का काम है। बंबई से एक सप्ताह के बीच कोलंबो पहुंचा। हमारा स्टीमर वहां दिन भर ठहरा रहा। इस बीच में मुझे शहर देखने का अवसर मिला। हमने सारा शहर देख डाला। वहां की और सब वस्तुओं में भगवान बुद्धदेव की लेटी हुई मूर्ति की याद मेरे मन में अभी तक ताजी है। मंदिर में पुरोहितों के साथ वार्तालाप करने की चेष्टा की, किंतु वे लोग सिंहली भाषा के अतिरिक्त दूसरी कोई भाषा जानते नहीं हैं। अतः मुझे बातचीत करने की चेष्टा का त्याग करना पड़ा। वहां से प्रायः 80 मील दूर सिंहल के मध्य प्रदेश में अवस्थित कैंडी शहर सिंहली बौद्ध धर्म का केंद्र है, किंतु मुझे वहां जाने का समय नहीं था। यहाँ गृहस्थ बौद्धगण क्या पुरुष क्या स्त्री मत्स्य मांस भोजी हैं, केवल पुरोहित गण निरामिष हैं। सिंहलियों का पहनावा और चेहरा तो मद्रासियों के समान ही है। उनकी भाषा के संबंध में मैं भी कुछ नहीं जानता, तथापि उच्चारण सुनकर प्रतीत होता है कि तुम्हारी भाषा तमिल के अनुरूप ही है।
1: कोलंबो छोड़कर जहाज मलाया की ओर बढ़ चला।
2: कोलंबो छोड़कर जहाज बंगाल की खाड़ी पार कर मलय के अंतर्गत पेनांग में आकर रुका। पेनांग समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू है। शहर छोटा होने पर भी सुनिर्मित एवं सुविन्यस्त आधुनिक अन्य नगरों की भांति ही साफ सुथरा है। मलय निवासी अधिकांश मुसलमान हैं। जगह जगह पर अनेक चीनी लोग भी हैं एवं कालक्रम से अनेक भारतीय उसे स्वदेश मानने लगे हैं। किसी जमाने में मलयवासियों में कोई कोई समुद्र डाकू की वृत्ति अपनाकर व्यापारी जहाजों के सौदागरों में भय उत्पन्न कर देते थे। किंतु आजकल जहाजी बेड़ों के महामय से ये लोग डकैती छोड़कर शांतिपूर्ण धंधों में लग गए हैं।
0: मलाया के बाद जहाज पहुंचा सिंगापुर।
2: मार्ग में सुमात्रा द्वीप की पर्वतमाला दिखाई पड़ती है। इनमें जगह जगह पर समुद्री डाकुओं के अड्डे थे, जिन्हें हमारे जहाज के कप्तान ने अंगुलियों के इशारे से दिखा दिया। एक छोटा द्वीप होने पर भी सिंगापुर जहाजों के आवागमन के मार्ग में महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित होने के कारण एक अति सुंदर और बड़े बंदरगाह में परिणित हो गया है। सिंगापुर उन दिनों स्ट्रेटस सेटलमेंट्स की राजधानी था। वहां एक सुंदर वानस्पतिक उद्यान है, उसमें ताड़ जाति के तरह तरह के पेड़ लगाए गए हैं। यहां पंखे नुमा पत्रों वाले ताड़ के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं और ब्रेड फ्रूट नामक पेड़ तो जहां देखो वहीं मिलता है। यहां मैंगोस्टीन नामक फल भी बहुत होता है। यह स्थान भूमध्य रेखा के बहुत निकट है। सिंगापुर में एक बढ़िया अजायब घर भी है, तथापि बंदरगाह के लोगों के जीवन में जैसा सामान्यता होता है, यहां भी वैसा ही मदिरापान का दोष और चरित्र दोष अत्यधिक है। बंदरगाह में कुछ देर के लिए जहाज के ठहरने का सुयोग पाकर मैंने उतरकर खास खास दर्शनीय स्थानों को देख लिया।
1: सिंगापुर के बाद जहाज चला हांगकांग की ओर।
2: जहाज अंग्रेजों के उपनिवेश हांगकांग द्वीप में रुका। संस्कृति की दृष्टि से हांगकांग बिल्कुल चीन नहीं है। सिंगापुर में ही मैंने चीनी सभ्यता का परिचय पाया था, क्योंकि सिंगापुर में चीनियों की संख्या बहुत अधिक है। हांगकांग में आकर मैंने सब कुछ लक्ष्य किया और हांगकांग तो वास्तव में चीन ही है। जो ही जहाज वहां लंगर डालता है कि सैकड़ों संख्या में चीनी डोंगियां आपको तट पर ले जाने के लिए घेर लेती हैं। दो दो पतवारें होने के कारण ये डोंगियां कुछ विचित्र सी लगती हैं। माझी डोंगी पर ही सब कुटुंब रहता है। पतवारों का संचालन प्रायः स्त्री ही करती है। एक पतवार दोनों हाथों से चलाती रहती है और दूसरी को पैर से, और उनमें से 90% स्त्रियों के पीछे उनके बच्चे इस प्रकार बंधे रहते हैं कि वे आसानी से हाथ पैर डुला सकें। मजे की बात तो ये है कि ये नन्हे चीनी बच्चे अपनी माताओं की पीठ पर आराम से झूलते रहते हैं और उनकी माताएं कभी अपनी सारी शक्ति लगाए पतवार घुमाती हैं, कभी कभी भारी बोझ उठाती हैं, या कभी बड़ी फुर्ती के साथ एक डोंगी से दूसरी डोंगी पर कूद जाती हैं। लगातार इधर से उधर जाने वाली डोंगियों और वाष्प नौकाओं की भीड़ सी लगी रहती है। हर समय इन चीनी बाल गोपालों के शिखायुक्त मस्तकों का चूर चूर हो जाने का डर रहता है, पर उन्हें इसकी क्या परवाह। उन्हें इन बाहर की हलचलों से कोई सरोकार नहीं। वे तो अपना चावल की रोटी कुतर कुतर कर खाने में मस्त रहते हैं, जो काम के झंझटों से बौखलाई हुई मां उन्हें दे देती है। चीनी बच्चों को पूरा दार्शनिक ही समझिए। जिस उम्र में भारतीय बच्चे घुटनों के बल भी नहीं चल पाते, उस उम्र में वो स्थिर भाव से चुपचाप काम पर जाते हैं। अभाव का महत्व ये अच्छी तरह सीख और समझ लेता है। चीनी और भारतीयों की नितांत दरिद्रता ने ही उनकी संस्कृतियों को निर्जीव बना रखा है। साधारण भारतीय या चीनी के लिए उसका दैनिक अभाव इतना भयंकर लगता है कि उसे कुछ और सोचने की फुर्सत नहीं। हांगकांग एक बड़ा ही सुंदर नगर है। वो पहाड़ के शिखरों और ऊंची ढालू जगहों पर बसा हुआ है। वहां शहर की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। पहाड़ के ऊपर एक ट्राम गाड़ी प्रायः एकदम सीधी चढ़ती है। लोहे के तारों की रस्सी से खींचकर और भाप के द्वारा वो ऊपर की ओर परिचालित होती है। हांगकांग में हम लोग 3 दिन रहे। वहां से कैंटन देखने गए। ये शहर एक नदी के चढ़ाव की ओर हांगकांग से प्रायः 80 मील पर मिलता है। वहां की भीड़ भाड़ और वहां के व्यस्त जीवन का क्या कहना। नावें तो इतनी अधिक हैं कि मानो उनसे नदी पट गई हो। ये नावें केवल व्यापार के ही काम नहीं आती, बल्कि सैकड़ों ऐसी भी हैं जिनमें घर की भांति लोग रहते हैं, और इनमें से बहुतेरी बहुत बढ़िया हैं और बड़ी बड़ी हैं। वास्तव में इन्हें पानी पर तैरते हुए घर ही समझिए। सच पूछो तो ये बड़े बड़े दुमंजिले या तिमंजिले मकानों की भांति हैं, जिनके चारों ओर बरामदा है और बीच में रास्ते, पर ये सब कुछ पानी के ऊपर तैरता हुआ है।
1: ये रहा कैंटन नगर का वर्णन, जो एक तैरता नगर प्रतीत होता है।

0: इतनी क्रियाशीलता होते हुए भी मैंने इतना गंदा शहर अब तक नहीं देखा। अर्थात जिसे आप लोग भारतवर्ष में गंदगी समझते हैं उस दृष्टि से नहीं। चीनी लोग कूड़े का एक तिनका भी जाया नहीं होने देते, पर ऐसा जान पड़ता है कि इन लोगों ने कभी ना नहाने की कसम खा ली है। हर एक घर में नीचे दुकान है और छत पर लोग रहते हैं। गलियां इतनी सकरी हैं कि उनमें से गुजरते हुए दोनों ओर की दुकानों को आप हाथ फैलाकर लगभग छू सकते हैं। हर 10 कदम पर मांस की दुकानें मिलती हैं। ऐसी दुकानें भी हैं जिनमें कुत्ते बिल्लियों का मांस बिकता है। हाँ, इस तरह का मांस वही लोग खाते हैं जो बहुत गरीब हैं।
1: चीनी महिलाओं के लिए उन्होंने लिखा था,
0: चीनी महिलाएं बाहर दिखाई नहीं देती, उनमें उत्तर भारत के ही समान पर्दे की प्रथा है। केवल मजदूरों की ही औरतें बाहर दिखाई पड़ती हैं। इनमें भी एक आध स्त्री ऐसी दिखाई पड़ जाएगी जिसके पैर बच्चे के पैर से भी छोटे हैं और वो लड़खड़ाती हुई चलती हैं।
2: स्वामी जी चीनवासियों की दरिद्रता, जीवन यापन प्रणाली, श्रम परायणता, राजनीतिक और सांस्कृतिक विभिन्न पक्षों को लक्ष्य कर ही निवृत्त नहीं हुए। वे उन लोगों के धर्म से भी परिचित होने को उत्सुक थे। उन्होंने लिखा है,
0: मैं बहुत से चीनी मंदिरों में गया। कैंटन में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो प्रथम बौद्ध सम्राट और सबसे पहले बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले 500 पुरुषों का स्मारक स्वरूप है। मंदिर के बीचों बीच बुद्ध देव की मूर्ति स्थापित है, उसके नीचे सम्राट की और दोनों ओर शिष्य मंडली की मूर्तियों की कतारें हैं। ये सभी लकड़ी में खूबसूरती से खोदकर बनाई गई हैं।
2: उन्होंने बौद्ध मूर्तिकला का भलीभांति पर्यवेक्षण किया तथा लक्ष्य किया कि भारतीय मंदिरों के साथ इन मंदिरों की समानता है। निश्चय ही विषमता भी काफी थी एवं इस वैषम्य के बीच ही चीनवासियों की मौलिकता का परिचय पाकर वे आनंदित हुए थे।
1: इसके पश्चात विशुद्ध चीनी मंदिर देखने की उनकी आंतरिक इच्छा हुई, किंतु वे मंदिर ऐसे स्थानों पर स्थित थे जहां विदेशियों का प्रवेश वर्जित था, तो फिर क्या किया जाए? जब उन्होंने दुभाषी से इस संबंध में जिज्ञासा की तो पता चला कि वहां जाना तो असंभव है, किंतु इससे उनकी इच्छा और प्रबल हो गई, चीनी मंदिर देखना ही होगा। उन्होंने दुभाषी से पूछा,
0: मान लो कि कोई विदेशी वहां चला गया तो फिर क्या होगा?
2: दुभाषिया बोला, तो मंदिरवासीगण उस पर अत्याचार करेंगे।
1: स्वामी जी ने मन ही मन सोचा कि यदि मठवासी साधुगण ये जान जाएंगे कि वे हिंदू सन्यासी हैं, तो वे लोग उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। वे दुभाषिये और जर्मन सहयात्रियों से ऐसे किसी एक मठ में चलने का तीव्र अनुरोध करने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा,
0: चलो ना, देखें वे लोग हमें मार डालते हैं या नहीं।
2: वे मंदिर की ओर ज्यादा बढ़ नहीं पाए कि दुभाषिया चीख कर बोला, भागिए सज्जनों, भागिए, वो देखिए वे लोग धमकी देते हुए आ रहे हैं, वे क्रोधित हो गए हैं।
1: 2-3 व्यक्ति हाथों में लाठी लिए दौड़े आ रहे थे। उन लोगों की भयंकर मुद्रा देख स्वामी जी और दुभाषी के अलावा और सब भाग गए। स्वामी जी ने दुभाषी का हाथ पकड़कर रोक लिया।
0: अरे भाई, चीनी लोग अपनी भाषा में भारतीय योगी को क्या कहते हैं, इसे बताए बिना कैसे जा सकते हो?
2: दुभाषी से शब्द सीख कर वे जोरों से चीनियों से कहने लगे कि वे भारतीय योगी हैं, और इस योगी के लिए प्रयुक्त चीनी शब्द ने जादू का कार्य किया। क्रुद्ध लोग श्रद्धापूर्ण भाव से उनके चरणों में झुक गए और फिर उठकर कर जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से अनेक बातें कही, जिसमें एक शब्द को स्वामी जी समझ सके, कवच। उन्होंने अनुमान किया कि यह हिंदू शब्द ही होगा, किंतु निसंदेह होने के लिए दूर खड़े दुभाषिये को चिल्लाकर पूछा कि ये लोग क्या चाहते हैं। दुभाषिया भय के कारण दूर भागकर इन सारे दृश्यों को देख किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसने कहा, महाशय, ये लोग भूत प्रेत एवं अपवित्र प्रभावों से बचने के लिए रक्षा कवच चाहते हैं, वे आपके आश्रय की याचना करते हैं। स्वामी जी क्या करेंगे ये अकस्मात सोच नहीं सके, क्योंकि सिद्धाई में वे विश्वास नहीं करते थे। तब उन्होंने एक युक्ति सोची, अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा लेकर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया और प्रत्येक टुकड़े पर वेद का पवित्रतम शब्द ओम संस्कृत में लिखकर उन लोगों के हाथों में थमा दिया। उन लोगों ने कागज के टुकड़े लेकर कृतज्ञता पूर्वक अपने माथे से लगाया और स्वामी जी को मठ के भीतर ले गए।
1: मठ के अत्यंत एकांत भाग में उन्होंने स्वामी जी को कुछ प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें दिखाई। वे संस्कृत भाषा में रचित एवं प्राचीन बंगला लिपि में लिखित थी। इस प्रकार भारतीय विचारधारा ने चीन पर अपना प्रबल प्रभाव डाला था। इसके बाद का विवरण स्वामी जी के इस पत्र में कुछ इस प्रकार पाया जाता है।
0: कैंटन से मैं फिर हांगकांग लौटा और वहां से जापान पहुंचा। पहला बंदरगाह नागासाकी था। यहां हमारा जहाज कुछ घंटों के लिए ठहरा और हम लोग गाड़ी में बैठकर शहर घूमने गए। चीनियों में और इनमें कितना अंतर है। सफाई में जापानी लोग दुनिया में किसी से कम नहीं है। जापानी लोग ठिगने, गोरे और विचित्र वेशभूषा वाले हैं। उनकी चाल ढाल, हाव भाव, रंग ढंग सभी सुंदर हैं। जापान सौंदर्य भूमि है। प्रायः प्रत्येक घर के पिछवाड़े में बगीचा रहता है। इन बगीचों के छोटे छोटे लता वृक्ष, हरे भरे कुंज, छोटे छोटे जलाशय और नालियों पर बने हुए छोटे छोटे पत्थर के पुल बड़े सुहावने लगते हैं। नागासाकी से चलकर हम कोबे पहुंचे। यहां जहाज से उतरकर हम लोग जापान का मध्य भाग देखने के उद्देश्य से स्थल मार्ग से याकुहामा आए। इस मध्य भाग में हमने तीन शहर देखे। महान औद्योगिक नगर ओसाका, पूर्व राजधानी क्योटो और वर्तमान राजधानी टोकियो, जो कलकत्ते से प्रायः दुगुना बड़ा होगा और आबादी भी लगभग दुगुनी होगी। बिना पासपोर्ट के किसी भी विदेशी को जापान में भ्रमण करने नहीं दिया जाता। जान पड़ता है जापानी लोग वर्तमान आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण सचेत हो गए हैं। उनकी एक अच्छी सुव्यवस्थित सेना है, जिसमें यहीं के अफसर द्वारा विष्कृत तोपें काम में लाई जाती हैं और जो संसार में अद्वितीय कही जाती हैं। ये लोग अपनी नौशक्ति बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने एक जापानी इंजीनियर की बनाई करीब 1 मील लंबी सुरंग देखी है।
2: स्वामी जी ने जापान के मंदिरों को ही नहीं देखा, वहां के कारखानों में भी गए।
0: दिया सलाई के कारखाने तो देखते ही बनते हैं। जो आवश्यक चीजें इनको लगती हैं, उन सबको अपने देश में ही बनाने की चेष्टा में लोग तुले हुए हैं। चीन और जापान के बीच में चलने वाली एक जापानी स्टीमर लाइन है, जिसे ये लोग कुछ ही दिनों में बंबई और याकुहामा के बीच चलाना चाहते हैं।
1: जापान के मंदिरों को भी उन्होंने देखा था। पुरोहित वर्ग सामान्यतया रूढ़िवादी और परिवर्तन विरोधी होता है, किंतु स्वामी जी ने जापान के मंदिरों को देखकर और पुरोहितों से वार्तालाप कर जान लिया कि वे सब के सब बड़े बुद्धिमान हैं। आसानी से उन्नति करने का आधुनिक जोश पुरोहितों तक में प्रवेश कर गया है।
0: एशिया के ही एक देश नए जापान के शिल्पोद्योग ने मुझको मुग्ध कर दिया था। ऐसा सुंदर देश, ऐसे सुरुचि संपन्न नर नारी, उन लोगों के सब कुछ, घर द्वार, रास्ते, उद्यान, चाल चलन, भाव भंगिमा सुंदर है। और इन्हीं सब में ये विशाल कर्मोद्योग, नए विश्व की रीति नीतियों के प्रति वे अत्यंत जागरूक हैं और उन्हीं रीति नीतियों के अनुसार चलकर अपने देश की उन्नति के लिए वे कटिबद्ध हैं। मैं अपने देश की आर्थिक उन्नति के विचार में डूबा था।
2: मन ही मन जापान और चीन से भारत की तुलना कर स्वामी जी ने लिखा था।
0: जापानियों के विषय में जो कुछ मेरे मन में है, वो सब मैं इस छोटे से पत्र में लिखने में असमर्थ हूँ। मेरी केवल ये इच्छा है कि प्रतिवर्ष यथेष्ट संख्या में हमारे नवयुवकों को यहाँ आना चाहिए। जापानी लोगों के लिए आज भारतवर्ष सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का स्वप्न राज्य है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? जीवन भर केवल बेकार बातें किया करते हो। आओ इन लोगों को देखो और इसके बाद जाकर लज्जा से मुंह छिपा लो। सठियाई बुद्धि वालों, तुम्हारी तो देश से बाहर निकलते ही जाति चली जाएगी। अपनी खोपड़ी में वर्षों के अंधविश्वास का कूड़ा करकट भरे बैठे सैकड़ों युगों के सामाजिक अत्याचार से जिनकी सारी मानवता कास्त हो चुका है, भला बताओ तो सही तुम कौन हो और तुम इस समय कर ही क्या रहे हो? मूर्खों, किताब हाथ में लिए तुम केवल समुद्र किनारे फिर रहे हो। यूरोपियनों के मस्तिष्क में निकली हुई बातों को लेकर बिना समझे दोहरा रहे हो। 30 रुपए की मुंशीगिरी के लिए अथवा बहुत हुआ तो एक वकील बनने के लिए जी जान से तड़प रहे हो। यही तो भारतवर्ष के नवयुवकों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। तिस पर इन विद्यार्थियों के भी झुंड के झुंड बच्चे पैदा हो जाते हैं जो भूख से तड़पते हुए उन्हें घेर कर बाबूजी खाने को दो कहकर चिल्लाते रहते हैं। क्या समुद्र में इतना पानी भी ना रहा कि तुम उसमें विश्वविद्यालय के डिप्लोमा, गाउन और पुस्तकों के समेत डूब मरो।
1: अनेक संक्षिप्त किंतु अग्निवर्षी वाक्यों में स्वामी जी ने अपने देश की आशा और विश्वास के केंद्र स्थल शिक्षित युवकों का एक स्पष्ट चित्र खींचा, किंतु मात्र अभावात्मक या नकारात्मक पक्ष दिखाकर सबको निराशा के सागर में डुबाने के लिए तो स्वामी जी अवतरित नहीं हुए थे। इसी से उन्होंने उदात्त स्वरों से आह्वान किया,
0: आओ मनुष्य बनो। उन पाखंडी पुरोहितों को जो सदैव उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं बाहर निकाल दो, क्योंकि उनका सुधार कभी न होगा, उनके हृदय कभी विशाल न होंगे। उनकी उत्पत्ति तो सैकड़ों वर्षों के अंधविश्वासों और अत्याचारों के फल स्वरूप हुई है। पहले इनको जड़मूल से निकाल फेंको। आओ मनुष्य बनो, अपने अंधकूप से बाहर निकलो और बाहर दृष्टि डालो। देखो अन्य सब देश किस तरह आगे बढ़ रही हैं। क्या तुम्हें मनुष्य से प्रेम है? क्या तुम्हें अपने देश से प्रेम है? यदि हाँ तो आओ हम लोग उच्चता और उन्नति के मार्ग में प्रयत्नशील हों। पीछे मुड़कर मत देखो। अत्यंत निकट और प्रिय संबंधी रोते हों तो रोने दो, पीछे देखो ही मत, केवल आगे बढ़ते जाओ।
1: योकोहामा से स्वामी जी कैनेडियन पैसिफिक मार्ग के एम्प्रेस ऑफ इंडिया नामक जहाज से अमेरिका की ओर चले। इस जहाज पर 2 भारतीय सहयात्री थे, एक जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा और दूसरे लालू भाई। जमशेद जी से स्वामी जी का परिचय जापान में ही हुआ था। जहाज ने 14 जुलाई को योकोहामा छोड़ा। स्वामी जी के 20 अगस्त के पत्र से रास्ते का थोड़ा सा समाचार हमें मिलता है।
0: जापान से मैं वैंकूवर पहुंचा। मुझे प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से से होकर जाना पड़ा। ठंड बहुत थी, गर्म कपड़ों के अभाव से बड़ी तकलीफ हुई। अस्तु किसी तरह वैंकूवर पहुंचकर वहां से कनाडा होकर शिकागो पहुंचा और वहां लगभग 12 दिन रहा।
2: स्वामी जी को लोगों ने रेशमी वस्त्रों से सजाकर भेजा था, परंतु गर्मी के दिनों में भी प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी इतना ठंडा रहता है कि गर्म कपड़ों की जरूरत होती है। इसका अंदाजा भारतीयों को नहीं था, अतः केवल जहाज में ही नहीं जहाज से उतरकर भी स्वामी जी को ठंड में बहुत कष्ट झेलने पड़े।
1: प्राचीन भूभाग को छोड़कर 25 जुलाई मंगलवार संध्या 6 बजे स्वामी जी नवीन भूभाग के पश्चिमी तट पर एक छोटे द्वीप में स्थित वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे। वैंकूवर उत्तरी अमेरिका के कनाडा राज्य में स्थित है। वैंकूवर से दूसरे दिन सुबह 10:45 पर वे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग से प्रसिद्ध रॉकी पर्वतमाला को भेदकर पूर्व की ओर चल पड़े। मार्ग अत्यंत मनोरम था। अनेक नद नदियां, वन नगरों, महानगरों को पार कर ट्रेन चल रही थी और विनिपेग होकर स्वामी जी 30 जुलाई सन 1893 ईस्वी की रात के लगभग 10:30 बजे शिकागो नगर में उपस्थित हुए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलोट के घर ना आए
2: ये दुनिया। 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रमा मजूमदार का सरोदवादन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की। तो आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रमा मजूमदार का सरोदवादन।

मेरी तालीम शाहजहाँपुर घराने से प्रमुखता हुई है और कुछ चीज़ें हर तंत्रकार को बीनकार घराने से जब तक कुछ ना मिले तब तक उसकी तालीम पूरी नहीं समझी जाती है। तो मेरे गुरु एवं दादा गुरु दोनों ने शाहजहाँपुर परंपरा से सीखने के बाद सेनिया ग्वालियर सेनिया परंपरा से भी तालीम ली है। तो कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत ही संक्षेप में।

0: और श्रोताओं, डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार के सरोद वादन को सुनने के बाद अब बारी है पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की।
1: विलंबित एकताल राग बिहाग आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित श्रीनिवास जोशी का गायन। आज का कार्यक्रम भारत भारती यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो शहीद

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती, और आज हमने चुनी है कहानी मुक्तिधन। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मुक्तिधन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं, उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे ज्यादा लाभदायक है। आमतौर पर सूत की दर 25 रुपए सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपए सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें 15 रुपए सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वो भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग, ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की ही जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी हो, जिसके पास कुछ फालतू धन हो, वो ये व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का ये सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊदयाल इसी श्रेणी के महाजन थे। वो कचहरी में मुक्तारगिरी करते थे, और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपए सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से होता था। उच्च वर्ण वालों से वो चौकन्ने रहते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ को रुपए देने से कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। लेते समय तो उनके पास बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वो सारी संपत्ति गायब हो जाती है। पत्नी, पुत्र या भाई का उसमें अधिकार हो जाता है, और उस संपत्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीतिशास्त्र विद्वान भी मुगी खाते थे। लाला दाऊदयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुस्लिम अपनी गाय बेच रहा था, और कई आदमी उसे घेर के खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता, कोई उसके हाथ से गाय की पघैया छीन लेता था। किंतु वो गरीब एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था, कुछ सोचकर पघैया को और भी मजबूती से पकड़ लेता। गौ मोहनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे थन। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गौ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। वो व्यक्ति शुभ्ध और दुखी दिख रहा था। करुण नेत्रों से गौ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता। दाऊदयाल गौ को देखकर रीझ गए और पूछ बैठे, क्यों जी, ये गौ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? उस मुस्लिम युवक ने दाऊदयाल को देखा तो खुश होकर उनके समीप चला गया। हाँ हुजूर, बेचता हूँ। कहाँ से लाए हो और तुम्हारा नाम क्या है? दाऊदयाल ने पूछा। तब उस मुस्लिम युवक ने अपना नाम बताया। नाम तो रहमान है, और मैं पचोली में रहता हूँ। दूध देती है तुम्हारी गाय? दाऊदयाल ने पूछा। हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दोह लीजिए। अभी दूसरी ही तो बेत है, इतनी सीधी है कि बच्चा भी दोहले। बच्चे पैर के पास खेलते हैं, क्या मजाल कि सिर भी हिला दे। दाऊदयाल ने पूछा, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को शुबा हुआ कि कहीं चोरी का माल तो ना हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं। क्या दाम मांगते हो? दाऊदयाल ने पूछ लिया। रहमान ने 50 रुपए बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपए का माल जच गया। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और 35 रुपए पर सौदा आखिरकार तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वो मोह के बंधन में पड़ा था। कुछ देर तक सोच में डूबा रहा, फिर गऊ को मंद गति से दाऊदयाल के पीछे पीछे ले चला। तब एक आदमी ने कहा, अरे हम 36 रुपए दे रहे थे, हमारे साथ चलो। तब रहमान ने कहा, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? तब दूसरे ने कहा, हमसे 40 रुपए ले लो,
अब तो खुश हो? ये कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी नहीं भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी अपनी राह ले ली। रहमान जब जरा दूर निकल गया तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे, और ये बाकी सब कसाई हैं। इनके हाथ में 50 रुपए में भी नहीं बेचता मैं इसे। आप बड़े मौके में आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, तब ये गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को मैं कभी नहीं बेचता। इसे अपने हाथों से पाला है मैंने, कैसे बेच दूं कसाईयों के हाथ? सरकार इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही ये दूध देगी, और भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होगा हुजूर। एक अरज और है, अपने चरवाहे को डांट देना, इसे मारे ना। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य? यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गऊएं बेचते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते वो तो, और ये गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि किसी कसाई के हाथ में न पड़े। वाह, गरीबों में भी इतनी समझ है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दे दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था, और गरीब के तो सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया, उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। वो इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, और उपाय नहीं था इसलिए विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौरी में मुस्लिम कई परिवार थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले थे। रहमान की बूढ़ी माँ भी हज के लिए तैयार हो गई, और उसने रहमान से कहा, बेटा इतना सबाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान के लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको फल देगा। मातृभक्ति तो वैसे भी ग्रामीणों का विशिष्ट गुण होता है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे, और माता की आज्ञा भी नहीं टाल सकता था। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ईख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ईख ऐसी हुई कि कभी ना हुई थी। ये माँ की दुआ का फल था, मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपए तो हो, तब काम बनेगा। उसने सारे उपाय सोच लिए। जब उसका बस नहीं चला तो वो दाऊ दयाल के पास चला गया कर्ज लेने। दाऊ दयाल ने देखते ही बोला, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? हाँ हुजूर, बेची थी, रहमान ने जवाब दिया। रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाया और बोला, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। दाऊ दयाल ने कहा, अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 35 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा, बस। रहमान ने कहा, जो चाहे कीजिए हुजूर, आपके ही हाथ में हूँ। रहमान को 200 रुपए के 180 रुपए मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया तो थोड़ा सा गुड़ रखा था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझा कर माँ के साथ हज को चला गया। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ मेरे रुपए, कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ, अम्मा जब से हज करके आई हैं तब से बीमार हैं, रात दिन बस उन्हीं की दवा दारू में हूँ। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा, साल भर की मोहलत और दे दीजिए। तब दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपए सैकड़े ब्याज हो जाएगा।
रहमान के पास एक ही जवाब था, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान ये वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ गया है, प्राण पीड़ा हो रही है, दर्शन बदे थे सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक से धार गई। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था और अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए जकात और फातिहे की जरूरत थी, कब्र बनवानी जरूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत, ऐसे कितने ही संस्कार थे जो जरूरी थे। पैसों की परेशानी थी, उसको मालूम था कि लाला दाऊ दयाल पैसे नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो दाऊ दयाल के पास चला गया। रास्ते में एक एक कदम उसके लिए मुश्किल था। लाला दाऊ दयाल कचहरी से आकर बैठे ही थे और वो नौकरों पर बिगड़ रहे थे। लाला दाऊ दयाल ने रहमान को देखा तो रुष्ट होकर बोले, क्यों आए हो तुम यहाँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, इस वक्त मुझे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ नहीं बोला, वो डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। लेकिन दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो उसे दोबारा बुला लिया और नम्र होकर बोले, कैसे आए थे, क्या काम था। तब रहमान ने कहा, नहीं सरकार, बस सलाम करने आया था। दाऊ दयाल ने कहा, एक कहावत है, सलामे रोजताई बेगरज नेस्त, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता, क्या मतलब है कहो। अब तो रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने अटकल से समझ लिया कि इसकी माँ अब नहीं रही। क्यों रहमान, तुम्हारी माँ से धार गई। रहमान ने हाँ कहा, हुजूर आज तीसरा दिन है। अरे रे रे रे, ना रो भैया, सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वो हो गया, ऐसी मौत पर गम नहीं करना चाहिए, तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, और अब क्या चाहिए। रहमान ने भी धीरे से कहा, हुजूर कुछ अरज करने आया हूँ, हिम्मत नहीं है, पिछला भी पड़ा है, अब किस मुंह से मांगू, लेकिन अल्लाह जानता है कि कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, और काम ऐसा है कि ना करूँगा तो जिंदगी भर पछताऊँगा। आगे आप मालिक हैं, कुछ समझकर दे दीजिए, कुएं में डाल रहा हूँ, जिंदा रहूँगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूँगा, मगर हुजूर इस घड़ी मना ना कीजिए। रहमान लगातार रो रहा था, दाऊ दयाल को दया आ गई। ओ भाई, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो, 2 साल में कोई 700 रुपए हो जाएंगे, खबर है इसकी। रहमान ने कहा, गरीब परवर, अल्लाह दे तो बीघे ईग में 500 आ सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपए फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य था। खेती की हालत अनाथ बालक की तरह होती है, जल और वायु अनुकूल हुई तो अनाज के ढेर लग जाते हैं, लेकिन अगर जरा भी नुकसान हुआ तो सब बिगड़ जाता है। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन रात को रात नहीं समझा, बीवी बच्चे दिलो जान से निपट गए, ऐसी ईख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए, सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था, सब उसकी ईख देखकर बहुत खुश होते थे। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अघन का महीना था, रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था, ओढ़ने के लिए केवल एक पुरानी चादर थी, इसलिए ईख के पत्ते जला लिए थे। तभी हवा का झोंका आया, जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंच गए और देखते ही देखते आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की तरह एक के ऊपर एक गिर रही थी, सारे उपाय व्यर्थ हो गए, सारा खेत जलकर राख हो गया। अब तो रहमान का दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए, परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। उसे तो चिंता सिर्फ दाऊ दयाल की थी कि दाऊ दयाल का आदमी आएगा तो वो क्या बोलेगा, अब तो इज्जत खुदा के हाथ में है। सुबह का वक्त था, वो अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही देख रहा था और देखा कि दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे आ रहा है।
प्राण सूख गए। बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसने बचा पाया, लेकिन छिपता तो कहाँ छिपता। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते, मियाद कल गुजर गई, जानते हो ना सरकार की बात, एक दिन की भी देरी हुई तो नालिश ठोक देंगे, बेभाव की पड़ेगी तुम्हें। तब रहमान ने कांपते हुए कहा, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया। तब चपरासी ने कहा, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना, 700 रुपए देना है तुम्हें। भैया सारी ईख जल गई, अल्लाह जानता है कि अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। तब चपरासी ने कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ईख का किसी ने ठेका नहीं लिया, अभी चलो सरकार बुला रहे हैं। और चपरासी ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए दाऊ दयाल के घर ले गया। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने तक का मौका नहीं दिया गया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर नहीं उठाया। बस वह अपने मुंह से कह रहा था, या अली मुश्किल कुशा, उसके मुंह से ही निकल रहा था। उसे अब इस नाम का भरोसा था, यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वो गिर जाता या बेहोश हो जाता। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे, रहमान जाकर उनके कदमों पे गिर गया। खुदाबंद बड़ी विपत्ति है, अल्लाह जानता है मैं कहीं का नहीं हूँ। दाऊ दयाल ने कहा, क्या सब ईख जल गई? हुजूर सुन तो चुके हैं आप, तो अब मैं क्या करूं, नालिश कर दूं? दाऊ दयाल ने कठोर स्वर में कहा। तब रहमान ने कहा, हुजूर मालिक है, जो चाहे करे, मैं तो इतना जानता हूं हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है, अपनी सोची नहीं होती, 2 बार वादे किए थे, दोनों बार झूठा हो गया, अब जो कुछ भी मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा, मेहनत मजूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा हुजूर आपके पैसे दूंगा। दाऊ दयाल मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है बताओ। हुजूर बस यही आरजू है कि आपके रुपए अदा हो जाएं। अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए, दाऊ दयाल ने कहा। अरे हुजूर ये कैसे समझ लूं, यहाँ ना दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे, रहमान ने आश्चर्य से कहा। नहीं रहमान अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था, दाऊ दयाल ने कहा। सरकार ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मर सकता मैं, रहमान ने हाथ जोड़ लिए। तब दाऊ दयाल ने कहा, कैसा जी, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं, अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहाँ भी और वहाँ भी, अब तुम मेरे एक भी पैसे के देनदार नहीं हो, असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, 2 बछड़े नफे में अलग मिले, अगर तुमने ये गऊ कसाई को दे दी होती तो मुझे इतना बड़ा फायदा कैसे होता बताओ भला, तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी, वो शराफत मुझे याद है, उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो रहमान, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं भैया। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान ना किया हो, पर असल में किया है, हम तुम दोनों अब बराबर हैं, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे, तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा, इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहे उतने ले लो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है, मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और निम्न हो जाए तो शैतान, ये दोनों मानवीय वृत्तियों के ही नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल पड़े, बहुत मुश्किल से उसने आंसुओं को रोका, रुंधे हुए स्वर में कहा,
हुजूर, इस नेकी का बदला खुदा आपको देगा, मैं तो आज से आपका गुलाम समझूंगा। दाऊदयाल ने रहमान को उठा लिया और कहा, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान रुंधे स्वर में बोले जा रहा था, नहीं हुजूर, मैं आपका गुलाम। और दाऊदयाल ने रहमान को गले लगा लिया। गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले ही मुझे मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूलकर भी ये शब्द नहीं निकालना दोस्त।

0: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आज़ाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया,
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: प्रेम पत्र एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहू भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े हों। होता तो यह एक कागज का टुकड़ा ही है, पर इसे खोलते हुए हाथ कांपने लगते हैं। हर एक अक्षर आवाहन सा करता हुआ लगता है, न जाने किस लोक की महक समेटे रहता है यह कागज का टुकड़ा। इस दुनिया के किसी भी सुगंध में वो पागलपन कहां, वो मादकता कहां। हम में से बहुतेरे लोगों ने अपनी किशोर अवस्था में यह पागलपन अवश्य किया होगा, और क्यों ना करें। अजी कच्ची उम्र का यह विहल आनंद जीवन में दोबारा भला कहां मिलने वाला है। पर कुछ ऐसे भोले सनम भी होते हैं जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तां, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।
1: बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार है।
2: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
3: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
2: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बंद समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मनचलों के सीने पे सांप लौट जाए। और क्या?
3: नहीं नहीं, कुछ और का हो ना मेरी तारीफ में।
2: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
3: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
2: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग पे सिंदूर न भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपना लहू डाल दे।
3: सच? मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
2: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
3: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
2: हाँ?
3: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा। और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
2: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए, पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं। ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
3: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
2: क्या?
3: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह प्यू प्यू करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
2: अरे अरे, ऐसा जुल्म न करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
3: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
2: हे भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रियाहट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
0: तो श्रोताओं, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रितु त्रिया हट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रितु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है। रितु उलाहने देती है। नीरज धीरज का परिचय देता है। एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
3: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
2: क्या?
3: उनका बीपी है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
2: अरे,
3: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
2: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था और अब यकायक ये।
3: अरे, यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायके भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पति देव। नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना। फिर ना कहना कि
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मेरी जान मुझ पर। आपके बिना तो मुझे एक पल भी पहाड़ लगता है यार। आप कहती हैं कि
3: डिसीजन फाइनल है, जाना तो होगा ही, पर वापसी आप पर डिपेंड करती है।
2: कैसे?
3: जितनी जल्दी आपका प्रेम पत्र मुझे मिलेगा, उतनी ही जल्दी मेरी रवानगी डलेगी वहाँ से।
2: क्या टेलीफोन से काम नहीं चलेगा?
3: हरगिज नहीं। रिटर्न एविडेंस बर्बल से ज्यादा पावरफुल होता है।
2: एसएमएस?
3: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें? कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई, और कितना याद किया तुमने मुझे। तुम्हारे पूरे एहसास चाहिए मुझे। मेरी यही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
2: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान, वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
3: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है।
2: अरे, ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़ी ही बनाया था यार। बादशाह सलामत थे, वो हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
3: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब। प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुकाकर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा। काम पूरा करने की बात ही छोड़िए। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। हाँ, और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है। जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
2: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूंगा क्या, क्या, क्या, क्या?
3: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
2: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है। एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।
3: जा तो मैं रही हूँ जी। हाँ। पर मुझे ना बड़ी रुलाई छूट रही है। मन कर रहा है कि उतर पड़ूं गाड़ी से। सच, तुम्हारे बिना रहने का सोचकर ही जी घबराने लगता है।
2: अरे तो उतर पड़ो, इतना प्यार हमारी आंखों में उमड़ रहा है, इसके आगे भी प्रेम पत्र की जरूरत लगती है क्या तुम्हें?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन, रिंकू को भी मैं इसलिए साथ लेके जा रही हूँ जिससे तुम्हें तन्हाई शिद्दत से महसूस हो।
2: तुम औरतें तो यार इतनी दूर तक कैसे सोच लेती हो। बापरे, मैं तो सोच रहा था कि मेरा भार हल्का करने के लिए तुम रिंकू।
3: हाँ, और क्या। अरे भार हल्का ही तो हो रहा है तुम्हारा भाई, अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम। और फिर तन्हा बैठकर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
2: सफर में अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन करना।
4: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
3: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
2: अरे बेटा रिंकू, मम्मी को तंग ना करना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना।
0: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती, यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कच्ची नींद में उठा देती और कहती, फ्रेश होकर टहलने निकलो। जिंदगी जैसे जेल मैनुअल पर चल रही थी, पर अब आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन नहीं, अजी अकेलेपन की आजादी डराने वाली थी। भला शमशान की शांति भी किसी को अच्छी लगती है? नीरज को आटे दाल का भाव याद आ रहा था। अब सुनिए आगे की दास्तान।
2: चाय की पत्ती कहाँ रखी है? पानी उबला जा रहा है। ये औरतें भी ना जाने चीजें ना जाने कहाँ कहाँ रखती है। आया आया भाई आया, तुम्हें भी यार अभी बजना था। हेलो, अच्छा अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। धन्यवाद मेरे जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं नहीं, सवा शेर कहिए जनाब। क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही है पत्नी जी? हैं? नहीं, मैं पार ना कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके, ठीक है ठीक है, करता हूँ यार, करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, बाय बाय बाय बाय।
0: रितु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोहम सी रितु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
2: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है, दाल फ्राई करते हुए मेरे चेहरे पर घी का छींटा पड़ गया। रोटियां नक्शों की तरह बनती हैं, फूलती भी नहीं, कच्ची रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से पचती भी नहीं, खट्टी डकारें आती रहती हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे एक बड़ा नुकसान हो गया। कल नमक ढूंढ रहा था तो अचार की भरनी गिरकर टूट गई। कितनी मेहनत से डाला था तुमने। अदरक तुमने फ्रिज में ऐसे रखे थे जैसे कोई लॉकर में ब्लैक मनी रखता है, और अंत में इनकम टैक्स वालों की तरह रेड करके निकालना पड़ा मुझे। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए कोने वाली होटल से एक खाना मुकर्रर कर दिया है। दुआ करना सेहत सलामत रहे। सब्जी वालों को पता नहीं कैसे टैकल करती थी तुम, मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं। तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
0: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। इकलौती पत्नी का पहला पहला पत्र था। खोलकर पढ़ा उसने।
3: वाह रे मेरे भोले सनम, आपके लव लेटर ने तो बड़ा ही मायूस किया। वादा वफा न रहा। यह आपने लव लेटर लिखा है कि डायरी? मैंने तो दिल का हाल बयान करने के लिए लिखा था और आपने गृहस्थी का हाल बयान कर दिया। ये लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है। इसके सहारे सफर करना बेटिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए। मम्मी का बीपी

0: था वो तो लकड़ी का तीर निकला, अब क्या करे वह, इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए, आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
1: कौन?
2: अरे नीरज तू भाई, सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
3: अरे यार भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
2: आना आना बैठ, क्या लेगा तू? अरे श्यामा जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
3: यार चाय वाय तो बनती रहेगी पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
2: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
3: अरे यार सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है, पर ये प्रेम पत्र।
2: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार, किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
3: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो आखिर यार मैं।
2: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
3: यार वो मायके गई हुई है बाल गोपाल को लेकर,
2: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है।
3: नहीं नहीं,
2: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
4: लीजिए भाई साहब चाय लीजिए।
2: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
3: अरे कोई प्रेमिका प्रेमिका नहीं है यार, तो? तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है।
2: अच्छा?
3: वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार मैं क्या करूं?
2: ओ, तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
3: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
2: खैर खैर बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
3: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के।
2: ठीक है एक काम कर।
3: हाँ
2: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
3: बता यार।
2: कुछ फिल्में देख डाल,
3: हा?
2: कुछ शेर और शायरी की किताबें पढ़ डाल।
3: हाँ
2: किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा रख आंखों के सामने, क्योंकि जब खूबसूरती सामने होगी तो अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगेंगे। बस तैयार हो जाएगा तेरा प्रेम पत्र।
3: थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स। अब बाद में मिलता हूं तुझसे।
2: पहले चाय तो खत्म कर ले भाई।
3: तो वो तू पी लेना। बाय एंड अगेन थैंक यू यार।
2: बाय बाय।
0: नीरज के हाथ फार्मूला लग चुका था, बस उसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए थी। अशोक का एक एक शब्द उसने पकड़ा। अशोक ने कहा था कि फिल्में देखो, शेर व शायरी की किताबें पढ़ो, खूबसूरत लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने रखो। अब उसने कई फिल्में देख डाली, नई फिल्में उसको जमी नहीं तो उसने पुरानी फिल्मों का सहारा लिया, शेर व शायरी की किताबें भी कई पढ़ी, पर बेचारा खूबसूरत लड़की कहां से लाता? अकल काम नहीं कर रही थी। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मार्केट जाकर के एक खूबसूरत सा पोस्टर उठा लाया और दीवार पर चस्पा कर दिया, साथ ही एक सुगंधित लेटर हेड भी ले आया जिसके एक कोने पर दो दिल बने हुए थे और दिल में एक तीर चुभा हुआ था। सारी सामग्री इकट्ठी करके अब वो लव लेटर लिखता है। आइए आप भी सुने उसका लव लेटर।
3: ये पोस्टर भी लग गया। आप ठीक है, इसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर, गुलाब की कली जैसे इसके होठों को देखकर, खिलती धूप से इसकी मुस्कुराहट में नहाकर, अब लव लेटर लिखने की फीलिंग पैदा की जा सकती है भीतर से। एक काम और करता हूँ, बाजार से रंगीन लेटर पैड और खरीद कर लाता हूँ, वही जिस पर तीर से बिंधे हुए दिल बने रहते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तब प्यार का एहसास और भी घना हो सकेगा। बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट बनेगा तब, कोई वेटिंग शेटिंग नहीं। अब हो गया प्रणेश्वरी तुम्हारा लव लेटर तैयार। एक बार पढ़ तो लूं कैसी फीलिंग आती है। प्रिय प्राणेश्वरी, तुम्हें जाने आरजू कहूं या आरजू ए जहां कहूं, तुम ही बता दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को मन करता है। जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो कोई कानों में मीठी मीठी मिश्री खोल रहा हो। जब तुम कुछ बोलती हो तो दिल में सितार बजता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गाल में जो डिंपल पड़ता है वो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तुम्हारे बिना न नींद आती है न चैन आता है, दिल तुमसे मिलने को बेचैन होता है। चांद में तुम नजर आती हो, सितारों में तुम नजर आती हो, रोटी में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। जिस शक्ल को भी देखता हूं बस तुम्हारी ही शक्ल दिखती है। जुदाई के पल अब बर्दाश्त नहीं होते। अब तुम ही बताओ कब मिलेंगे हम। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा। आ रही है फीलिंग आ रही है। अब एक बार अशोक को और दिखला देता हूं। चलो
2: ये क्या लिखा है रे बुद्धू तूने? ऐसे भी कहीं प्रेम पत्र लिखते हैं? अरे मैंने तुझे फिल्में देखने के लिए कहा था, फिल्मों के गाने और डायलॉग चुराने के लिए नहीं। औरतें फौरन ताड़ लेती हैं कि बनाया जा रहा है उन्हें। अरे नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए इसमें।
3: यार नेचुरल एक्सप्रेशन ही बनता मुझसे तो तेरी मदद क्यों लेता? मानता हूं कि सब कुछ अननेचुरल है, पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी भाभी का कोप भवन टूटने वाला नहीं है।
2: अच्छा यार एक काम कर तू।
3: बोल।
2: अभी तो रहने ही दे तू उसे, मैं जरा फुर्सत निकाल कर आता हूं तेरे पास, फिर मैं खुद बैठ कर लिखवा दूंगा तुझे। उसे भाभी को भेजना तू, पर ये जो एंटीसेंट लिखा है ना तूने,
3: हाँ।
2: इसे तो रहने ही दे भगवान के लिए। लव लेटर लिखे, अरे भाभी वापस तो नहीं आएगी, उल्टे तुझे नौटंकी की बात समझेगी।
3: आता हूं भाई आता हूं। कौन टपक पड़ा यार?
1: अरे तुम, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे तुमने तो ठानी थी
5: क्या? ठानी तो बहुत जमकर थी, पर क्या करूं पतिदेव, आप पर तरस आ गया। और सच कहूं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती हूं मैं। सोचना चाहिए था मुझे। आप जैसे भोले भाले आदमी भला क्या जाने प्रेम पत्र लिखना। सतयुग के पुरुष ठहरे आप।
3: ओहो।
5: आज के छोरों जैसी लंपटता आप में कहाँ है भला।
3: क्या बात है। आपने अपना प्रण तोड़ दिया इस नाचीज के लिए।
5: मैं तो प्राण दे दूं पति देव, प्रण तो कुछ भी नहीं आपके लिए।
3: थैंक गॉड।
0: नीरज मन ही मन खुश था। नीरज की मुसीबत टल चुकी थी। पत्नी बिना प्रेम पत्र के ही मान गई थी। खुशी खुशी दफ्तर गया, पर जब वापस लौटा तो घर में मातम फैला हुआ था। प्राण देने का वादा करने वाली पत्नी प्राण लेने पर उतारू थी। आंखों से प्रेम की धारा नहीं, आंसुओं का सैलाब बह रहा था। मुख से शहद के भीगे शब्द नहीं बल्कि तोप के गोले चल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था दिन भर में, आप भी सुनिए।
5: वाह रे मेरे भोले सनम, अच्छी वफा निभाई तुमने। तुम भी आखिर बाकियों की तरह ही निकले ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, रंगोसी और।
3: अरे काहे मुहावरेदार गालियां दे रही हो भाई, साफ साफ बताओ कि क्या हो गया। सुबह सुबह की स्वच्छ ऋतु अचानक इतनी गर्जन तर्जन क्यों कर रही है?
5: अरे अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या
3: क्या।
5: अरे क्या समझा था तुम्हें और तुम क्या निकले? कहते थे प्रेम पत्र लिखना ही नहीं आता और यहाँ तो पूरा प्रेम सागर ही उमड़ा जा रहा है।
6: क्या कह रही हो?
5: ये देखो अपना कच्चा चिट्ठा, हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे मेरे पीछे इश्क फरमा रहे थे तुम।
6: क्या कह रही हो?
5: सींग कटाकर बछड़े बन रहे थे तुम। तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है।
6: पाप? ओ हो, तो ये बात है। अरे यार ये पाप नहीं, मेरा बेवकूफी नामा है बेगम। ये आपके लिए ही लिखा था मैंने, किसी और के लिए नहीं। आपके सर की कसम।
5: मेरे सर की कसम ना खाओ जी, खाना है तो उसी की कसम खाओ जो तुम्हारे सपनों की रानी है।
6: अरे तुम
5: उसकी इबारत पढ़ो ना तुम, खाने में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। मुझे पागल समझा है क्या? 15 दिन बाद लौट कर आ रही हूँ मैं और मैं मान लूं कि ये लाइन तुमने मेरे लिए लिखी है?
6: अरे हाँ जी, 100% ही तुम्हारे लिए लिखी थी यार। इमोशन पैदा करने के चक्कर में ये बेवकूफी हुई थी मेरे से। हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही सपने में आई थी। तो
7: बहुत अच्छे। हाँ, और ये तुम्हारी, ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को मन करता है, और थोड़ी सी भी गलत बची हो ना तुम्हें तो तुम तालाब में जाकर डूब मरो या मुझे डुबो दो और फिर मजे से रहना उसके साथ में।
6: अरे यार धर्म पत्नी जी, ये लाइन तो फिल्मों के चक्कर में आ गई यार। सच, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई है इसे।
5: और ये आगे भी तो देखो।
6: अरे
5: रहन दो, बस बस। अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में 1000 झूठ मत बोलो जी, फंसते ही चले जाओगे तुम।
6: अरे यार कैसे तुम्हें समझाऊं प्राणेश्वरी, प्रेम पत्र लिखते समय ये सब झूठ सच लिखना पड़ता है यार, नहीं तो प्रेम पत्र का वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। सब सच लिख दिया तो प्रेमिका पत्थर फेंक कर मारेगी अपने प्रेमी को।
5: अच्छा तुमने कहा और मैंने मान लिया है।
6: हाँ हाँ, मान भी जाओ मेरी बात यार, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, तुम्हारे लिए ही लिखा था।
5: तुम मुझे बरगलाओ नहीं। और ये देखो, ये तुम्हारा, ये क्या लिखा तुमने? जब तुम हंसती हो ना तो तुम्हारे गाल पर जो डिंपल पड़ता है ना, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तुम ही बताओ मेरे कचोरी जैसे गालों में कब डिंपल पड़ता है?
6: अरे यार,
5: और आगे ये देखो, ये देखो क्या लिखा है। चांद में तुम, सितारों में तुम, रोटी में तुम, आईने में तुम, हर शक्ल में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है।
6: अरे क्या
5: बड़ी आंखें सेकी जा रही थी मेरे पीछे।
6: अरे यार
5: इश्क का भूत तो ये पोस्टर भी बयान कर रहा है जिसे आंखें सेकने के लिए तुमने।
6: अरे यार इस पोस्टर में भी तो तुम ही हो जाने मन, जमीन पर आसमां में तुम ही हो जाने मन।
5: ओहो, बड़े बदले नजर आ रहे हैं मेरे सरकार। कहां तो प्रेम पत्र लिखने के नाम पर हाथ पांव ठंडे पड़े जा रहे थे और कहां पूरे प्रेम कवि ही बन चुके हैं। किसका कमाल है ये बताओ मुझे? पर मुझे क्या, मैं तो वापस जा रही हूँ। नादान थी मैं जो तुम्हें भोला समझ बैठी। अरे तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो।
6: अरे जाने मन क्या।
5: अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली रूप दिख गया, नहीं तो जिंदगी भर में इसी मुगालते में रहती कि मैं।
6: ऐसा जुल्म ना करो जी। तुम सुनो तो यार, एक काम करो, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता?
5: बिल्कुल नहीं।
6: तो तुम अशोक को बुला लो। अशोक को तुम बुला लो, तुम खुद तस्दीक कर लो अपने हिसाब से, जैसा तुम चाहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीच में चुपचाप बैठा रहूंगा यार, प्लीज। हां ऐसा करो। अशोक,
8: क्या हुआ भाभी, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुला लिया मुझे?
5: क्या कहूं भैया, कुछ दिनों के लिए मैं मायके क्या चली गई, इन्हें तो सिंह ही निकल आए। अरे आशिकी करना शुरू कर दिया, एक बेटी के बाप हैं पर हरकत, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम खुद ही देखो कैसा बेहुदा लव लेटर लिखा है इन्होंने अपनी उसको। अरे वो तो यकायक में आ गई और ये दे नहीं पाए उस कलमुही को, नहीं तो
8: ओहो, तो ये बात है। अरे ये बुद्धू है भाभी, आपको वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या बेवकूफियां करता रहा है ये। मुझे मालूम है इस लव लेटर के बारे में, मैंने ही तो कहा था इससे कि इसे पोस्ट ना करे। फंस गया बेचारा। अरे पोस्ट कर दिया होता आपको तो कम से कम आज आप इस बेचारे पर शक तो ना कर रही होती।
5: सच कह रहे हैं भैया आप, ये भी यही कह रहे थे पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।
8: 100% सच कह रहा हूँ भाभी, आप चाहें तो श्यामा से कंफर्म कर लीजिए पूरा मैटर, उसे बताया है मैंने।
5: नहीं नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, सचमुच ये भोले सनम ही है, बेचारे इतना जुल्म सहते रहे मेरा, और मुझे माफ कर दो मेरे भोले सनम, माफ कर दो।
0: तो श्रोताओं ये था हमारा हास्य नाटक लव लेटर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
9: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
10: मैं हूं मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
9: जो लौट के घर न आए।
11: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में आप सुनेंगे गायन कीर्ति दुबे और पंडित छन्नूलाल मिश्र का। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गायन, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं कीर्ति दुबे।

दादरा, बनारस का दादरा कैसा होता है कि जो दिल को झुमा दे वो है दादरा। नजर के ऊपर है, एक ही नजर के चार रूप होते हैं। कैसे कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर ऊंची करते हैं तो दुआ मांगते हैं प्रभु से, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई और नजर नीची की तो हया बन गई। नजर नीची की तो शर्मा के नजर नीचे होता है,

अब अंत में हमारे भोलेनाथ की होली विचित्र होली है और इसमें भगवान शंकर का दर्शन होता है। देखिए कैसी होली है। साल में एक बार कृष्ण राधा की होली होती है, जलता है होलिका, और यहाँ भगवान शंकर मणिकर्णिका घाट पर रोज होली जलाते हैं। और कैसे होली खेलते हैं, खेल

0: शाम के ठीक 5 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की शांतिकालीन सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी का स्वागत है।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 102 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं इंद्र, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
3: इमाम ते धियम प्रभरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्त आनजे तमुत्सवे च प्रसवे च सासहिमिन्द्रं देवासः शवसामदन्ननु। हे महान यशस्वी इंद्रदेव, आप शत्रुओं को पराजित करके उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं। हम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। उत्साही देवगण अपने धनों की वृद्धि व रक्षा के लिए आपको प्रसन्न करते हैं। अस्य श्रवो नद्यः सप्त बिभ्रति द्यावा क्षामा पृथिवी दर्शतम वपुः। अस्मे सूर्या चंद्रमसाभिचक्षे श्रद्धे कमिंद्र चरतो वितर्तुरम। इन इंद्रदेव के कर्तव्य जलवर्षण की कीर्ति को सप्त सरिताएं तथा मनोहारी रूप को पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक धारण करते हैं। हे इंद्रदेव, आपकी तेजस्विता से प्रकाशित होकर सूर्यदेव और चंद्रमा प्राणी मात्र को श्रद्धा युक्त ज्ञान एवं आलोक देने के लिए नियम पूर्वक गतिमान होते हैं। तम स्मारथम मघवन प्राव सातये जैत्रम यम ते अनुमदाम संगमे आजान इंद्र मनसा पुरुष्टुत त्वायद्भयो मघवन छर्म यच्छनः। हे वैभव संपन्न इंद्रदेव, आप हमारी विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं से प्रसन्न हों। आपके जिस विजय रथ को सेना के साथ होने वाले संग्राम में देखकर हम आनंदित होते हैं, उसी रथ को हमारी विजय के लिए प्रेरित करें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप हमें सुख प्रदान करें। वयम जयेम त्वया युजा व्रतमस्माकमं शमुदवा भरे भरे अस्मभ्यमिंद्र वरिवह सुगम कृधि प्रशत्रूणां मघवन वृषण्या रुज। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आपके सहयोग से हम घिरे हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। आप प्रत्येक संग्राम में हमारे पक्ष की सुरक्षा करें। आप हमारे शत्रुओं की सामर्थ्य को क्षीण करें, जिससे हम प्राप्त धन का निर्विघ्न होकर उपयोग करने में समर्थ हों। नाना हित्वा हवमाना जना इमे धनानाम धर्त रवसा विपन्यवह अस्माकं स्मा रथमा तिष्ठ सातये जैत्रम हींद्र निभृतम मनस्तव। धन को धारण करने वाले हे इंद्रदेव, आपके आवाहन करता और स्तोता अनेक मनुष्य हैं, अतएव आप संपत्ति प्रदान करने के लिए मात्र हमारे ही रथ पर आकर विराजमान हो। स्थिरता युक्त आपका मन हमें विजयी बनाने में पूर्ण सक्षम हो। गोजिता बाहु अमित क्रतुहु सिमह कर्मन कर्मन क्षतमूतिः खडंकरः अकल्प इंद्रः प्रतिमान मोजसाथा जनावी ह्वयन्ते सिशासवः। बलवान इंद्रदेव की भुजाएं गौवों को जीतने में सक्षम हैं। वे श्रेष्ठ इंद्रदेव प्रत्येक कर्म में संरक्षण साधनों से संपन्न हैं। वे अतुलित शक्ति सामर्थ्य युक्त संघर्षशील अद्वितीय पराक्रम की प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए धन की कामना से मनुष्य उनका आवाहन करते हैं। उत्ते शतान मघवन्नुच्च भूयस उत्सहस्राद्री ऋचे कृष्टिषु श्रवः अमात्रं त्वाधिषणा तित्विषे महियधा वृत्राणि जिघ्नसे पुरंदर। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, मनुष्यों में आपकी कीर्ति सैकड़ों और हजारों रूपों से भी बढ़कर है। मनुष्यों की बृहत प्रार्थनाएं अतुलित शक्तिशाली इंद्रदेव की महिमा को प्रकट करती हैं। अभेद्य दुर्गों को तोड़ने में समर्थ हे इंद्रदेव, आप शत्रुओं का हनन करने में समर्थ हैं। त्रिविष्टि धातु प्रतिमान मोजसस्तिस्रो भूमिर नृपते त्रीणि रोचना अतीदं विश्वं भुवनं ववक्षिथा शत्रुरिंद्र जनुषा सनादसि। हे मनुष्यों के संरक्षक इंद्रदेव, आप तीनों लोकों में तीन रूपों सूर्य अग्नि और विद्युत में स्थित हैं। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से तीन भूमियों तीन तेजों तथा इन संपूर्ण लोकों को संचालित कर रहे हैं। आप प्राचीन काल से जन्म के समय से ही शत्रु रहित हैं। त्वाम देवेशु प्रथमं हवामहे त्वं बभूथ प्रतनासु सासहिः सेमं नः कारु मुपमन्यु मुद्भि दमिन्द्रः कृणोतु प्रसवे रथं पुरः। हे इंद्रदेव, आप देवों में सर्वश्रेष्ठ प्रधान रूप हैं। हम आपका आह्वान करते हैं। आप युद्धों में शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं। अति क्रोध युक्त शत्रुओं को भी पीछे धकेलने वाले इस कलापूर्ण रथ को आप सदैव आगे रखें। त्वं जिगेथ न धना रुरोधिथार भेष्वाजा मघवन महत्सुच त्वामुग्रमवशेषम शिशिमस्यथा न इंद्र हवनेषु चोदय। हे धनवान इंद्रदेव, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने पर धनों को अपने तक सीमित नहीं रखते, अर्थात संग्रह नहीं करते, सत्पात्रों को बांट देते हैं। छोटे और विशाल युद्धों में अपने संरक्षण हेतु योद्धागण इंद्रदेव को ही बुलाते हैं, अतएव आप ही उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्व परिहृवृताः सनुयामवाजम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः। हे इंद्रदेव, आप सदैव हमारे पक्ष के अधिवक्ता हैं। हम भी द्वेष पूर्ण व्यवहार से रहित होकर अनादि प्राप्त करें, इसीलिए मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी और दिव्य लोक सभी हमें वैभव संपदा प्रदान करें।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 102 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। ढलती हुई इस संध्या में जब वातावरण भी भक्ति में डूबा हुआ सा लगता है, तो ऐसे में प्रभु की भक्ति

दयालुता वो भाषा है जिसे हर हृदय समझता है। छोटी सी दया भी किसी के दिन को बदल सकती है और मन में अपार शांति ला सकती है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार पर।

आंध्र प्रदेश के कंदकुर्ती गांव में हेडगेवार परिवार रहता था। उसी परिवार के कुछ लोग महाराष्ट्र के नागपुर में आ गए। नागपुर में ही बलिराम हेडगेवार और उनकी पत्नी रेवती सुशीला के यहाँ 1 अप्रैल 1889 को गुड़ी पड़वा के दिन केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ। गुड़ी पड़वा का अर्थ है ध्वजारोहण करना। इसी दिन सभी लोग अपने घरों पर झंडा फहराते हैं और द्वारों पर तोरण आदि बांधकर उल्लास प्रदर्शित करते हैं। हजारों साल पहले इसी दिन लंका पर विजय के बाद भगवान राम ने अयोध्या में प्रवेश किया था और इसी दिन राजा शालिवाहन ने मिट्टी के घुड़सवारों में प्राण फूंक कर उनके द्वारा आक्रमणकारी शकों को मार भगाया था। बचपन में माता रेवती बाई केशव को शिवाजी की देशभक्तिपूर्ण कथाएं सुनाती थी। इन कहानियों का केशव के मन पर गहरा असर पड़ा। सन 1902 में भारत के कई शहरों में प्लेग फैला था, उससे नागपुर के लोग भी नहीं बच पाए। बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ उनका हाल पूछने नहीं जाता था, लेकिन केशव के माता पिता लोगों के घर घर जाकर उनका हाल पूछते। हालांकि उन्हें भी प्लेग का शिकार होना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। केशव नागपुर में जिस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी दौरान एक दिन अंग्रेज निरीक्षक विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए। कक्षा में उनके आते ही केशव के कहने पर सभी छात्र एक साथ

निरीक्षण का कार्य ठप हो गया। अधिकारी हेडमास्टर पर बरस पड़े। शिक्षकों ने लड़कों को मारा पीटा, डराया धमकाया, लेकिन किसी ने भी केशव का नाम नहीं लिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए विद्यार्थी घर वापस चले गए, लेकिन बात छिपी नहीं रह सकी। केशव पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला गया। केशव ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो शासन अपनी माँ को प्रणाम नहीं करने देता वो अन्यायी है। इस पर केशव को विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद केशव ने यवतमाल और पूना में पढ़ाई की। उनके पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं थीं, ऐसे में वे दूसरों से पुस्तकें मांगकर लाते थे। रात के एकांत में पढ़ते और सुबह लौटा देते। युवकों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाना ही उनका प्रमुख कार्य था। उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस के कार्यवाहक के नाते कार्य किया। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्हें भोजन व्यवस्था का कार्य दिया गया था। सन 1921 में असहयोग आंदोलन छिड़ा, तब उन्होंने उग्र भाषण दिए। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद केशव राव ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके नवयुवकों को एकत्र किया और सन 1925 के विजयदशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।

22 जून 1897 का दिन था। अंग्रेज महारानी विक्टोरिया राज के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष में देश भर में समारोह मना रहे थे। जिस स्कूल में केशव हेडगेवार पढ़ते थे वहां मिठाइयां बांटी गईं। सभी छात्र अंग्रेजों तथा रानी विक्टोरिया की स्तुति करने लगे। केशव से ये नहीं देखा गया। उन्होंने मिठाई को कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। केशव के एक इशारे पर सभी छात्रों ने मिठाई फेंक दी। जब विवाह के संबंध के प्रस्ताव आए तो उन्होंने अपने चाचा जी को पत्र लिखकर कहा था, मैंने आजन्म देश सेवा का व्रत लिया है। मेरे जीवन में न निजी सुख के लिए जगह है और न निजी परिवार के लिए। देश की सेवा करते समय न जाने कितनी बार जेल जाना होगा, हो सकता है जान की बाजी भी लगानी पड़े, इसलिए मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचें। सन 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध कानून तोड़ने का आंदोलन चला। इसी आंदोलन के अंतर्गत केशव राव ने यवतमाल जिले में जंगल सत्याग्रह किया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की जेल हुई। सतत काम करते रहने से केशव राव सन 1940 में बीमार हो गए और 21 जून 1940 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।
2: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है।
3: अब समय है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार का।
4: श्रोताओं, प्रकृति की पुकार में आज हम बात करेंगे मृदा यानी मिट्टी की, यानी माटी की।
2: सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद में।
5: नमस्कार जी।
2: नमस्कार प्रवीण जी, पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ की मिट्टी में पले बड़े और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
5: जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण सोलंकी, मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ और वहीं से मैंने कुछ समस्याएं देखी थी कि एक तरफ हमें देखने को मिलता था कि जो आसुत जल है, मतलब गंदा पानी है, वो बहुत ज्यादा है, उसके प्रबंधन की समस्या हो रही है
2: जी।
5: और दूसरी तरफ जो शुद्ध जल है
2: जी,
5: वो पीने तक के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है
2: जी।
5: तो वहीं से मैंने इस दिशा में कुछ कार्य करने का फैसला किया था और देखते देखते मैंने इस क्षेत्र में BSc कृषि किया, फिर MSc कृषि किया, उसमें पर्यावरण विज्ञान विषय लिया और फिर PhD जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है
2: जी,
5: वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वहां से मैंने पर्यावरण विज्ञान में PhD किया, जहां पर गंदे पानी को कैसे कम किया जाए और उसका उपयोग कैसे कृषि कार्यों के लिए किया जाए, ताकि कृषि कार्यों की जो शुद्ध जल पर निर्भरता है वो कम हो, शुद्ध जल केवल पानी के लिए उपयोग किया जाए
2: जी।
5: और जितना भी गंदा पानी है, चाहे उसको एक लेवल के तक शुद्ध किया जाए, उसके बाद कृषि के लिए उपयोग किया जाए
2: जी।
5: कृषि में भी कोशिश ये की है हमने कि उस पानी को नॉन एडिबल, मतलब जो खाने के लिए उपयोग नहीं करना है, उसके लिए करना है। जैसे पूरे फ्लावर
2: जी,
5: फ्लावर को हम यदि गंदे पानी से भी सिंचाई करें तो उसमें कीटाणु या फिर हैवी मेटल की कोई समस्या नहीं रह जाती है
2: जी।
5: इसलिए मैंने इस तरीके से आगे बढ़ के और विगत 8 वर्षों में मैं कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में मृदा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर हमने खेती किसानी में कैसे किसान कम खाद का उपयोग करके, मिट्टी परीक्षण करवा के, हरी खाद का उपयोग करके मिट्टी को भी कैसे संरक्षित करे, क्योंकि मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है आवश्यक, वो हमारे फल के जो, फूड के जो चेन है, उसमें आते हैं और उसी से हमें फिर पोषक तत्व मिलते हैं।
2: अच्छा अच्छा।
5: मिट्टी की उर्वरता में भी हमारा बहुत पूर्ण योगदान है। हम केंद्र के माध्यम से नवीन कार्यक्रम करते रहते हैं, किसानों को जागरूक करते रहते हैं। इस तरीके से मैं धीरे धीरे एक छोटा सा प्रयास, लेकिन ट्रूथफुल प्रयास, एक मीनिंगफुल प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो मिट्टी की उर्वरता है, वातावरण की शुद्धता है
2: जी,
5: वो बनी रहे और सतत टिकाऊ का जो सिद्धांत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें हम थोड़ा सा योगदान करते रहे।
2: विश्व मृदा दिवस को बनाने का उद्देश्य क्या है, अगर आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, कब से इसकी शुरुआत हुई, कहां से शुरुआत हुई?
5: कभी भी हमें अगर कोई दिन या फिर कोई विशेष अभियान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाना होता है, तो निश्चित ही उसमें उस लेवल का मोटो दिया जाता है, उसे मनाने का क्या महत्व है ये बताने के लिए भी एक बड़ा बेस बनाया जाता है। तो जो विश्व मृदा दिवस है, वो एक जो थाईलैंड के महाराजा थे
2: जी,
5: वो मृदा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयत्न करते रहते थे। तो उनका जो जन्मदिन है वो 5 दिसंबर को आता है और उनका जो नाम है राजा भूमिबोल, उनके जन्मदिन को यादगार के रूप में इस दिन का चयन किया गया। उसके बाद फिर 2002 में जो इंटरनेशनल सॉइल साइंस का यूनियन है
2: जी,
5: उसने भी इसको हरी झंडी दे दी कि ठीक है 5 दिसंबर को मनाना चाहिए। और आखिरी में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अनुशंसा पर जो अपना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होता है
2: जी,
5: उसने इसको पूर्ण रूप से मान्यता दी 2013 में। उस साल से ये विधिवत रूप से विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यहाँ तक कि जो हर 10 साल का एक कार्यक्रम होता है यूनाइटेड नेशंस का
2: जी,
5: उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर सॉइल संरक्षण, मतलब 10 साल तक एक कार्यक्रम चलाता है यूनाइटेड नेशंस, तो वो 2015 से 2025 तक हो चुका है। मतलब ये अपना 2025 जो है वो उसका 10वां साल है उस कार्यक्रम का। मतलब 10 साल तक एक कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस चलाता है, जहां यूनाइटेड नेशंस को लगता है कि हाँ इस क्षेत्र में 10 साल तक कार्य करने की जरूरत है, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़े प्रयास किए जाते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो और उसके संरक्षण में वो महत्वपूर्ण कार्य कर सके।
2: सर, मृदा हमारे जीवन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर आप समझाएं।
5: देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे भोजन में वही पोषक तत्व आते हैं जो हमारी मिट्टी में है
2: जी,
5: है ना। मिट्टी में वो भोजन के जो पोषक तत्व, जो भोजन पौधा जो पोषक तत्व दोहन करता है, वो ही पौधा पोषक तत्वों को अनाज में भी डालता है। अगर एक इसे उदाहरण से समझें कि अगर हम ऐसी मिट्टी का लगातार गेहूं खा रहे हैं जिसमें आयरन डिफिशियंसी है, लोहे की कमी है, तो निश्चित ही हमारे गेहूं में भी आयरन की डिफिशियंसी रहेगी और धीरे धीरे हमारे शरीर में भी आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी और हमें एनीमिया हो जाएगा। अब हमारी मिट्टी की उर्वरता और हमारा भोजन, हमारा जीवन का संतुलन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है। इसलिए कहते हैं कि मिट्टी का जो संरक्षण है, मिट्टी का जो संतुलन है पोषक तत्वों के मापदंड से, वो हमेशा संतुलित बना रहना चाहिए। इसके बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं कि कैसे ये संतुलन बना रहे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर मिट्टी में कोई पोषक तत्व कम हुआ तो निश्चित ही वो हमारे अनाज में भी कम होगा, और अनाज में यदि कम हुआ और उसी अनाज को हम लगातार खा रहे हैं तो हमारे शरीर में भी वो न्यूट्रिएंट डिफिशियंट हो जाएगा और उसके हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लगेंगे। फिर हम केवल पेट भरने के लिए भोजन करेंगे, क्योंकि पहले जो सिद्धांत था वो फूड सिक्योरिटी का था, मतलब खाद्यान्न सुरक्षा, इतना उत्पादन करना है कि कोई भूखा ना सोए। लेकिन आज जो उत्पादन है वो तो पर्याप्त है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कम है, मतलब जो पोषण सुरक्षा है, जो पोषक तत्व की सुरक्षा है कि हमने अगर भोजन करा है तो हमारे शरीर के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्या वो सब उसमें अवेलेबल है। अगर वो नहीं है तो फिर हम इम्बेलेंस डाइट ले रहे हैं, फिर हमें हमारी बैलेंस को डाइट करना पड़ेगा। और पर्टिकुलर हम डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जब विश्वव्यापी बात आती है, हर गरीब को भी बैलेंस डाइट मिले, तो वो तभी मिल पाएगा जब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का गेहूं है उस गेहूं में भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स रहे
2: जी।
5: तभी तो पोषक तत्व सुरक्षा होगी ना
2: जी।
5: हम इंडिविजुअल तो कर सकते हैं, लेकिन हर कोई कर ले, इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे सॉइल में ही न्यूट्रिएंट बैलेंस हो जाए, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो
2: जी।
5: वो फुलफिल करे सारे न्यूट्रिएंट्स को।
2: आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है और सब इससे जुड़े हैं, शहरों में, गांव में, तो इसके जरिए किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है
5: जी? बड़ा अच्छा ये प्रश्न है, क्योंकि अभी तो ऐसा एक सिनेरियो चल रहा है कि जो चीज पहले 10 दिन में पता चलती थी
2: जी,
5: जो चीज पहले 1 दिन में पता चलती थी वो आज सेकंड्स में पता चलती है
2: जी।
5: इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं कि जो भी अवेयरनेस है तो उसका हम लोग लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। कैसे हम सॉइल को वापस न्यूट्रिएटिव कर सकते हैं, कैसे उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, अभी हमने हरी खाद का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो हमने किसानों को लाइव दिखाया था
2: जी।
5: कि कैसे हम लोग हरी खाद की फसल को 35 दिन या जो भी फसल हो उसकी फ्लावरिंग स्टेज पर रोटावेटर कर देते हैं, पानी चला देते हैं और उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 लीटर प्रति एकड़ डाल देते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर अबंडेंट क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है, ये पूरा सॉइल में जाके सॉइल की जो ऑर्गेनिक कार्बन है जिसको मिट्टी की जान कहते हैं, वो अगर बढ़ जाता है तो निश्चित ही हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरीके से हम जो टेक्नोलॉजी है उसको बिल्कुल आसानी से वीडियोग्राफी करके भी बताना बहुत आसान हो गया है। मतलब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसका वीडियो बनाकर तुरंत ही लाइव टेक्नोलॉजी से उसको डिसिमिनेट कर देते हैं। हमारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, सबसे हम लोग किसानों को कनेक्ट करके रखे हैं और जो भी कोई कार्यक्रम यहाँ करते हैं तो तुरंत उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि किसान को इजी टू अंडरस्टैंड रहे और दूसरा वो तुरंत टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर ले। ये बहुत जरूरी है आज। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले इफको का वेस्ट डिकम्पोजर का भी डेमो किया था कि कैसे हम नरवाई का प्रबंधन कर सकते हैं, तो वो हमने पूरा यहाँ डेमो बनाकर दूसरे ही दिन उसको सारे यूट्यूब फेसबुक पे डाल दिया और किसानों के फीडबैक भी आने लगे कि हमें ये चाहिए, हमें इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज करके कम समय में हमारी जो टेक्निक है उसको किसान तक इजी वे में पहुंचा सकते हैं।
2: एक सवाल और ये निकल के आता है कि मृदा क्षरण एक चुनौती क्यों बनता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
5: मृदा क्षरण देखिए एक चुनौती इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि हम एक तो फसल एकीकरण बहुत अपनाया है किसानों ने। किसानों की दृष्टि से यदि बात करें तो उसने फसल एकीकरण अपनाया है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने भी मृदा क्षरण में बहुत योगदान दिया है। कहीं ना कहीं जो हमारा डेवलपमेंट है, चाहे वो रोड की

0: आगे पहुंचा देगा।
1: सही।
0: तो वो जो वाटर की इंटेंसिटी है और वो जो अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर है, उसने सॉइल इरोजन को बहुत बढ़ाया है। मतलब सॉइल को पूरा इरोज करके बहा के अपने साथ नदी नाले में ले गया।
1: जी
0: इसी तरीके से किसान ने भी केवल एक ही फसल एकीकरण किया है। मतलब अभी अगर हम नर्मदापुरम का उदाहरण लें तो हमारे जिले में अभी 90% एरिया में गेहूं लगा है।
1: जी जी
0: तो गेहूं को धान के बाद लगाया गया है, 90% एरिया में धान भी था। तो धान को भी वही न्यूट्रिएंट चाहिए जो गेहूं को चाहिए, गेहूं को भी वही चाहिए जो धान से ले ऑलरेडी ले चुके हैं धान। तो ऐसे में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का जो सॉइल में बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। मतलब हमारी सॉइल में से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ न्यूट्रिएंट है जिनको फसल की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि फसल को बदल के नहीं लगाया गया। ऐसे तो में किसानों को चाहिए कि जैसे अभी मैंने अगर गेहूं का उदाहरण दिया तो चना भी लगाए कुछ किसान, या फिर सेम किसान 10 एकड़ है तो इस बार 3 एकड़ में गेहूं, 3 एकड़ में चना, 3 एकड़ में मटर, मसूर। इस तरीके से अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे, फसल विविधीकरण, फसल एकीकरण की जगह यदि फसल विविधीकरण करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट भी यदि होता है तो कहीं ना कहीं हमें जो इथिकल नॉर्म्स है, जो CSR का जो नॉर्म्स होता है, जो एनवायरमेंटल सिंपैथी होती है, मतलब पर्यावरण संरक्षण के जो नियम है, तो उसमें प्रॉपर प्लांटेशन, यदि हमने कोई रोड निकाला है और उसमें प्लांट कटे हैं तो बी इंश्योर कि उससे ज्यादा प्लांट वापस नए रोड के आउट साइड में लगाए जाए, ताकि वो जो बैलेंस में मिसमैच किया है प्रकृति का वो वापस मैच हो जाए। अच्छा। नहीं तो हमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मृदा का जो क्षरण है वो करना आसान है, लेकिन उसको वापस रोकना या बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हमने सुना है कि 1 इंच मिट्टी बनने में 1000 साल लगते हैं। अगर कोई चट्टान है, उस 1 इंच की चट्टान पे 1 इंच मिट्टी बनना है तो वो 1000 साल लगते हैं। हजारों साल की प्रोसेस होती है वेदरिंग की और केमिकल ऑक्सीडेशन की, फिजिकल फिक्सेशन की, तब जाके 1 इंच मिट्टी बनती है। तो इस क्षरण पे बहुत ही गंभीरता से लेने का विषय है, चाहे वो किसान की बात हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अर्बनाइजेशन की। तो वहां पर जो भी इथिकल नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन या फिर जो भी अपन हरी खाद की फसल या फसल विविधीकरण है वो सभी अपनाने चाहिए।
1: सर, मृदा स्वास्थ्य को किस तरह से मेजर किया जा सकता है?
0: जी, अगर एक किसान की दृष्टि से बात की जाए, क्योंकि मिट्टी दो तरीके से स्टडी की जाती है मिट्टी की।
1: जी।
0: एक तो होता है पेडोलॉजी, मतलब मिट्टी कैसे बनी है, उसका विकास कैसे हुआ और उसपे कितनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है।
1: जी।
0: मतलब अर्थक्वेक की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से, सुनामी की दृष्टि से, तो ये पूरा अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी।
1: जी।
0: दूसरा अध्ययन होता है इडेफोलॉजी, मतलब इसमें कितने पोषक तत्व हैं, इसकी उर्वरता क्या है, इसको कितने प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। किसान की दृष्टि से इडेफोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। मतलब हम मिट्टी परीक्षण से, सामान्य प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण की जो भी मशीनें होती हैं उससे हम लोग ज्ञात करते हैं कि हमारी मिट्टी का जैविक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, अवेलेबल फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। तो इस तरीके से 12 पैरामीटर ज्ञात करके हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी की क्या उर्वरता की स्थिति है।
1: जी जी।
0: अब अगर उर्वरता की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो हमें उसमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हम एक औसत उपज प्राप्त कर सकें।
1: जी।
0: तो ये पूरा अध्ययन इडेफोलॉजी के अंतर्गत आता है, ताकि हम किसानों को भी बता सकें कि आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है और अगर आप धान लगा रहे हैं तो विशेष रूप से आपको जिंक डालना है। अगर आपकी मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा है तो आपको उसको मृदा सुधारक के द्वारा ऑप्टिमम पीएच तक लाना है, ताकि जो सभी पोषक तत्व की उपलब्धता है वो अच्छी रहे। तो इस तरीके से हम मिट्टी को जांच कर सकते हैं, मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं और किसानों को बता सकते हैं। और एक जो दूसरा मैंने बताया पेडोलॉजी का, उसमें ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी वाला अध्ययन होता है। ये जनरली जब बहुत बड़ी बिल्डिंग जो मुख्यतः भूकंप के जोन में आती है वहां बनाना है, या फिर बहुत बड़ा डैम बनाना है, तब वहां पर ये इडेफोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, ताकि ये पता कर सकें कि वहां पर क्या बिल्डिंग निर्माण करना चाहिए या फिर करें भी तो कितने फ्लोर तक बनाना है, दैट्स इट।
1: सर एक सवाल और हमारे जहन में आ रहा है कि मृदा की जो उर्वरता कम होने के मुख्य कारण आप किन को समझते हैं?
0: देखिए जो मुख्य कारण है वो तो मृदा उर्वरता की, यदि खेती किसानी की दृष्टि से बात करें तो एक किसानों ने क्या है नरवाई का प्रबंधन सही से नहीं समझा है, उसका महत्व नहीं समझा है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाने का प्रयास करूं किसानों को, अगर आज से 25 साल पहले की खेती यदि देखें तो उसमें जो मृदा उर्वरता या फिर पोषक तत्व प्रबंधन का जो सबसे ताकतवर सिद्धांत था वो था कि जो भी फसलों से अवशेष निकलते हैं वो पशुओं को खिलाए जाते हैं, और पशुओं से जो भी अवशेष मल मूत्र गोबर उनकी त्वचा से गिरने वाले बाल लार इत्यादि ये सभी पोषक तत्व खाद के रूप में किसान वापस मिट्टी में डालता था
1: जी।
0: मतलब जो पोषक तत्व पौधे ने लिए हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से सारे मिट्टी में डालता था
1: जी जी।
0: अब ये कार्य किसान ने करना बंद कर दिया है, कारण चाहे कुछ भी कहें, एक तो वो नरवाई जला देते हैं, गोबर गोमूत्र की बहुत ही कमी है, पशु नहीं रख पा रहे हैं। तो ये जो कुछ सिद्धांत हैं, मतलब वास्तविक सिद्धांत था जो पोषक तत्व प्रबंधन का, मृदा उर्वरता का, ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रबल कारण कह लीजिए मृदा उर्वरता को खत्म करने का, कि उसने नरवाई का सही प्रबंधन नहीं किया, गोबर गोमूत्र नहीं डाला और फसल का एकीकरण किया। मतलब कुछ ऐसी ही फसलें बहुत ज्यादा लगातार लगाई जिनका पोषक तत्व की आवश्यकता समान थी, इसलिए मिट्टी में वो पोषक तत्व कम हो गए।
1: जी जी।
0: भाई मांग और सप्लाई का जो सिद्धांत था उसमें मांग ही मांग बढ़ती गई बस।
1: जी जी।
0: उसने वो पोषक तत्व डाले कम, और कुछ पोषक तत्व बहुत मात्रा में मिट्टी में आज भी है, जैसे पोटेशियम है, लोहा है, तो ये मिट्टी में है क्योंकि इनकी जिन फसलों को आवश्यकता है वो तुलनात्मक रूप से उतनी नहीं लगाई गई। तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की जो क्षरण या उर्वरता की जो समस्या आई है उसमें ये जो दो तीन कारण है ये बहुत ज्यादा रूप से मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित किए हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़े एक और सवाल कहेगी, जैविक खाद, हरी खाद और फसल चक्रण का की क्या इंपोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है?
0: अच्छा एक प्रश्न है, या यूं कहूं कि किसानों के लिए सुझाव है कि फसल चक्रण की, यदि जैसे मैंने अभी बताया कि जब किसान फसल चक्र अपनाता है तो निश्चित ही उस चक्र की फसलों का जो पकने की अवधि रहती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई किसान गेहूं लगा रहा है और कोई किसान चना लगा रहा है, चना तुलनात्मक रूप से जल्दी कट जाएगा, उसकी नरवाई भी कम निकलती है, उसको पोषक तत्व भी कम लगते हैं और वो पशुओं के लिए एक टेस्ट में डिफरेंट लाने का भी काम करता है। तो ये चीज अगर हम अपनाते हैं तो किसानों को पोषक तत्वों के प्रबंधन में भी सहायता मिलती है और नरवाई प्रबंधन में भी, और पशुओं को भी वैरायटी वाला फूड मिल जाता है। इसी तरीके से नरवाई प्रबंधन की भी यदि बात करें तो हमने उस नरवाई ने जितने पोषक तत्व मिट्टी से लिए हैं अगर वो पोषक तत्व वापस किसी भी तरीके से प्रबंधित करके मिट्टी में डाल दें तो वो बहुत अच्छा एक तरीका होता है मिट्टी की उर्वरता को प्रबंधन करने का
1: जी।
0: तो इसमें सबसे आसान तरीका मैं बताना चाहूंगा किसानों को आपके रेडियो के माध्यम से, कि जैसे किसानों की नरवाई निकली, अभी धान की नरवाई निकली हुई है
1: जी।
0: उसको खेत के पास एक गड्ढा बना ले नरवाई के मात्रा के अनुसार, बड़ा छोटा, उस गड्ढे में नरवाई डालना है एक फीट की परत, फिर उस पे थोड़ा गोबर का लपेटा, फिर दूसरी परत नरवाई की डाल देंगे, फिर गोबर का लपेटा, और इस तरीके से डालते जाएंगे
1: जी।
0: और अंत में जो भी आपके पास, या तो वेस्ट डिकम्पोजर डाल सकते हैं, अभी इफको द्वारा बनाया गया है
1: जी।
0: या फिर अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो जो ट्राइकोडर्मा वीरडी है ये भी डाल देंगे उसके ऊपर, तो वो बहुत जल्दी सड़ गल कर अगली फसल के लिए तैयार हो जाएगा। और ये नरवाई का प्रबंधन का सबसे अच्छा मतलब तरीका है, इससे हम लोग केंद्र पर भी करते हैं ताकि ये जितनी भी नरवाई है वापस मिट्टी में चले जाए पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा एक मृदा उर्वरता को संरक्षित करने का तरीका है।
1: सर किसानों के लिए मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है और ये कब करना चाहिए, अगर आप इस पर कुछ बताएं?
0: जी ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे जो शिक्षा है उसमें हमने ये पढ़ा है, प्रोफेसर जस्टिस वान लिबिग ने बताया है कि हर पोषक तत्व का एक विशेष कार्य होता है और वो कार्य अन्य पोषक तत्व से नहीं कर सकते हैं।
1: जी जी,
0: है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर जिंक की कमी से पौधों में ये विकार हो रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हमने नत्रजन बहुत ज्यादा दे दिया तो अब वो समस्या समाधान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए अब मिट्टी में जिंक कम है या नाइट्रोजन ज्यादा है ये पता करने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना पड़ेगा।
1: जी।
0: तो मिट्टी परीक्षण करवाने से हमें पता चलता है कि किस पोषक तत्व में मिट्टी बहुत अच्छी है, किसमें कमी है। तो मिट्टी परीक्षण करवाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो एक तो अप्रैल महीने होता है और एक ये नवंबर दिसंबर होता है, क्योंकि इस समय एक फसल कट के दूसरी फसल लगाने की तैयारी होती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: कहने का मतलब है कि खेत खाली रहता है।
1: जी।
0: तो जब खेत खाली रहता है तब मिट्टी का नमूना लेना बहुत अच्छा रहता है। इसको 3 साल में एक बार टेस्ट जरूर कराना चाहिए। नमूना लेने का एक छोटा सा तरीका होता है, इस तरीके का

0: से नमूना छोड़कर लेना है, और खेत में यदि कोई पेड़ है तो
1: जी
0: पेड़ के नीचे से भी जहां चारों तरफ छांव बनती है वहां से नमूना नहीं लेते हैं। अब इसके बाद इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए एक जगह चयन करके वी आकृति का गड्ढा करते हैं, ऊपर से फावड़े से थोड़ी नरवाई हटाते हैं और वी आकृति के गड्ढे को 4 से 6 इंच गहरा करते हैं सामान्य फसलों के लिए,
1: जी
0: गेहूं, धान, मक्का, इनके लिए। अगर किसी को तुअर लगाना है और कपास लगाना है, गन्ना लगाना है, तो 3 फीट गहराई तक गड्ढा करते हैं। और अगर किसी को बगीचा लगाना है, आम का
1: जी
0: बगीचा, तो वो 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक, मतलब 4 से 6 फुट तक गहराई करते हैं, और उस गहराई के पूरे ऊपर से लेके नीचे तक 1 इंची मोटी परत निकालते हैं। अब इसके बाद ये एक जगह से निकल गया, इसी तरीके से 4-5 जगह से प्रति एकड़ 5 जगह से नमूना निकालकर पांचों जगहों के नमूने को एक बड़ी सी पन्नी पर इकट्ठा करते हैं, उसको अच्छे से मिलाते हैं, और अगर कोई बड़ा पत्थर या कुछ बड़े लकड़ी या कंकड़ पत्थर इत्यादि है तो उनको हटा देते हैं। अब इसके 4 हिस्से करते हैं हम लोग,
1: जी
0: 2 विपरीत दिशा के रखते हैं और 2 फेंक देते हैं, मतलब हमको इसका जो मात्रा है उसको धीरे धीरे कम करना है। तो 2 रखेंगे तो वो 10 किलो का नमूना यदि है तो 5 किलो बचेगा। फिर जो 2 हैं इनको अच्छे से मिलाकर 1 बनाएंगे, 1 का पुनः 4 बनाएंगे, फिर 2 रखेंगे, 2 विपरीत दिशा के फेंक देंगे तो 2.5 बचेगा, फिर 2 का 1 और 1 के 4, 4 के 2, इस तरीके से तब तक करते रहेंगे जब तक कि 500 ग्राम नमूना केवल शेष न रह जाए।
1: जी
0: अब 500 ग्राम नमूना हम किसान की पूरी जानकारी, किसान का नाम, मोबाइल नंबर, खसरा नंबर, पूर्व लगाई गई फसल, आगामी लगाई गई फसल, ये सब जानकारी के साथ नजदीकी प्रयोगशाला में भेजते हैं परीक्षण के लिए। परीक्षण उपरांत जो हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होता है उसके हिसाब से हम पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। तो किसान भाइयों को मेरी यही सलाह है कि कम से कम 3 साल में परीक्षण जरूर करवाएं,
1: अच्छा
0: 3 साल में एक बार करवाना चाहिए। 3 साल तक एक परीक्षण मान्य रहता है, उसके बाद फिर पोषक तत्वों में बदलाव हो सकते हैं, तो 3 साल में एक बार नमूना परीक्षण करवाना चाहिए।
1: रासायनिक उर्वरकों जो हैं उनके उपयोग से मृदा पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं?
0: निश्चित ही, क्योंकि देखिए रासायनिक उर्वरकों में अगर हम देखें तो किसी भी उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा होती
1: जी
0: है ना। जैसे अपन यूरिया की बात करें तो यूरिया में 46% नत्रजन होता है और बाकी जो होता है 54% वो फिलर मटेरियल होता है, मतलब एक तरीके से वाहक मटेरियल कह सकते हैं उसको। तो वो जब मिट्टी में धीरे धीरे जाता है तो वो मिट्टी में जमा होने लगता है,
1: जी
0: उसकी मात्रा धीरे धीरे मिट्टी में विकार उत्पन्न करती है, या यूं कहें कि अम्लीयता का प्रभाव बढ़ाने लगती है या क्षारीयता का प्रभाव बढ़ाने लगती है। कुल मिला के मिट्टी में एक उत्प्रेरक का कार्य करने लगती है, और जब उसकी निश्चित मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो मिट्टी में अति
1: जी
0: विकार उत्पन्न होता है।
1: जी
0: ये जो पोषक तत्व भी होते हैं ये बहुत ज्यादा मिट्टी में एकदम से प्रभाव डालते हैं।
1: जी
0: जैसे हमने यूरिया डाला तो कुछ दिन तक मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा कम हो जाता है,
1: जी
0: और अगर एक ही तरीके का हमने उर्वरक डालते गए तो वो, जैसे यूरिया है मिट्टी में अम्लीय प्रभाव छोड़ता है, डीएपी है मिट्टी में क्षारीय प्रभाव छोड़ता है, तो अगर हमने केवल यूरिया बहुत ज्यादा डाला है तो वो धीरे धीरे अम्ल हो जाएगा। अब
1: जी
0: अम्ल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो पीएच मान है
1: जी
0: वो निर्धारित करता है कि सभी पोषक तत्व किस अनुपात में पौधे को मिलेंगे।
1: जी
0: अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई तो कुछ पोषक तत्व तो पौधा ले ही नहीं पाएगा, एक तरीके से मिट्टी बीमार पड़ जाएगी और वो पौधे को पोषक तत्व अवशोषित नहीं करने देगी, क्योंकि हर पोषक तत्व पौधा तभी ले पाता है जब वो आवेशित अवस्था में आता है।
1: जी
0: हमने पढ़ा है हम शिक्षण संस्थानों में कि जो नत्रजन है उसको सभी पौधे नाइट्रेट रूप में लेते हैं, NO3-, मतलब NO3-, अगर धान की बात करें, आलू की बात करें, तो वो अमोनिया रूप में लेते हैं, NH4+।
1: जी
0: अब अगर ये आवेशित अवस्था में आने का कार्य अगर किसी के द्वारा प्रभावित होता है, किसी रासायनिक केमिकल के द्वारा, तो निश्चित ही पौधों पर भी इसका प्रभाव दिखता है।
1: जी
0: और
1: जी
0: ये हमारे पौधों की जो उपलब्धता है या पोषक तत्वों की जो

0: उपलब्धता है वो पौधे के लिए प्रभावित होती है और हमारा पौधा फिर अच्छे से बढ़वार नहीं कर पाता है। इसलिए रसायनों का बहुत ही लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो वास्तविक प्रबंधन का सिद्धांत है,
1: जी
0: जलवायु प्रबंधन का, गोबर प्रबंधन का, हरी खाद का,
1: जी
0: फसल चक्रण का, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
1: जी जी
0: और इसके साथ भी मैं रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जो लाभदायक सूक्ष्म पोषक तत्व वाले जीव होते हैं
1: जी
0: उनका उपयोग भी करने की सलाह दूंगा किसानों को। जैसे उदाहरण के लिए हम यूरिया की जगह अगर धान और गेहूं की फसल है तो एजोटोबैक्टर से बीज उपचार करना चाहिए। चना और अगर तुअर और मूंग की फसल है तो राइजोबियम से बीज उपचार करना
1: जी
0: चाहिए। ये जो लाभदायक जीव हैं ये वातावरण की नत्रजन को पौधों को उपलब्ध करवाते हैं ताकि इन फसलों को यूरिया के नत्रजन की आवश्यकता न पड़े। इसी तरीके से जो फास्फोरस घोलक जीवाणु रहता है
1: जी
0: वो यदि उपयोग करते हैं बीज उपचार के लिए तो यूरिया और डीएपी की भी कम आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, पोटेशियम सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, इन पे किसानों को वापस थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहिए ताकि जो पोषक तत्व प्रबंधन का जो इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल है, मतलब समन्वित सभी चीजों से थोड़ा थोड़ा करके हमको पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए।
1: मृदा संरक्षण के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
0: जी, एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई थी 2014 से, मतलब अभी भी वो चल रही है बहुत ही व्यापक स्तर पर, है ना। तो इसमें किसानों की जो मिट्टी का जो परीक्षण है वो इस योजना के माध्यम से करके दिया जाता है और किसानों को अवगत कराया जाता है कि आज आपकी मिट्टी की ये स्थिति है, आपको अगर इस फसल का इस मात्रा में उत्पादन लेना है तो आपको ये पोषक तत्व डालने पड़ेंगे और इस तरीके से गोबर की खाद, इस तरीके से पीएसबी, एनपीके, ये सब डालना पड़ेगा।
1: जी
0: इस योजना के माध्यम से किसानों को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जाता है जिसमें एक तो पूरे किसान की जानकारी रहती है, दूसरा
1: जी
0: 12 पैरामीटर जो होते हैं,
1: जी
0: 12 पैरामीटर में पूरे किसान की जो फर्टिलिटी का स्टेटस है वो डाल रहता है, तीसरा मुख्य बिंदु रहता है कि अगर इस 12 पैरामीटर या फिर मृदा उर्वरता के हिसाब से किसान को गेहूं लगाना है तो कितना एनपीके, कितना गोबर की खाद, कितना पीएसबी, राइजोबियम डालना पड़ेगा। मिला
1: जी
0: के एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब मिट्टी की उर्वरता से लेके किसान की जानकारी से लेके जो आगामी फसल लगाना है उसमें कौन सा पोषक तत्व किस उर्वरक से डालना है, ये सब जानकारी उसमें रहता है। दूसरा, अगर योजना में बात करें तो ये तो एक विशेष योजना हो गई। उसके बाद भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है, इससे किसानों को प्रेरणा मिलती है कि हमारे मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है वो किन किन कारणों से कम हो रही है, अगर हमको इसको संरक्षित करना है तो क्या क्या कारण करना है,
1: जी
0: और अगर अच्छा उत्पादन प्राप्त करते रहना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सब जानकारियां विविध योजनाओं के माध्यम से या फिर अन्य योजना के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं
1: जी
0: ताकि ये जो मिट्टी की उर्वरता है ये लगातार बनी रहे और टिकाऊ तरीके से आने वाली पीढ़ी को भी उसी गुणवत्ता वाला अनाज उत्पादित करके प्राप्त हो सके।
1: कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका रहती है? आप लोग क्या कुछ करते हैं, कि ट्रेनिंग्स देते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में स्टूडेंट्स को लेकर, या सोशल नेटवर्किंग के थ्रू? थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए।
0: देखिए, किसी भी अगर उत्पादन की बात करें, मतलब कृषि क्षेत्र में उत्पादन की बात करें, तो सबसे पहला क्राइटेरिया या सबसे पहला बेसिक जो फंडामेंटल बेस आता है वो मिट्टी ही होता है। तो
1: जी
0: निश्चित ही हमारा केंद्र भी इसको बचाने या इसकी उर्वरता को संरक्षित करने में अग्रणी योगदान निभा रहा है। एक तो हम यहाँ से कुछ मॉडल तैयार करके किसानों को बताते हैं कि हमने ये करके देखा है, आप भी कीजिए।
1: जी
0: जैसे एक तो हरी खाद का प्रयोग हमने करके देखा है कि जैसे हमने पहले उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया, एक की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जैविक कार्बन 0.5 था, हमने उसमें 3 बार हरी खाद की फसल लिया और उसका जो जैविक कार्बन है वो 0.75 तक हो गया।
1: जी
0: मतलब नरवाई प्रबंधन या फिर ये जो हरी खाद की फसल है इससे हम लोग मिट्टी की उर्वरता को बहुत जल्दी अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया कि कैसे रासायनिक केमिकलों पर निर्भरता कम हो, इसके लिए हमने केंद्र पर फास्फोरस बाहुल्य जैव खाद मतलब प्रोम का निर्माण शुरू किया, ताकि किसानों को यूरिया का और डीएपी का विकल्प उपलब्ध हो जाए। इसी क्रम में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एक तरल जैव उत्पादन इकाई है जिसमें एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, पीएसबी, माइक्रोबियल सोल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सब किसानों को हम लोग कम से कम लागत में उपलब्ध करवाते हैं, ताकि देखिए किसान के पास जब तक विकल्प नहीं रहेगा वो यूरिया डीएपी की लाइन में ही लगा रहेगा। हमें किसान को यदि कहना है कि यूरिया नहीं डालना है तो उसे कुछ देना पड़ेगा कि ये डालना है। इसी तरीके से हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है धान की फसल में एजोला का उपयोग। तो धान को तो वो नाइट्रोजन देता ही है, साथ में जब ये धान कट जाती है तो रोटावेटर से जो एजोला मिला दिया जाता है मिट्टी में, वो पूरा नरवाई का जो पोषक तत्व प्रबंधन का है वो कार्य करता है। मतलब एजोला में जितना भी बायोमास रहता है वो मिट्टी की जो जैविक कार्बन की मात्रा है उसको बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये तो प्रत्यक्ष हमारे मॉडल हो गए, बाकी इन मॉडल को डिसिमिनेट करने के लिए हम लोग समय समय पर किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। मृदा दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया है जिसमें किसानों को मिट्टी को कैसे संरक्षित करें और जो भी केंद्र पर प्रैक्टिस होती है उसको हम लोग कैसे किसानों को इजी वे में बता पाए कि ये आप भी कीजिए, नरवाई प्रबंधन है या फिर हरी खाद को डालना है, कम गोबर में भी कैसे अच्छा खेती करें, ये सब जानकारी हम किसानों को केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं।
1: जी प्रवीण जी, आपने इतनी से चर्चा की, इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। और आपने रेडियो आजाद हिंद को अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी नमस्कार।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम प्रकृति की पुकार अभी आप सुन रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे मृदा यानी मिट्टी की यानी माटी की,
1: जिसमें हमने बातचीत की डॉक्टर प्रवीण सोलंकी, कार्यक्रम सहायक, कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का, और आपके साथ था मैं फराज फैयाज। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम योग संवाद।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में योग वासिष्ठ की दिव्य कथा के वैराग्य प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें श्री राम के वैराग्य की गहन अनुभूति प्रवाहित है। संपूर्ण ऐश्वर्य, शक्ति और वैभव से युक्त होते हुए भी जब मन संसार से विरक्त हो जाए, जब हर सुख असार लगने लगे, जब ये जगत क्षणभंगुर और माया मात्र प्रतीत हो, तब जो स्थिति उत्पन्न होती है वही है श्री राम की वैराग्य दशा। आज के इस अंक में हम उसी भावभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। वो विरक्ति जो पलायन नहीं बल्कि सत्य की खोज का प्रारंभ है, वो प्रश्न जो मन को विचलित नहीं बल्कि जागृत करते हैं। तो आइए उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं जहां श्री राम का वैराग्य हमें अपने ही जीवन के प्रश्नों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। योग संवाद में आज की चर्चा श्री राम की वैराग्य दशा पर, और इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
2: श्री राम की वैराग्य दशा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले अंक में हमने बात भी की कि तीर्थ करके जब लौटते हैं भगवान श्री राम
3: जी,
2: तो उनकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। वो बहुत कमजोर और सोच में रहने लग गए हैं और इससे पिता उनके बहुत चिंतित हैं
3: जी।
2: तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तीर्थ करने के बाद श्री राम की स्थिति कैसी है, ये आप हमारे सुनने वालों को बताएं।
3: आप इसमें देखिए, जब द्वारपाल जाता है राम जी को बुलाने के लिए
2: जी,
3: तो रामचंद्र जी के भवन में जैसे ही वो द्वारपाल पहुंचता है, देखता है कि राम जी अपने भवन में अमन होकर बैठे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे जो भ्रमर होता है रात को कमल में बंद होकर उदास हो जाता
2: जी, जी,
3: है ना, उसकी दुनिया सिमट जाती
2: जी,
3: है
2: जी, जी।
3: ऐसे ही रामचंद्र जी जो है, जो पूरा जगत जो कहते हैं ना, मैं जहाँ उस ब्रह्म का दर्शन करने का सामर्थ्य उनमें है, वो एक उदासीन मन के साथ अमन की स्थिति में बैठे हैं। अब कहते हैं कि यात्रा से लौट के आने के बाद उनका मन उदास हमेशा रहता है, और जो वो वैराग्य की स्थिति बता रहे हैं वो देखिए, कहते हैं कि वे बार बार खिन्न हो उठते हैं और उनके आंख आंसू से भर जाते हैं।
2: अच्छा।
3: जब जगत देखते हैं तो रो पड़ते हैं
2: जी जी जी।
3: जिसको कबीरदास जी भी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो ऐसे जब कोई तत्वदर्शी ऐसा होता है तो वो जगत को देखता है, कहता है देखो आप क्या कर रहा है आदमी, क्या करने आया था
2: जी,
3: क्या
2: जी,
3: कर रहा है
2: जी, जी,
3: अवलो नसानी अबना नसे
2: हाँ,
3: हो
2: हाँ,
3: जी। तो राम जी कहते हैं कि संपत्ति से विपत्ति,
2: अच्छा
3: ये उनके वैराग्य की स्थिति है कि जितनी विपत्तियां हैं वो सब संपत्ति से आ रही हैं।
2: अच्छा।
3: और जबकि संसार ठीक उसके उल्टा सोचता है कि सारी विपत्तियों को दूर करने के लिए संपत्ति प्राप्त करना चाहता है।
2: ये एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि संसार में हर व्यक्ति जो काम कर रहा है या जिस लिए जी रहा है, उसके जीने का एक बड़ा मुख्य ध्येय है संपत्ति। और क्या कह रहे हैं श्री
3: राम? कह रहे हैं कि संपत्ति से विपत्ति, घर अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या क्या होने वाला है। कहते हैं कि जितनी भी विपत्तियां हैं उस विपत्तियों का एकमात्र कारण संपत्ति है। और आप कभी देखिए तो आप एक बच्चे को कभी जब आप देखें, छोटे बच्चे को
2: जी,
3: तो वो जिस आनंद में होता है उसके पास कोई संपत्ति तो नहीं है, ठीक है, लेकिन संपत्ति नहीं है इसलिए कोई विपत्ति भी नहीं है। तो अकारण वो हंसता है, है ना,
2: बिल्कुल
3: है ना जी। लेकिन जब हम संपत्ति के महत्व को जैसे जानते हैं
2: वैसे वैसे दुखी होते जाते हैं
3: और विपत्तियां घेर लेती हैं
2: जी, जी,
3: संपत्ति
2: जी।
3: आती है तो फिर आप संपत्ति की रक्षा करने की बात करते हैं, इसको इसके द्वारा ही अपने जीवन में आप सुख समृद्धि ला सकते हैं, ऐसी भावना आपके अंदर आती है। जब तक संपत्ति नहीं थी तब तक ये भाव भी नहीं था। तो वो कहते हैं कि ऐसा होता है, और वो कहते हैं यहाँ जगत में सब कुछ मिथ्या है, और ये कहकर वो चुप हो जाते हैं और अकेले बैठ जाते हैं। ये उनकी स्थिति है, है
2: ना।
3: तो एकदम किसी विषय में उनका कोई आसक्ति नहीं है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो अक्सर मौन हो जाते हैं। तो ये सब उनकी मतलब वैराग्य की स्थिति है, जो बार बार उन्हें सोचने पर विवश कर रही है कि वास्तव में है क्या ये संसार
4: जी, जी, जी।
3: और तो, इसको लेकर के आपस में वो जूझ रहे हैं जी।
4: हाँ, हाँ, तो श्री राम की जो ये स्थिति है इस पर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं?
3: इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुनंदन श्री राम की जो ये स्थिति है, ये स्थिति न तो किसी मोह से उत्पन्न हुई है और न किसी आपत्ति से। मोह जब होता है तो आपको आसक्ति होती है, और आपत्ति जब आपके जीवन में दिखाई देता है तो आप उस चीज से बचना चाहते हैं, विरक्ति होती है। लेकिन तो आसक्ति और विरक्ति का मूल कारण क्या है? मोह और आपत्ति। जैसे आपको किसी विषय से आपत्ति दिखाई दे रही है या उसमें विपत्ति दिखाई दे रही है तो उससे आप वैराग्य लेते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इससे जीवन में कष्ट आता है। तो ये कहते हैं कि राम जी की जो स्थिति है, जो संसार के तमाम लोगों की स्थिति है, कि वो जो आपत्ति जो उन्हें होता है और जो आसक्ति होता है और इसकी वजह से उनके जीवन में वैराग्य आता है, वो राम की स्थिति नहीं है। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, इसलिए उन्हें मोह नहीं बोध प्राप्त हुआ है।
4: अब तो क्या ये आसक्ति विपत्ति और आपत्ति की आपने जो बात की, इसको देखने से वैराग्य होता है क्या?
3: बिल्कुल, वैराग्य आपत्ति विपत्ति संपत्ति नहीं, उसके बोध से होता है। ये अच्छा। आपने बहुत सूक्ष्म सवाल किया। कई बार क्या होता है, जैसे हम जान भी लें, सभी को ये पता हो जाए कि ये मार्ग, जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं एक पंक्ति कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब पर हरि रघुवीर हैं भजहु भजहि जे संत। तो उन्होंने लिख दिया कि ये सबसे ऊपर रघुवीर हैं। ये भरद्वाज जी भी इस बात को कहते हैं कि कैसे उन्होंने इस संकटपूर्ण जीवन को कैसे जिया, वो कथा मुझे कहिए। तो कहते हैं उसी का भजन संत करते हैं। तो भजन का अर्थ हम लोग राम नाम जपना समझ लेते हैं। राम नाम जपना नहीं, राम का नाम जिस नाते जपा जा रहा है उस कर्म को जीवन में अंगीकार करना, ये है भजन।
4: बहुत सुंदर।
3: ये भजन नहीं है कि आप उनके नाम को लें,
4: बल्कि
3: आप देखिए कितनी सुंदर बात है। कभी कभी कथा आती है, कई लोग कहते भी हैं कि रावण कहता है कि तामसी तन से राम का नाम लिया नहीं जाता।
4: ओहो,
3: जी, और कई बार था आती भी है, बड़ा रोचक तरीके से लोग कहते हैं कि जब मंदोदरी कहती है कि आपको तो वेश बदलना आता है, अगर सीता में इतनी ही आसक्ति आपके पास है तो क्यों नहीं राम का वेश धारण करके आप सीता के सामने जाते हैं और वो आपके साथ हो लेंगी।
4: जी, जी, जी।
3: पत्नी कह रही है।
4: हाँ, हाँ, हाँ।
3: तो वो कहता है कि मैंने ये प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही मैंने राम का वेश धारण किया मुझे पराई स्त्री माँ दिखती है।
4: ये प्रसंग सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाता है।
3: रोमांच हो रहा है।
4: पहले भी मैंने सुना है कि रावण ऐसा कहता है,
3: कहते कहते रोमांच हो गया कि अगर ऐसी स्थिति है तो सोचिए उस आत्मी का अंतःकरण, मतलब और कैसा होगा
4: कि वो उसका स्वरूप लेने भर से उसको पराई स्त्री माँ नजर आती है।
3: है। तो अगर
4: ये राम तत्व है,
3: तो ये राम तत्व है।
4: हाँ।
3: तो इस दृष्टि के साथ जब भी कोई शरीर धारण करेगा तो वो क्या भगवत्ता उससे प्रकट नहीं होगी? कौन है जो उससे विरोध कर सकता है?
4: जी, जी,
3: है ना?
4: जी, जी,
3: तो ऐसी स्थिति है। तो जो आपने कहा कि वशिष्ठ जी यही कहते हैं कि जो ये आसक्ति आपत्ति मतलब के दर्शन नहीं, इसके बोध से आपको वैराग्य होगा।
4: अच्छा, इसमें विश्वामित्र जी बीच में कहीं पर, मैं पलट रही थी इसके पन्ने, तो दिखता है कि वो सत्यता मुदिता और प्रज्ञा के विषय में भी बात करते हैं।
3: बिल्कुल।
4: तो ये क्या है और वो क्या कह रहे हैं?
3: वो कह रहे हैं कि अगर हमारे उपदेश का वास्तविक बोध हो जाए तो रामचंद्र जी सत्यता की प्राप्ति करेंगे। अब देखिए सत्यता में कहते अमृत पिए हुए पुरुष की भांति। अब इसमें इशारा क्या है? अब जैसे अमृत की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कोई अमृत है।
4: मुझे लगता है कि पहले आप ये बताएं कि उनका कथन क्या था पूरा।
3: जी, उनका कथन ये था कि जो रघुनंदन ये राम हैं, हम लोगों की भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे जो उपदेश मैं कर रहा हूं, अगर ये उन्होंने सुन लिया।
4: अच्छा,
3: है ना? तो हम लोगों की भांति मतलब जैसे विश्वामित्र जी परम पद में प्रतिष्ठित हैं या ये अपने वशिष्ठ जी परम पद में प्रतिष्ठित हैं, तो ऐसी राम की स्थिति होगी, क्योंकि जो उनकी ये दशा हुई है वो संसारियों की तरह नहीं हुई है, है ना, कि वो आसक्ति और आपत्ति से उत्पन्न हो गई हो, विपत्ति से उत्पन्न हो गई हो, ये तो बोध से उत्पन्न हुआ है। तो बोध से उत्पन्न होने के बाद अगर वो उपदेश सुन सकें तो वो फिर ऐसी स्थिति बनेगी। और उसमें कहते हैं कि अमृत पिए हुए पुरुष की भांति, यानी जिसका मृत्यु भय समाप्त हो गया। अमृत पीने का मतलब अमृत जैसी कोई चीज नहीं है कि जो पी के जिसके चित्त से मृत्यु का भय समाप्त हो गया। वो सत्यता को प्राप्त हुआ। मृत्यु का भय समाप्त कभी भी शरीर से तो नहीं होगा, क्योंकि शरीर ने जन्म लिया है तो मृत्यु तो रहेगी, लेकिन इस शरीर से अगर सत्यान्वेषण हो गया और सत्य का बोध हो गया
4: जी।
3: तो वो सत्य जो है आपको मृत्यु भय से जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म, ये जो तीन तरह की संकल्पना लेकर के हम लोग संसार में व्यवहार करते हैं, इससे पूरी तरह से मुक्त कर देगा। तो वो सत्यता, क्योंकि सत्य शरीर नहीं है, सत्य शरीर ही है जिसने शरीर को धारण कर रखा है। जैसे कहते हैं हम लोग ना कि धर्म रक्षति रक्षिता, कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो ऐसे में क्या है वो, इसका अर्थ कि अगर आपके जीवन की रक्षा हो पा रही है तो इसलिए हो पा रही है कि आपने धर्म की रक्षा जाने अनजाने में की है। तो ठीक ऐसे ही शरीरी शरीर में है, इसलिए शरीर की सारी क्रियाएं हो रही हैं, जो इसका बढ़ना है, डेवलपमेंट है, या जो साइको मोटर एक्टिविटीज हैं, जो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये हो किसकी वजह से रही है, शरीर की वजह से, उस निर्गुण निराकार की वजह से हो रही हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है वो उसकी वजह से दिखाई दे रहा है, ये आत्मतत्व है। तो कहते हैं कि ये जो जान लेगा वो अमृत पिए हुए पुरुष, यानी ऐसा पुरुष जिसको मृत्यु का भय नहीं है। और देखें इसी को हम कहते हैं अभयता। भय जितने भी हैं उस भय के पीछे आप देखेंगे तो मृत्यु ही किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगी। मृत्यु मतलब शरीर की मृत्यु ही नहीं हुई, आपके विचारों की मृत्यु, जो मान सम्मान यश जो कुछ भी आपने अपने शरीर या संसार के व्यवहार या संसार की लर्निंग से आपने सीख रखा है, उन सब में कहीं कहीं मिटने का जो भय होता है, जैसे मृत्यु शरीर के मिटने का भय है, तो ऐसे में कोई भी चीज जो आपने अर्जित की है सुख के लिए उसके मिटने का भय, तो एक प्रकार की मृत्यु ही है वो कह सकते हैं। तो वो कहते हैं क्षरण है, तो वो ऐसी स्थिति आती है उस सत्यता को जो त्रिकाल बाधित है। तो त्रिकाल बाधित कोई अगर है तो ब्रह्म रूपता है, शरीर त्रिकाल बाधित नहीं है। शरीर पर तीनों काल का असर होता है, भूत भविष्य वर्तमान का, तीनों अवस्थाओं का असर होता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का। लेकिन उस चैतन्य पर जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में बना हुआ है और तीनों अवस्थाओं से अलग है, उस पर जिसको तुरिया अवस्था कहा गया मांडुक्य उपनिषद में, तो ऐसे में उस पर कोई असर नहीं होता। तो राम को वो सत्यता का बोध होगा। उसके बाद कहते हैं मुदिता, सत्य के बिना व्यक्ति मुदित नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं ना मुदित हो गया, आनंद परमानंद स्वरूपता, तो उसका आनंद अब जाने आने वाला नहीं है क्योंकि उसने सत्य को जान लिया, तो वो मुदित हो गया। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, महर्षि पतंजलि कहते हैं ये चित्त के प्रसन्नता या उसकी पवित्रता के ये सूत्र हैं कि आप पुण्यात्मा के प्रति मुदित हो जाएं। ऐसे जो सत्य के प्राप्त करने वाले लोग हैं उनको देख करके आपके अंदर मुदित भाव हो जाए, तो यानी परम आनंद रूपता हो। और प्रज्ञा की प्राप्ति, प्रज्ञा का मतलब होता है अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपता। अब देखिए हम लोगों का जो ज्ञान है वो क्या करता है, हमको अलग करता है। परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता मतलब अलग करना, और अपरिच्छिन्नता का मतलब कि हम अलग ही नहीं है, सब मुझ में और सब में मैं हूं, ये अपरिच्छिन्नता है। तो इसको कहा गया, हमारे ऋषियों ने कहा प्रज्ञा। तो जब ये तीनों की प्राप्ति होती है, तीनों एक क्रमिक हैं कह सकते हैं, क्रमिक गति से इनकी स्थिति आपको मिलेगी। बिना सत्यानुसंधान के, बिना सत्य बोध के आप जो है मुदिता की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, और बिना मुदिता के आपको प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रज्ञा जो है वो है आपकी अपरिच्छिन्नता। जिसको फिर मैं गोस्वामी जी की पंक्ति में सहज करूं अपने श्रोताओं के लिए कि जो आदि योगी शिव हैं, क्योंकि योग ग्रंथ पर हम बात कर रहे हैं तो हम आदि योगी शिव की बात को करें, वो कहते हैं उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहिं जगत, केहि संग करहिं विरोध। वो फिर वही अपरिच्छिन्नता वाली बात आ गई कि निज प्रभु मैं, सी राम में सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरि जुगुपानी। तो वो स्थिति होती है कि राम में पूरी सृष्टि दिखाई दे, वो स्थिति आती है तब जब प्रज्ञा आपके अंदर प्रकट होता है, और प्रज्ञा आपके सत्य और मुदिता की स्थिति आने के बाद ही होता है। तो राम जी को उन्होंने कहा कि ये प्राप्त हो जाएगा, और जब ये प्राप्त हो जाएगा तो वो परम सुख को प्राप्त करेंगे, संताप शून्य हो जाएंगे, और जो शरीर इनका ये कृष्ण दिखाई दे रहा है ये पूरी तरीके से हिष्टपुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, आजकल आप देखेंगे जो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां विकसित हो रही हैं, और बहुत सारी नई नई बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो बीमारियां हैं उसमें 75% से 80% बीमारियां आपकी साइकोसोमेटिक हैं, जो मन से आती हैं, है ना। तो मन से क्यों आती हैं, क्योंकि मन की स्थिति यही तीन की नहीं है, न मन सत्य जानता है, न मन मुदित है, न मन प्रज्ञावान है, है ना। तो अब उसमें क्या हुआ, चित्त में दोष उत्पन्न हो गया। अब उस दोष का प्रभाव ये हुआ कि प्रभाव तो शरीर पर दिखेगा, तो शरीर किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो गया, कैंसर जैसी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है स्ट्रेस, तनाव, कि कोशिकाओं पर बार बार आप प्रहार कर रहे हैं, तो फिर अंत में वो अपना स्वरूप भूल जाती हैं, वो आपके जीवन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आई थी, अब वो इम्यून को ही खाने लगी हुई हैं, आपको ही मिटाने पर लगे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये स्थिति जब उनको प्राप्त होगी तो वो फिर संताप शून्य होंगे। तो आज आदमी देखे तो संताप में है। भागवत कथा में हम कहते हैं ना कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो तीन ताप जो है जिससे चित्त संताप ग्रसित है, जब तक इससे आप अपने को मुक्त नहीं करेंगे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग ही, सत्संग मतलब वही सत्य जो सत्य का अनुसंधान, जिसमें आप त्रिकाल बाधित सत्ता को जान सकें और जान करके आप फिर हमेशा अपने आनंद स्वरूप में रह सकें, और साथ ही साथ आप अपनी अपरिच्छिन्नता यानी शिवत्व का बोध कर सकते हैं। यही है सत्यम शिवम सुंदरम।
4: जी जी। तो इस कथा में हम कहाँ पहुंचे हैं कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम फिर से वैसे हो जाएंगे
3: जी,
4: अगर मैं जो कह रहा हूँ उसको वो सुने।
3: आप जो राम के शरीर की ये दशा देख रहे हैं, जिसको देख करके तो आप
4: पिता,
3: दुखी हो
4: पिता
3: रहे हैं।
4: की चिंता वो
3: जी, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि राम को अब योग की जरूरत है, और ये वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ का उन्हें जो ज्ञान देंगे उसके बाद वो इस अवस्था को प्राप्त होंगे, सत्य मुदिता और मोक्ष प्रज्ञा उनको मिलेगा। तो इससे फिर वो फिर अब उनका जो शरीर है वो हृष्ट पुष्ट हो जाएगा और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे।
4: अच्छा, इसी में आगे कहीं लोकव्यापी निर्गुण और सगुण ब्रह्म की चर्चा होती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म का बोध कैसे होता है, कैसे हो सकता है?
3: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, प्रकृति के तीन गुण हैं, क्योंकि व्यवहार तो प्रकृति के साथ प्रकृति में ही होगा, है ना। तो कहते हैं उसमें जो सत्वगुण है, उस सत्वगुण का गुण प्रकाश है। आजकल के मतलब समय में बहुत प्रचलित है, एनलाइटेंड कहते हैं कि एनलाइटेंड हैं, एनलाइटेंड गुरु हैं। अब एनलाइटेंड गुरु का मतलब समझते हैं लोग कि कोई दिव्यता उनमें आ गई, दिव्यता ने उनके पास प्रज्ञा है, वो अपरिच्छिन्नता का बोध है, वो अपने को अलग नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके अंदर परिच्छिन्न भाव नहीं है, है ना, वो श्री राममय की स्थिति में जगत को देख रहे हैं
4: जी।
3: तो कहते हैं कि सत्व गुण से युक्त होने पर जो लोक व्यापी, लोक में जो व्याप्त है निर्गुण सगुण, ये दो संप्रदाय बने
4: जी,
3: निर्गुणिया और सगुणी, सगुण वाले संप्रदाय, कुछ लोग सगुण उपासक हो गए, कुछ निर्गुण उपासक हो गए, लेकिन कहते हैं ये दो नहीं है। तो कहते हैं कि ये सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये अभेद है, लेकिन ये जानते कौन है? बुद्ध पुरुष।
4: अच्छा।
3: जी, और ये वेद कह रहा है, ये स्थिति है। तो वो कहते हैं कि जब ये तत्व चिंतन होगा तब ये भेद मिटेगा। तो जो लोक व्यापी ये सगुण निर्गुण रूप ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न जैसे वो होंगे, वैसे जो ये भेद की स्थिति है, वो जो आज जगत को देख रहे हैं, जगत का व्यवहार देख रहे हैं, जिन कारणों से उनके चित्त में संताप हुआ है या जिस पर विचार करने लगे हैं, या जो कहते हैं ये वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो वो जीवन मुक्त हो सकेंगे। और जीवन मुक्त होने के बाद अभी वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने क्रिया से अपने आप को अलग कर लिया, तब वो बोध के साथ जो है समस्त क्रियाओं को ऐसे करेंगे जैसे कीचड़ में रहने वाला कमल कीचड़ से सर्वथा मुक्त है।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ये स्थिति उनकी होगी।
4: ये बता रहे हैं विश्वामित्र जी।
3: जी।
4: दुख परंपरा के उत्पादन की बात भी इसमें की गई है। मैं चाहती हूँ इस कथा को आगे बढ़ाते हुए इस बिंदु पर आप आइएगा। तो वो भी एक जगह दिखता है कि दुख परंपरा के उत्पादन की बात दिखाई देती है। तो क्या कारण है जीवन में दुख का?
3: अब जब राम जी को ऐसी स्थिति में देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाबाहु राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो, तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर विजय पा ली है। अब देखिए, शूरवीर होने का मतलब किसी व्यक्ति को जीतना नहीं है, किसी स्थान को जीतना नहीं है। विषय जो बार बार उन विषयों को अपना समझ लेना या अपना बनाने की चेष्टा करना, ये है शत्रुता। आज देखें तो किसी प्रकार का जो विश्व में ये जो शत्रु भाव है, वो शत्रु भाव एक्चुअल में विषय रूपी विषयों को पाने की आकांक्षा से उत्पन्न हो रहा है
4: जी।
3: तो वो कहते हैं कि विषय रूपी शत्रुओं पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है। राम को उनके स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ऐसी स्थिति में क्यों हो, क्योंकि अब तो तुम ऐसी स्थिति में हो कि कोई विषय तुम्हारे आकर्षण और विकर्षण का कारण ही नहीं है। सामान्यतया देखें आप तो जो राग और वैराग्य ये दो शब्द आते हैं, ये आकर्षण और विकर्षण के संदर्भ में आते हैं, या एक दूसरे के सापेक्ष इन्हें समझा जाता है कि संसार में जिनको राग है उन्हें अपने आत्मस्वरूप से वैराग्य हो गया, वो रूप के ही राग में फंसे हुए हैं, और जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया वो संसार से राग छोड़ के वैरागी हो गए। यही दो रूप दिखाई देते हैं। ये कहते हैं ये दोनों स्थिति नहीं है, लोकव्यापी ये सगुण निर्गुण का जो ब्रह्म तत्व है उसका ये वास्तविक ज्ञान नहीं है।
4: अच्छा।
3: और यही जो है दुख की परंपरा का उत्पादक है, जो बड़ी कठिनाई से नष्ट होता है। अच्छा। इतना आसानी से नष्ट नहीं होता। इसलिए आप देखते होंगे कि आदमी जब कहीं किसी कर्म से उबता है तो किसी दूसरे कर्म का चुनाव करता है उससे अपने आप को बचाने के लिए। तो अंततः देखें तो कर्म से कर्म को काटने का प्रयास करता है, जबकि कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म अनासक्त भाव से करना है, जिसके लिए गीता भी योग शास्त्र का ग्रंथ है और वो भी कहती है। तो राम जी से ये कहा जा रहा है कि आप जो ये देख रहे हैं जगत को, ये जगत में अनासक्त व्यवहार करके आप जीवन मुक्त हो करके यहाँ सारे अपने दायित्वों का निर्वाह करें के लिए आपका यहाँ आगमन हुआ है, और प्रकृति ने जिन जिन चीजों के लिए आपको यहाँ आने का अवसर मिला है, जिसको भगवान कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना है। अब धर्म की संस्थापना के लिए कई बार लोग कहते हैं कि धर्म भी एक बंधन है, कई लोग धर्म से बंध जाते हैं और कहते हैं यही धर्म है जो मैं समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप देखें कोई भी चीज अगर अपने अस्तित्व में है तो अपने धर्म के साथ है, इसलिए है, है ना। और अगर उसके अस्तित्व को खतरा है तो आपने अधर्म का रास्ता चुन लिया है, जो राक्षस यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ तो प्रकृति का पोषण है, शोषण नहीं है। और आज हम लोगों ने क्या किया, प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया। जैसे हमारा बौद्धिक ज्ञान विकसित हुआ तो ये जो अभी हमने सत्य और मुदिता और प्रज्ञा वाली बात नहीं रही, तो परिणाम ये हुआ कि हमने समझ लिया कि अब तो प्रकृति की सारी शक्तियों के अधिपति हम हो गए, और हम उसका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले समय में वो पीढ़ियां भुगतेंगी। डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अगर आपके पूर्वजों ने प्रकृति के नियमों या प्रकृति के धर्म का पालन किया तो प्रकृति आपके जीने योग्य रही, लेकिन आप तो इतने बुद्धिमान हो गए कि आपने प्रकृति को ऐसा बना दिया कि कल आने वाली पीढ़ियां जन्म लेने के साथ ही को सांस लेने में संकट में हो। कितने मतलब बड़े मतलब राक्षस कह सकते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति तो है।
4: इन दिनों संवहनीय विकास की जो बात चल रही है
3: जी बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं विकास ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में जो आए उनको भी ये धरातल वैसा मिले जैसा आपको मिला था।
4: अच्छा, इसमें भोग के साधनों पर भी चर्चा है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है।
3: अच्छा, भोग के साधनों,
4: लेकिन इसके पहले मैं चाहती हूँ इस कथा को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लें, क्योंकि वो कथा भी हमारे जो श्रोता है उन तक पहुंचती रहे।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो विश्वामित्र जी ने फिर राम जी से कहा कि तुम्हारे जो नेत्रों में जो चंचलता दिखाई अभी दे रही है उसको त्याग कर बताओ कि मोहित क्यों हो रहे हो। क्योंकि राम जी को यहाँ ये दो लोग मतलब गुरु के रूप में हैं, एक वशिष्ठ जी और दूसरे विश्वामित्र। विश्वामित्र उन्हें कर्म शास्त्र का बोध कराने के लिए आए हैं, कर्म शास्त्र के लिए उत्प्रेरित करना है, क्योंकि कर्म शास्त्र छोड़ चुके हैं, लेकिन कर्म शास्त्र बिना तत्व ज्ञान के,
4: जो भूमिका गीता में श्री कृष्ण की है वो यहाँ विश्वामित्र की है, और जो स्थिति वहाँ अर्जुन की वो यहाँ श्री राम की हो गई
3: कह सकते हैं। तुलनात्मक रूप से सापेक्षता को समझाते हुए कह सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। हाँ। क्योंकि वहां यहाँ तो कृष्ण ही वो रूप प्रकट कर रहे हैं जो अर्जुन ने किया है वहां, है ना। तो खैर, तो ये कहता हूं कि वो कहते हैं कि त्याग कर तुम मोहित क्यों हो रहे हो, तुम्हारे इस मोह और भ्रम का क्या कारण है, ये राम जी से पूछते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि इस सांसारिक विषयक आस्था में मेरा मन बिल्कुल नहीं जाता।
4: नहीं।
3: संसार में जो आस्थावान लोग दिखाई देते हैं, जब उनको मैंने देखा और उनकी दशा देखी, तो मेरा तो उस दशा को देखने के बाद, कहते ना कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो ठोकर से गिरते नहीं है, ठोकर देख के समझ जाते हैं, है ना। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो ठोकर खा के भी नहीं संभलते, तो राम जी उस तरह के मैं देखा, और संसार में जितने भी भोग हैं ये सब के सब अस्थिर हैं, क्षणभंगुर हैं। राम जी को इसका बोध है, हम लोग इसको कहते हैं
4: बिल्कुल,
3: और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं उन्हीं भोगों के प्रति, नए नए भोगों के प्रति हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं कि अब गाड़ी थोड़ी बड़ी कर ली जाए, घर थोड़ा बड़ा बना लिया जाए। अब इसके पहले जब ये घर नहीं था तो ऐसे ही घर की कल्पना थी
4: जी।
3: और लगता था कि ये घर मिल जाता तो भगवान तेरी बड़ी कृपा होती, इसके लिए मन्नतें कर रहे थे। अब जब ये घर आ गया तो फिर ये भी छोटा पड़ने लगा, फिर और बड़े घर की कल्पना होगी। तो कहते हैं कि हम लोग भोगों की क्षणभंगुरता के बारे में बोलते हैं, क्षणभंगुरता हमको दिखती नहीं है। अगर दिखे तो बुद्ध की स्थिति, जैसे बुद्ध ने राज्य ही तो छोड़ा था
4: बिल्कुल,
3: है ना। वो जबकि जो चीज हम पाना चाहते हैं या जिसके लिए आज दुनिया लड़ रही है वो सारी चीज छोड़ के वो चले आए
4: बिल्कुल।
3: आप देखें अयोध्या को, तो अयोध्या में भी राम जी राज्य ही छोड़ के जा रहे हैं जंगल में, तनिक भी उनको राज्य में आकर्षण नहीं है। तो क्योंकि उनको इस तत्व का बोध हो चुका था कि ये सारे भोग अस्थिर हैं, इनका स्वभाव जो है वास्तविक इनका रूप है, इनकी क्षणभंगुरता है और आपत्तियों के स्वामी हैं, ये सब विपत्ति में डालते हैं। अब देख कितनी उल्टी बात है, सांसारिक दृष्टि से आप देखें तो संसार का व्यक्ति इनसे अपनी विपत्ति दूर करना चाहता है भोग के साधनों से, क्योंकि वो विपत्ति में इसलिए है कि ये साधन नहीं है उसके पास।
4: और श्री राम कह रहे हैं कि हाँ, आपत्तियों का साधन।
3: हाँ, ये कहते हैं
4: मतलब जो सांसारिक संपदाएं हैं इनका मनुष्य पर प्रभाव अच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं वो।
3: हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब पाप स्वरूप है, मतलब आपको पाप से पाप करवाएगा। अच्छा, पाप का मतलब होता है कि पाप हम किसी दूसरे के संदर्भ में करते हैं, दूसरे के संदर्भ में तो करते ही करते हैं, अपने प्रति भी तो पाप करते हैं कि हमने अपने जीवन को एक ऐसी क्रिया में लगा दिया जिस क्रिया का कोई अर्थ नहीं है। जैसे आप देखें जीवन भर जिन चीजों को हम संकलित करते हैं एक दिन उसी को छोड़ के जाते हैं, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी जीवन भर संकलन लगा हुआ और क्या क्या नहीं करता उस संकलन के लिए, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार की अज्ञानता है कि नहीं। अगर आप देखें तो जो प्रकृति है, प्रकृति ने कहा भी गया है कि आवश्यकता पूरी करने का सामर्थ्य इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब की आवश्यकता पूरी करने में पृथ्वी समर्थ है, लेकिन एक व्यक्ति की आकांक्षा पूरी करने में पूरा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा।
4: बिल्कुल, लालच को तो नहीं पूरा किया
3: नहीं जा सकता, इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, और हर आदमी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगा है जो कभी पूरी ही नहीं होती। तो ये बात कहने सुनने का नहीं है, ये बात निरंतर चिंतन का है। और राम जी ने तीर्थ यात्रा के दौरान यही चिंतन किया और देखा कि लोग बात तो वो सारे कर रहे हैं जिन बातों को हम कहते हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं जो व्यवहार कर रहे हैं उस ज्ञान की बातों से बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। तो वो उनकी स्थिति है। और कहते हैं कि मूढ़ बुद्धि लोग इस संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ। और ये बात क्या आज नहीं है समीचीन? आप देखें जिन जिन में आपने सुख देखा था, अगर वो सुख था कुछ समय के लिए था, क्षणिक था, तो फिर वो क्षणभंगुरता हुई ना। तो आपको आगे जिन जिन चीजों के न होने की वजह से आज आप दुखी हैं, तो उस दुख का भी शमन इस ज्ञान से करना था, पूर्व के अनुभव से करना था, लेकिन वो करने के बजाय आपके जीवन में वो चीजें नहीं है, उसके लिए आप परेशान और दुखी हो रहे हैं। तो ये भोगों का जो वास्तविक स्वरूप है वो राम जी ने बताया कि यहाँ पर लोग इधर उधर भटकते रह रहे हैं लोभ के कारण, जबकि सच ये है कि ये सारे जो भोग हैं ये पाप में डालते हैं, ये मनुष्य को विपत्ति में डालते हैं, और आपत्तियों का स्वामी कहा गया इन्हें, ये स्वामित्व है इनमें आपत्ति लाने का, और हम लोग आप विपत्ति मिटाने का स्वामी बना के बैठे हैं,
4: बनाकर बैठे हैं, और उसी को जुटाने में पूरा जीवन खर्च
3: लगाए हुए हैं। जी जी।
4: तो बहुत संक्षेप में एक बात आप बताएं कि चूंकि श्री राम कह रहे हैं कि जो सांसारिक संपदाएं हैं उनसे विपत्ति आती है,
3: जी जी,
4: तो संपदा को किस दृष्टि से मनुष्य देखे?
3: बिल्कुल, सांसारिक इसका अर्थ कदापि ये नहीं हुआ कि कोई ये समझ ले कि हम इसका तिरस्कार कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसके सत्य को आप जानें और अपने जीवन को जीवन मुक्त की भांति जिएं, बंधन में ना जिएं। वो कहते हैं ना कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो देखिए, तो ये जैसे नदी है, नदी का कोई मार्ग नहीं है और न उसने कोई चुनाव किया है। जैसे हमारे एक मित्र है वो नर्मदा परिक्रमा करें तो कहीं नर्मदा जी बहुत सक्रिय हैं, कहीं बहुत विशाल रूप है, और सागर में मिलके तो सागर हो जाती हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये संसार की यात्रा में आप निर्विघ्न और निश्चिंत रहें, मतलब द्वंद ना पालें, क्योंकि द्वंद पाल करके आप अपने सामर्थ्य को घटा लेंगे।
4: जी जी।
3: आपसे जो होने की संभावनाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी, और संसार की संपदाएं सदा वंचना ही करती रहती हैं। हाँ, ये राम जी कह रहे हैं कि सदा वंचना करती हैं, क्योंकि उनके वैराग्य में ऐसा उनको दिखा है। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती हैं और उनकी सगुण राशि का नाश करती हैं। अब देखिए, संसार जो है आपके सगुण को नष्ट करता है, सद्गुण का,
4: जी जी जी,
3: और तरह तरह के दुख दिया करता है, दुखों का जाल बिछा देता है, धन वैभव की चिंताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसलिए मुझे ये आनंद नहीं देते।
4: जी जी, जी। तो ये एक कारण उनके वैराग्य का है, और भी उनके मन में बहुत सी बातें हैं,
3: बहुत सारी बातें हैं जी,
4: तो वो बातें हम एक एक कर आगे सुनेंगे, क्योंकि अब इस कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है, तो इसी बिंदु पर हम ठहरते हैं और अगले अंक की प्रतीक्षा करते हैं। आपने आज बहुत ही सुंदर व्याख्या की भगवान श्री राम की वैराग्य दशा की, यही चर्चा आगे हम जारी रखेंगे अगले अंक में। आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद
3: जी। नमस्कार।
4: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज आपने भगवान श्री राम की वैराग्य दशा पर चर्चा सुनी। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं स्वर्गीय आशा भोसले जी पर केंद्रित हमारा विशेष कार्यक्रम ये दिल अभी भरा नहीं।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और आपके साथ मैं हूँ फराज। श्रोताओं, बहुत से गीत याद आ रहे हैं, बहुत से नगमे याद आ रहे हैं, भजन याद आ रहा है। तोरा मन दर्पण कह रहा है।

कई शायर और गीतकार याद आ रहे हैं, साहिल लुधियानवी, राजेंद्र कृष्ण, शैलेंद्र, शकील बदायूनी, कई संगीतकार भी याद आ रहे हैं, ओपी नैयर, आरडी बर्मन, एसजी बर्मन, खयाम, रवि, और कई फिल्में याद आ रही हैं, हावड़ा ब्रिज, नया दौर, कश्मीर की कली, मेरे सनम, उमराव जान, इजाजत मेरा।

श्रोताओं, आशा जी का जब नाम आता है तो न मालूम कितने ही गीत हमारे जहन में गूंजने लगते हैं, दिल में उतर आते हैं। चाहे वो भजन हो, रोमांटिक नगमे हों, गज़लें हों, डांस नंबर हों, कैबरे सॉन्ग्स हों, फिल्मी हों, गैर फिल्मी हों, हिंदी भाषा में हों, मराठी भाषा में हों, बंगाली में हों, किसी भी भाषा में हों, आशा जी ने इतने गीत गाए हैं, यूं आता है कि 12,000 के ऊपर नगमे उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, सोलो और ड्यूट्स। 80 साल तक, 80 ईयर्स तक फिल्मी दुनिया में और लोगों के दिलों में बने रहना कोई मजाक नहीं है दोस्तों।

आशा जी का जन्म हुआ 8 सितंबर 1933। जी हाँ, 1933 में उनका जन्म हुआ संगली में। और ये बताने की जरूरत नहीं कि उनकी बहन रहीं लता जी। आशा लता दीनानाथ मंगेशकर, जो बाद में बन गईं आशा भोसले। उनके पिता रहे पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी और माँ रहीं शेवंती दीनानाथ। घर में संगीत का माहौल था, लेकिन एक हादसा जब हुआ, जब आशा जी महज 9 साल की थीं तो उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, और वहीं से फिर शुरू हुआ दौर परेशानियों का, जिसने आशा जी का पीछा ताउम्र नहीं छोड़ा।

इसके बाद परिवार पुणे शिफ्ट हो गया कोल्हापुर से, और उसके बाद फिर मुंबई। फिर लता जी फिल्मी दुनिया में आई और उसके बाद एक संघर्ष है और फिर कामयाबी है, और उसके बाद फिर श्रोताओं एक इतिहास है। लता जी ने अपना अलग मकाम बनाया और आशा जी ने जो मकाम बनाया उससे भी हम वाकिफ हैं। आशा जी का जो पहला गीत रिकॉर्ड हुआ वो था मराठी में, जी हाँ 1943 की बात है। फिल्म थी मजहा बल और फिल्म के संगीतकार थे दत्ता दावजेकर। उसके बाद 1948 आया, फिल्म थी चुनरिया, गीत था सावन आया। ये रहा पहला हिंदी गीत आशा जी का। और पहला सोलो गीत जो आशा जी ने गाया वो थी फिल्म रात की रानी 1949 में जो रिलीज हुई।

0: उसके बाद फिर आशा जी फिल्मी दुनिया में आ गई और फिर 50 का दशक आया, फिर 60 का दशक आया और फिर हम जानते हैं कि 70, 80, 90। शुरुआती दिनों में आशा जी गा रही थीं और तमाम संगीतकार थे, नौशाद साहब हों, सी रामचंद्र जी हों, एस जी बर्मन साहब थे, शंकर जयकिशन आ गए, उसके पहले हुसनलाल भगतराम जी संगीत दे रहे थे, श्याम सुंदर जी, वो बहुत गुणी संगीतकार फिल्मी दुनिया में आ गए और वो दौर था, उभर रहे थे कई गायक, चाहे वो मेल सिंगर्स हों, मोहम्मद रफ़ी साहब हों, मुकेश जी हों, तलत साहब हों, मन्नाडे जी हों, और फिर किशोर दा भी आ गए।
1: क्या बात?

0: है लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा।
1: आशा जी 50 के दशक में नगमे गा रही थी, फिल्में उनकी आ रही थी, संगीतकार उनकी आवाज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस तरह के गीत आशा जी को नहीं मिल रहे थे जिसकी वो हकदार थी। 50 के दशक में आशा जी की कई फिल्में आ रही थी, चाहे वो वचन हो।

बाप रे बाप हो, फंटूश हो। लेकिन फिर आई नया दौर, और नया दौर में संगीत किसका था? जी हाँ, ओपी नैयर साहब का। ओपी नैयर साहब आ चुके थे। ओपी नैयर इसके पहले गीता दत्त जी की आवाज़ का इस्तेमाल करते थे या शमशाद बेगम जी की आवाज़ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर नया दौर के गीतों ने जब इतिहास रच दिया तो उसके बाद तो फिर आशा जी और ओपी नैयर साहब की ऐसी ट्यूनिंग बैठी कि फिर ये काफ़ी सालों तक दोस्तों चली। और फिर रफ़ी साहब और आशा जी गाते थे ड्यूट्स। इन दोनों ने तकरीबन 900 के आसपास ड्यूट्स गाए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितने कामयाब ये लोग रहे होंगे और लोग कितना पसंद करते होंगे।

0: जहां। और बाद में फिर आशा जी ने किशोरदा के साथ भी खूब ड्यूट्स गाए और सोलो गीत तो गाए हैं।
1: हाल कैसा है जनाब का,
2: हाय क्या ख्याल है आपका,
1: हाय तुम तो मचल गए हो।
0: अब जो 50 का दशक श्रोताओं चल रहा था तो कई एक्ट्रेस जो थीं वो नई अदाकाराएं फिल्मी दुनिया में आ रही थी, जैसे कि ये बीच की बात कर रहा हूँ 50s के में, माला सिन्हा आईं और फिर वहीदा रहमान आ गईं, वैजयंतीमाला थीं पहले से और तमाम, फिर आशा पारेख जी भी आईं और फिर बाद में 60 के दशक में सायरा बानो जी आ गईं, साधना जी आ गईं, नूतन जी थीं और भी बहुत सारी एक्ट्रेस, और फिर लता जी इनके लिए गाती थीं और सिंगर्स गाते थे, लेकिन फिर हुआ ये कि आशा जी को भी संगीतकारों ने उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया, खास करके कुछ संगीतकारों ने आशा जी की आवाज़ का बहुत इस्तेमाल किया, जिनमें सबसे पहला नाम हम जानते हैं ओपी नैयर साहब का, संगीतकार रवि ने आशा जी की आवाज़ का खूब इस्तेमाल किया, एस जी बर्मन साहब ने भी किया, एस जी बर्मन साहब ने भी आशा जी की आवाज़ का खूब इस्तेमाल किया है।

बी आर चोपड़ा साहब ने जितनी भी फिल्में बनाई ज्यादातर उनमें लता जी तो खैर गाती थी, लेकिन ये एक खास बात है जो मैं आपको बताऊं कि आशा जी की आवाज का इस्तेमाल बी आर चोपड़ा साहब ने बहुत किया है। चाहे संगीतकार कोई भी हो, उनके यहाँ संगीतकार अलग अलग रहे, इंदत्ता साहब रहे, संगीतकार रवि रहे, ओपी नैयर भी रहे, चाहे वो धर्मपुत्र फिल्म हो या गुमराह फिल्म हो या वक्त फिल्म हो, आप जब इनके नगमे सुनेंगे, आगे भी जाने ना तो फिल्म वक्त का नगमा आशा जी ने गाया है, तो आशा जी बी आर चोपड़ा साहब की यहाँ खूब नगमे गाती थी, खूब गीत गाती थी।

0: तक लता जी और रफी साहब ने साथ में काम नहीं किया। इस बीच रफी साहब के साथ अपनी आवाज मिलाई आशा जी ने, और भी सिंगर्स ने गाया, सुमन कल्याणपुर जी हैं और भी लोग थे, लेकिन आशा जी के बहुत ड्यूट्स रफी साहब के साथ इस वजह से हो गए क्योंकि ये पीक टाइम था तमाम एक्टर्स का और एक्ट्रेसेस का, और तमाम संगीतकारों ने भी इनकी आवाज का खूब इस्तेमाल किया।
1: अच्छा

0: अब हुआ ये कि जब ये दौर चल रहा था तो आशा जी इतनी बड़ी सिंगर हो गई और सब लोग उनकी आवाज का इस्तेमाल करते थे। बहुत सी फिल्में मुझे याद आ रही हैं, कश्मीर की कली का जिक्र किया, सावन की घटा एक फिल्म में मुमताज जी के लिए आशा जी ने क्या गीत गाया है, आज कोई
1: प्यार से दिल की बातें कह गया है।
0: और आदमी और इंसान फिल्म याद आ रही है, बीआर चोपड़ा साहब की जिंदगी के रंग कई रे, बहुत सारी फिल्में हैं और नगमे हैं। हम बीच बीच में सुन रहे हैं वो गीतों की झलकियां ताकि मज़ा और बरकरार रहे, क्योंकि आशा जी का जिक्र हो रहा है तो फिर उनके गीत ना हो तो कैसे मजा आएगा।
2: बस

जब आशा जी की बात चल रही है तो आशा जी ने इतने लंबे अरसे तक काम किया फिल्मी दुनिया में, 80 साल, 10 साल की उम्र से, और तो लाजमी सी बात है तमाम बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, चाहे वो B.R. चोपड़ा हों, राज खोसला हों, बिमल रॉय हों, महबूब खान हों, सबके साथ काम किया, तमाम संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें SG बर्मन साहब, खयाम साहब रहे, नौशाद साहब रहे, OP नैयर, RD बर्मन तो रहे, और शंकर जयकिशन रहे, संगीतकार रवि रहे। और यहाँ इस बात का जिक्र करते हैं खास करके SG बर्मन साहब और मदन मोहन जी। SG बर्मन साहब लता जी की आवाज़ का बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर बीच में उन्होंने आशा जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया, और सुजाता फिल्म हो, बंदनी फिल्म हो, क्या क्या नगमे हैं आशा जी के इन फिल्मों में। और मदन मोहन साहब तो लता जी की आवाज़ का इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर, लेकिन कौन भूल सकता है झुमका गिरा रे। अगर हम गहराई में जाएंगे तो बहुत सी ऐसी बातें जो पता चलती हैं, अगर हम उन नगमों को सुने आशा जी के, तो ये हमें मालूम चल जाता है कि खाली उनके फास्ट सॉन्ग या रोमांटिक नगमे या कैबरे सॉन्ग्स ही नहीं हैं, हर तरह के गीत उन्होंने बखूबी गाए हैं।

कई किस्से आशा जी शेयर करती रहीं कि किस तरह से किशोर दा के साथ वो गाना रिकॉर्ड कर रही थी और उन्हें और किशोर दा को शुरुआती दौर में रिजेक्ट कर दिया गया था और फिर किस तरह से बुरा लगा था, लेकिन फिर इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद इनका सफ़र जो है वो चलता रहा और उसके बाद क्या इन्होंने मकाम हासिल किया ये हम बखूबी जानते हैं।

अब ओपी नैया साहब के साथ आशा जी काम कर रही थी, लेकिन फिर वो किन्हीं वजहों से फिर उनके साथ उन्होंने काम कम किया। फिर आरडी बर्मन आ गया, आरडी बर्मन साहब के साथ खूब काम किया आशा जी ने। इस बीच हम ये जिक्र कर दें कि दूसरे संगीतकारों के साथ भी वो काम कर रही थी। तीसरी मंजिल को कौन भूल सकता है, 1966 की फिल्म, शम्मी कपूर साहब, आशा पारेख जी, हरे रामा हरे कृष्णा, 1971 में कारवां, अमर प्रेम, यादों की बारात, इजाजत, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। और हर तरफ आशा जी की आवाज की धूम थी। कोई भी एक्ट्रेस हो, और 70 के दशक में अलग एक्ट्रेस आ गई, परवीन बॉबी थी, जीनत अमान थी, रेखा जी थी, हेमा मालिनी जी थी। टाइम बदल रहा था और एक्ट्रेस नई आ रही थी, लेकिन आवाज वही थी आशा भोसले जी की।

उसके बाद दोस्तों खयाम साहब आते हैं और आशा जी को जिंदगी की वो फिल्म देते हैं जिसने ये साबित कर दिया कि आशा जी हर तरह के नगमे गा सकती हैं, चाहे वो भजन हो जैसा हमने जिक्र किया है पहले। गजलें जो आशा जी ने गाई उमराव जान फिल्म के लिए, शहरयार साहब ने लिखी, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, जुस्तुजू जिसकी एक एक गजल। हालांकि जानकर तो पहले ही से जानते थे कि आशा जी हर तरह के नगमे गा सकती हैं, लेकिन वो होता है ना कि जब ये गजलें आईं और लोगों के दिलों और दिमाग पर छा गईं और आज भी लोग जितनी शिद्दत से उस वक्त इन गजलों को सुनते थे आज भी सुनते हैं, तो फिर क्या कहने।

बीच में गाने बहुत से आए, बहुत सी फिल्में आई, लेकिन सबका हम जिक्र नहीं कर रहे, सबका जिक्र करना आसान नहीं है, लेकिन नगमे हम जरूर झलकियां सुन रहे हैं, तो इससे अंदाजा हो जाता है कि आशा जी का क्या कद रहा।

आशा जी के कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये बताया कि उस जमाने में बड़ा हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था लता जी के साथ, और तमाम सुमन कल्याणपुर हों या मेल सिंगर्स रफ़ी साहब हों या किशोर दा हों, मुकेश जी हों, मज़ा आता था कि एक हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था कि ये ऐसा गा रहे हैं इतने ऊंचे, इतने ऊपर जाकर, तो हम भी ऐसा गाएं। वो एक अलग ही दौर था।

हालांकि आशा जी ने बाद में भी कई फिल्में उनकी आई, चाहे वो ताल हो, रंगीला हो, दिल तो पागल है, नई हीरोइंस के लिए उन्होंने गीत गाए, और ये साबित कर दिया कि जो सफर 40 के दशक में शुरू हुआ, 50, 60, 70, आशा जी की आवाज वैसी ही रही कि कोई बिल्कुल यंग एक्ट्रेस हो। और ऐसा लगता नहीं था कि आशा जी की इतनी एज हो गई है, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई वही उम्र की कोई गायिका गा रही है। ये कमाल और कौन कर सकता था सिवाय आशा जी के।

जहां आशा जी ने पुराने संगीतकारों के साथ काम किया तो वहीं नए संगीतकारों के साथ भी खूब काम किया, चाहे वह अनु मलिक हों, जतिन ललित हों, नदीम श्रवण हों या हों ए आर रहमान।

हमने जिक्र किया आशा जी की जिंदगी में दर्द, हालांकि जो नगमे उन्होंने गाए हैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन शुरुआत से ही उनकी जिंदगी में जो दर्द रहा हम उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन 2012 में उनकी बेटी वर्षा इस दुनिया में नहीं रही और हेमंत भोसले जी उनके बेटे भी 2015 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ से वो गुजरी होंगी।

लेकिन उसके बाद भी आशा जी जिंदा दिल रही। मिलती तो लोग यही समझते कि ये युवा हैं, दर्द को छुपा लेती, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि खैर वो सबकी लाइफ में इस तरह की बातें होती हैं, कि हम उसको मैनेज कैसे करते हैं ये ज़रूरी है। और ये मैनेजमेंट आशा जी बहुत अच्छे से जानती थी। खुश मिजाजी से सबसे मिलती थी, बेहतरीन खाना बनाती थी, और लोग जब उनके घर जाते तो उनके खाने के मुरीद हो जाते हैं।

श्रोताओं, आशा जी के बारे में तो हम बात करते रहेंगे और न मालूम कितना वक्त बीत जाएगा, लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि उन्होंने खाली हिंदी गीत नहीं गाए, उन्होंने कई मराठी नगमे भी गाए। यहाँ तक कि उन्हें 1962 के लिए मराठी फिल्म मानिनी के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ मराठी फिल्में हैं जेत रे जेत, संगते आयिका, सिंहासन, सामना और बहुत सी। यही कमाल उन्होंने बंगाली गीतों में भी किया। 1958 में उन्होंने पहला बंगाली गीत रिकॉर्ड किया जिसका संगीत दिया सुधीन दास गुप्ता और विनोद चट्टोपाध्याय ने। राहुल देव बर्मन ने भी कई हिंदी गीतों को भी बांग्ला में उन्होंने परिवर्तन किया उनका, जैसे कि आराधना का गीत है गुनगुना रहे हैं भवरे, और भी बहुत से, और बहुत सी लैंग्वेजेस के लिए उन्होंने गीत गाए। विदेशों में भी उनकी आवाज की धूम रही, जैसे बॉय जॉर्ज के साथ उन्होंने गाया और उसके अलावा कई इंग्लिश सॉन्ग्स में भी उन्होंने अपनी आवाज दी। आइए सुनते हैं आशा जी की आवाज में कुछ दूसरी भाषाओं के गीत।

जहाँ आशा जी ने तमाम मेल सिंगर्स के साथ गाने गाए, वहीं कई फीमेल सिंगर्स जैसे कि गीता दत्त हों, शमशाद बेगम हों या खुद लता जी के साथ एक से बढ़कर एक गीतों को अपनी आवाज़ दी है।

अगर हम बात करें जो सम्मान उनको मिले, जो अवार्ड्स मिले, फिल्म फेयर की हम बात करें, तो फिल्म फेयर के लिए उन्हें जो अवार्ड दिए गए वो फिल्म 10 लाख के लिए गरीबों की सुनो, उसके बाद पर्दे में रहने दो फिल्म शिकार, और फिर बहुत सी फिल्में आती चली गईं, और कई फिल्मों के लिए वो नॉमिनेट भी हुई। 18 बार वो नॉमिनेट हुई और 7 बार उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया, उससे सम्मानित किया गया।

0: किसने जाना।
1: श्रोताओं, यहाँ इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि आशा जी को फिल्म रंगीला के लिए स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर नेशनल अवार्ड की बात की जाए तो 1981 में फिल्म आई उमराव जान, इसके लिए, इसके गीत के लिए, दिल चीज क्या है के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और 1987 में फिल्म आई इजाजत, इसका हम नगमा जानते हैं, मेरा कुछ सामान, इसके लिए भी उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर।

0: श्रोताओं, उसके अलावा कई अवार्ड्स से आशा जी को सम्मानित किया गया। सन 1989 में उन्हें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया। सन 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुनिया भर में उन्हें कई अवार्ड्स मिले और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और ये कहें कि उन्हें कई अवार्ड्स मिले, लेकिन जो कलाकार मानता है कि सबसे बड़ा जो उसका अवार्ड होता है, जो जिससे खुशी मिलती है कलाकार को, वो होता है लोगों का जो प्यार मिलता है, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट।
1: वो हम

आती है वो हमेशा हमेशा सदियों तक जिंदा रहता है अपने काम के जरिए। उसकी कला को पूरी दुनिया में प्यार मिलता है और ऐसी ही रही हमारी आशा जी। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस्मानी तौर पर इंसान नहीं रहता, लेकिन उसके काम के जरिए वो हमेशा हमारे बीच में रहता है। रोज ही हम आशा जी की आवाज़ सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे, एक से बढ़कर एक गीत, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। फिल्म मेरे सनम में एक गीत उन्होंने गाया है, वैसे तो कई गीत हैं, जाइए आप कहाँ जाएंगे, उसमें एक लाइन है, दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज़ चली जाएगी।

यकीनन आशा जी की आवाज़ दूर तक हमारे साथ रहेगी, जो हमारे दिलों पर हमेशा राज करती रहीं, जिनकी आवाज़ से हमारी सुबह होती रही, शाम होती रही। ऐसी महान गायिका और बेहतरीन इंसान आशा जी को हम एक बार फिर से नमन करते हैं। और एक गीत जो बड़ा मशहूर है फिल्म हम दोनों का, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, जिसमें आशा जी ने कहा था, अगर मैं रुक गई अभी तो जा ना पाऊंगी कभी, लेकिन फिर भी ये दिल है हमेशा यही कहता है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मेरा नाम है इतिहास और मैं उन व्यक्तित्वों को कभी भुलाई नहीं भूल पाता जिन्होंने गुलामी के दौर में यह विश्वास हमेशा बनाए रखा कि हम हमेशा गुलाम नहीं रहेंगे और जो सोचा वो कर भी दिखाया।
1: ये तारीख भी सभी श्रोताओं का स्वागत करती है। मैंने हमेशा उन यादों को तारीख के साथ इतिहास के पन्नों में उतारा है जो ये समझकर शहीद हुए थे कि ईश्वर ने हमें केवल देश को आजाद करने की ही जिम्मेदारी दी है।
0: तारीख, आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी युग की प्रथम शहीद महिला की, जो मुक्ति संग्राम में आत्मविसर्जन के लिए हमेशा भयानक विष पोटेशियम साइनाइड लेकर के साथ चलती थी।
1: जी हाँ इतिहास, हम बात कर रहे हैं प्रीति लता वादेदार की।
0: आजादी की लड़ाई के इतिहास में प्रथम शहीद महिला के रूप में गोलपांडा चटगांव की बेटी प्रीति लता वातेदार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। 5 मई सन 1911 को गोलपांडा चटगांव में जन्मी प्रीति लता के पिता जगबंधु वातेदार चटगांव म्युनिसिपैलिटी में हेड क्लर्क थे। 1921 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। प्रीति लता की माता प्रतिभा भी देशभक्त और शिक्षा प्रेमी थी। बचपन से ही प्रीति लता में देश प्रेम की भावना बलवती हो उठी। उनके पिता कहते थे, मेरी यह बिटिया एक दिन चटगांव की सरोजनी नायडू बनेगी, और उन्होंने कर भी दिखाया।
1: किंतु जलियांवाला बाग की कहानी सुनकर प्रीति लता के मन में भी बंगाल के अन्य युवाओं की तरह ये भावना घर कर गई थी कि सशस्त्र संग्राम ही स्वाधीनता प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए जब 1928 में प्रीति लता ने प्रवेशिका परीक्षा पास कर ढाका के ईडन कॉलेज में प्रवेश लिया तो बंगाल के क्रांतिकारी दल श्री संघ की नेत्री लीला राय के दल में शामिल हो गई बिना किसी भय के और कहा,

0: प्रीति लता के साथ उसकी प्रिय सहेली कल्पना दत्त भी कलकत्ता से चटगांव आकर के महिला सम्मेलन में शामिल हो गई। उन दिनों चटगांव क्रांतिकारी दल का संचालन महानायक मास्टर दा यानी सूर्य सेन कर रहे थे। प्रीति लता और उसकी सहेली की दिली इच्छा उनके दल में शामिल होने की थी, पर उस समय क्रांतिकारियों के दल में महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता था, अतः उनके प्रयत्न सफल नहीं हो पाए। इसी बीच प्रीति लता ने ढाका विश्वविद्यालय से आईए पास करके कलकत्ता के बैथुन कॉलेज में बीए में प्रवेश ले लिया।
1: ठीक उसी समय 18 अप्रैल 1930 की रात इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने जिले के सभी शस्त्रागारों पर कब्जा कर मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में भारत की प्रथम गणतांत्रिक सरकार की घोषणा कर दी और सभी नर नारियों छात्र छात्राओं का देश की आजादी के लिए काम करने का आह्वान किया।

0: इसके बाद की घटनाओं ने युवक युवतियों को गहरे से प्रभावित किया। इस समय प्रीति लता और कल्पना दत्त का प्रभावित होना भी स्वाभाविक ही था। जलालाबाद का पहाड़ युद्ध, अमरेंद्र के आत्म उत्सर्ग, कालारपुर के खंड युद्ध, चंदन नगर की लड़ाई, ढाका में लोमेन की हत्या, चांदपुर में तारणी मुखर्जी हत्याकांड आदि घटनाओं ने उनके मन में भी क्रांतिकारियों के गोरिल्ला युद्ध का हिस्सा बनने की ललक तीव्र हो उठी।
1: उस समय चटगांव के क्रांतिकारी दलों के स्थानीय छात्र नेता मनोरंजन राय कलकत्ता में थे। उन्हें कलकत्ता से काफी मात्रा में एसिड चटगांव पहुंचाने का काम सौंपा गया था। इस काम के लिए उन्हें लड़कियों की जरूरत थी, क्योंकि खुफिया पुलिस पुरुषों पर नजर रखती थी, लड़कियों पर नहीं। प्रीति लता और कल्पना दत्त ने इस अवसर को भुना लिया और उनके दल में शामिल हो गईं। अब उन्हें मातृभूमि के लिए काम करने का रास्ता मिल गया था।
0: इसी दौरान प्रीति लता की भेंट क्रांतिकारियों की मददगार गुनुबुआ से हुई, जिनकी सहायता से उसकी भेंट चटगांव में क्रांतिकारी और मृत्यु दंड से दंडित रामकृष्ण विश्वास से जेल में हुई। रामकृष्ण विश्वास को 4 अगस्त 1931 को अलीपुर जेल में फांसी दी गई। फांसी से पहले 40 बार प्रीति लता और उनकी मुलाकात हुई थी। विश्वास ने प्रीति लता की क्षमता पहचान कर उससे कहा था, जितनी जल्दी हो सके मृत्यु शपथ लेकर के किसी काम में लग जाओ। और प्रीति लता ने प्रतिउत्तर में कहा था, मैं आज ही आपकी शपथ लेकर कहती हूँ, मैं काम करते करते अपने कार्य क्षेत्र में ही अपने आप को उत्सर्ग कर दूंगी। क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते।

0: सन 1931 में ही प्रीतिलता और कल्पना दत्त को मास्टर दा, निर्मल दा, तारकेश्वर दस्तीदार, शैलेश्वर चक्रवर्ती और काली किंकर के दल में शामिल कर लिया गया। इसी वर्ष बीए पास करने के बाद 1932 में प्रीतिलता चटगांव के नंदन कानन उच्च बालिका विद्यालय में प्रधान अध्यापिका हो गई। साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती रही। शीघ्र ही उसे सशस्त्र संग्राम का अनुभव भी मिल गया, जिसमें कैप्टन कैमरून मारा गया। साथ ही भारी गोलाबारी के दौरान प्रीतिलता के साथ ही निर्मलदा और अपूर्व सेन शहीद हो गए।
1: सन 1932 की जुलाई में उन्हें यह खबर मिली कि चटगांव के सभी उच्च अधिकारी यूरोपियन क्लब में इकट्ठे होकर के मदिरा पी रहे हैं और नशे में नाच रहे हैं। बस फिर क्या था, योजना बनाई गई कि सभी को वहीं ढेर कर दिया जाए। क्रांतिकारी शैलेश्वर चक्रवर्ती के नेतृत्व में 10 अगस्त 1932 को आक्रमण की योजना बनी, पर वह सफल नहीं हो पाई। शैलेश्वर ने असफल होने पर विष खाकर के आत्मसर्ग कर लिया।
0: आखिर इस योजना को सफल बनाने का दायित्व प्रीतिलता के नेतृत्व में महिला प्रभाग को सौंपा गया। 24 सितंबर 1932 को आक्रमण का दिन निश्चित हुआ। प्रीतिलता के नेतृत्व में आक्रमण सफल हुआ। सारा इलाका घायलों की चीख पुकार से दहल उठा। गोलाबारी में प्रीतिलता भी घायल हुई थी, किंतु उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए अपने सभी साथियों को निश्चित स्थान पर मिलने का कह जाने का आदेश दे दिया। घायल प्रीतिलता के साथ केवल कालीदा थे। 500 गज चलने के बाद प्रीतिलता की हिम्मत जवाब दे गई।
1: तब उन्होंने कालीदा से कहा कि इससे पहले कि अंग्रेज सिपाही आ पहुंचे, आप अपना साइनाइड मेरे मुंह में डाल दीजिए। और वे बेहोश होकर के गिर पड़ी। कालीदा ने प्रीतिलता की आज्ञा के अनुसार साइनाइड उसके मुंह में डाल दिया और प्रीतिलता ने शपथ के अनुसार आत्म आहुति दे दी, जैसे कह रही हो, विदा करो माँ, अब तो हम जाते हैं।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत सुनिए, गर्मी के मौसम में अपने पेट का ख्याल कैसे रखें।
2: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। नमस्कार, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं कहते हैं कि अगर आप किसी पेट को नहीं पालते हैं या किसी जानवर को नहीं पालते हैं तो आपके इमोशन का एक हिस्सा अनछुआ रह जाता है। हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि अगर आप किसी पेट को, पालतू जानवर को घर में रखते हैं तो इससे भाग्य और समृद्धि आती है। अगर वास्तुशास्त्र की बात करें तो कहा जाता है आपके घर में पेट है तो उससे पूरा एनवायरनमेंट, पूरी हवा ही बदल जाती है। लेकिन इन सबसे परे जो आपका प्यार है आपके पेट के लिए, अनकंडीशनल, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गर्मियों में पेट की, पालतू जानवर की देखभाल कैसे की जाए, किस तरह की बीमारियां हैं जिनकी जड़ में वो आ सकते हैं, लेकिन आपके पास सलूशन क्या है वो हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर नारद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सो मच मैडम।
2: सबसे पहले हम आपके बारे में और आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे।
3: मैं डॉक्टर अंकुर नारद हूँ। मैं BBSc NAH, MVSc वेटनरी पैथोलॉजी एंड PhD वेटनरी पैथोलॉजी में किया मैंने, फ्रॉम वेटनरी कॉलेज महू, NDVSU।

0: सबको इस मौसम में अलग सी बेचैनी रहती है, हाई गर्मी, हाई गर्मी मची रहती है हर तरफ। तो आज हम जानते हैं मिलकर के कि कैसे हम और पेट्स के लिए अब गर्मी के मौसम को कैसे आनंदमय बना सकते हैं। तो पहला ये रहेगा कि पानी की कमी ना होने दें हमारे पेट्स में, क्योंकि गर्मी में सबको प्यास लगती है, गला सबका सूखता है।
1: जी
0: तो इसीलिए कि पेट्स में भी ऐसा ही होता है, डॉग्स हमारे दिन भर पैंटिंग करते रहते हैं, अपनी जबान को बाहर निकाल के बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, तो उसके द्वारा भी उनको गर्मी लगती है। और साथ ही साथ उनके पॉज, जो पंजों के बीच में एरिया है सॉफ्ट सा, उस जगह पे भी काफ़ी ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जहाँ से कि वो अपने स्वेट का यानी पसीने का स्पेल करते हैं बॉडी से, और इस द्वारा उनको गर्मी से अपना टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल और मेंटेन कर पाते हैं। तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए कि जैसे कि हम रूम में पानी की अवेलेबिलिटी रखें उनके लिए, जब भी उनको पानी पीना हो एक बढ़िया फ्रेश बाउल वाटर का उनके लिए रेडी रहे। इवन यही चीज़ हम घर के बाहर भी पेट्स के लिए कर सकते हैं, जो घर के बाहर स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, हमारी गौ माता हैं, जिनको हम हमेशा रोटी तो खिलाते थे
1: जी,
0: लेकिन पेट्स के पानी के लिए या उनके पानी के लिए बाउल नहीं रखते
1: जी।
0: तो इसीलिए हमको पानी की व्यवस्था जरूरी है गर्मी में। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट, पानी की व्यवस्था वहां पर बनाई जाए।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही में हमको उन्हें ठंडी और कंफर्टेबल जगह देनी चाहिए, जिसे हमको भी पेड़ की छाया पसंद है, कहीं शेड पसंद है, या एसी ही क्यों ना पसंद हो, वैसे ही हमारे पेट्स को आजकल पसंद आने लगा है एसी। काफी सारे पेट पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमारा डॉग साहब खड़ा हो जाता है एसी की तरफ ऐसे आंख करके और कहता है कि इसको ऑन करिए, और ऑन करने के बाद ही वो ऐसी चैन की नींद में सोता है कि सुबह 7 बजे उठता है हमारे बाद। तो कई बार एसी डॉग्स को आजकल एक बेसिक मैंडेटरी हो गया है उनकी लाइफस्टाइल से कि भाई एसी चलेगा तभी नींद आएगी। और ऐसे ही बेचारे हमारे बाहर जो आवारा पशु हैं, हमारी गौ माता हैं, हमारे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, चिड़ियां हैं, उनके लिए भी क्यों ना हम कहीं शेडी प्लेस या हरे पर्दे, हरी चादर उनके लिए लगा दें, जिसमें वो आराम से कुछ देर दोपहर का टाइम 12 से 4 वहां पे गुजार सकें। अब हमें दूसरी एक और चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बाहर जाने का समय, हम लोग पहले पेट्स को कोशिश करते हैं जैसे छोटी स्टेज में, पपी स्टेज में, छोटे छोटे श्वानों को बार बार यूरिन और पॉटी कराने के लिए हम उनको बाहर ले जाते हैं
1: जी।
0: अब इस मौसम में बार बार बाहर ले जाना तो मुश्किल है, क्योंकि उनके छोटे छोटे पैर होते हैं, पॉज का साइज भी छोटा होता है, प्लस उनके पॉज इतने हार्ड नहीं होते नीचे से जैसे कि बड़े डॉग के होते हैं, तो उनके सॉफ्ट रहते हैं, तो उसके कारण उनको सनबर्न्स हो सकते हैं
1: अच्छा
0: स्किन में। और दूसरी चीज़ कि वो इतना हाई टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड्स को एकदम से तपती हुई सड़क पे हम डामर की उनको ले जाएं घुमाने के लिए वॉक पे, वो भी थोड़ी दूर, क्योंकि आजकल क्लोज सोसाइटी का कैंपस है तो सभी लोग चाहते हैं कि बाहर रोड के साइड में कहीं फुटपाथ के आसपास या डिवाइडर या खाली जगह पे ग्राउंड में, जहाँ पे लोग यूरिन और पॉटी के लिए ज़्यादातर डॉग्स को ले जाना पसंद करते हैं, सोसाइटी में तो अलाउड नहीं है आजकल, तो वहाँ पे लोग ले जाते हैं। तो वहां पे भी यही होता है कि इतना लंबा रन लेकर के जाना, दिन में 4 बार या सुबह एक बार ले गए और फिर उसके बाद दोपहर में, फिर शाम का, फिर रात का, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता गर्मियों के मौसम में। कि दोपहर का और सुबह वाला तो फिर भी 6-7 बजे का तो ठीक है, बट 10-12 बजे 11 बजे वाला जो एक राउंड है उसको हम थोड़ा चाहें तो डिले कर सकते हैं, शाम के 4 या 5 के बाद उसको निकालें, और अपने घर में ही कहीं प्रोविजन बनाएं, जैसे कि आगे वरांडे में या कोई कॉरिडोर हो वहां पे, कि वहां पे ही वो यूरिन और पॉटी करने के लिए कुछ समय के लिए व्यवस्था बन जाए।
1: अच्छा सर, मैं यहाँ एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि यूरिन और पॉटी के लिए हम एक ऐसा स्थान बनाए, तो जिसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्या हम ऐसे एनिमल को भी सिखा सकते हैं?
0: हाँ मैडम बिल्कुल, यूरिन और पॉटी की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे आजकल गैजेट्स आ गए हैं।
1: अच्छा,
0: गैजेट्स का मतलब यह है कि आजकल काफी सारे ट्रीट्स आ गई हैं।
1: अच्छा,
0: कि आप अपने पेट को ट्रीट्स दे करके उनको सिखा सकते हैं कोई भी चीज, कोई भी कमांड आप उनको सिखा सकते हैं, जैसे कि आप सिट, मूव, हैंडशेक, रोल डाउन, स्लीप, बार्क, चुप हो जाना, शांत हो जाना, साइलेंट, ऐसे छोटे छोटे कमांड्स हैं। साथ साथ में हम उसको यूरिन और पॉटी के लिए भी बोल सकते हैं गो एंड टेक।
1: हाँ।
0: तो हम जाके वहां पर के उस जगह पे पर्टिकुलर साइट पे उनकी, वैसे भी एक कई बार डॉग्स की एक आदत होती है टेरिटरी मार्किंग की, कि वो अपनी एरिया को पहचानते हैं और अपनी एरिया की रोज जाके रक्षा करके आते हैं सीमाओं की, तो वो उसको चेक करने जाते हैं बाउंड्रीज को अपनी।
1: अच्छा।
0: कि मेरे घर की, मेरी गली में कोई नया तो नहीं मेहमान आया है, तो उसको वहां तक, वो उसको एक राउंड फिक्स होता है कि मेरे को उस टेरिटरी के उस लाइन के उस छोर तक मुझे घुमा के ही लाना है, वो मेरा एंड पॉइंट है, वहां तक मैं जाऊंगा, देख के आऊंगा। तो उसी तरह से हमारे पेट्स का ऐसे ही से मूड होता है कि हाँ भाई वहां तक जाना ही है, तो रोज का एक राउंड होता है, तो वो उस जगह पे एक पर्टिकुलर स्पॉट तय करके आते हैं कि हम जाएंगे तो गाड़ी के टायर हुए या कोई कार खड़ी नहीं है तो वहां पेड़ है, ट्री गार्ड
1: है, दीवार
0: है और नालियां हैं या रोड के एक छोटा सा कॉर्नर जो होता है उस जगह है, तो एक सेट पॉइंट होते हैं उनके कि मैं इस जगह पे जाके जरूर यूरिनेट या पॉटी करके आता हूँ, और या तो फिर कोई दूसरा डॉग की स्मेल करके उस जगह पर, यदि वहां पे कोई दूसरा डॉग करके गया है उसकी स्मेल मिटाने के लिए ही अपने वहां पे यूरिन करके आते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसी कारण से हम उनकी ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं पॉटी ट्रेनिंग आजकल डॉग्स में, उसके लिए स्प्रेज अवेलेबल है, पेट पॉट स्प्रे, यूरिन डिस्ट्रॉयर स्प्रे, यदि हम चाहते हैं कि वो सामने वाले के घर के दीवार पे ना करे तो हम अपने साथ वो स्प्रे लेकर के जा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: वो स्प्रे हम उसके वहां उस जगह पे कर देंगे तो वहां पे वो यूरिन नहीं करेगा, वो अच्छा। दूसरी जगह जाके करेगा। और वैसे पेट पॉट स्प्रे है, ये पेट पॉट स्प्रे जो बना हुआ है ये इसलिए बना है कि आप अपने पेट को यहाँ पॉटी करवाना चाहते हैं, ऐसे ही हम हमारे चाहते हैं कि हमारे पेट्स हमारा टॉयलेट यूज करना स्टार्ट कर ले यदि घर में है तो। काफी सारे डॉग्स हैं जो घर में टॉयलेट को यूज कर लेते हैं, टॉयलेट का यूज करने का मतलब कि वो घर में जो पास में टॉयलेट के आसपास कोई नीचे ड्रेनेज सिस्टम नाली बनी होती है उसी में जाके यूरिन करके वापिस आ जाते हैं। कई बार घरों में दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, चाइल्ड होते नहीं है, उनकी मदर होती है, ओल्ड एज होते हैं या सर्वेंट्स होते हैं कई बार, या डॉग पेरेंट्स को, बेसिकली पेट पेरेंट्स को कहीं जाना होता है तो वो अपने पेट को कहीं छोड़ के जाने चाहते हैं 8 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, तो पूछते हैं कि डॉग साहब क्या हम इसको अकेला छोड़ सकते हैं, हम बाकी कैमरे वगैरह लगा के जाएंगे, कुछ होगी तो हम तुरंत आ जाएंगे या हमारे पड़ोसी को हम भूल के जाएंगे देख ले। लेकिन क्या होता है, डॉग का मेन उद्देश्य जो जीने का है वो यही है कि खाओ और सो, क्योंकि डॉग्स आर नॉट प्रोडक्टिव एनिमल्स। आप डॉग को दूध धोने के लिए नहीं पालते हैं, डॉग को आप अपने एक सोशलाइजेशन, आजकल तो स्टेटस भी हो गया है। स्टेटस ऐसे कि पहचान हो गई है कॉलोनी में लोगों की कि भाई उनके यहाँ 2 बड़े बड़े डॉग्स हैं, उनका घर 4 कुत्ते वाले भाई साहब,
1: अच्छा
0: 2 कैट वाली मैडम,
1: हाँ हाँ।
0: ऐसे करके भी जाना जाता है। इवन आजकल तो मैंने ये भी देखा है मैडम, एक नया ट्रेंड है पेट लवर्स का कि उनकी सगाई की अंगूठी भी वो पेट के थ्रू आजकल स्टेज पे ला रहे हैं।
1: अच्छा,
0: ट्रेंड हो गया है कि उसके गले में वो छोटी सी बास्केट बांधी हुई है और वो स्टेज तक जा रहा है बढ़िया, और वहां पे वो दूल्हे और दुल्हन को, कपल्स को रिंग दे रहा है उनकी एंगेजमेंट पे। तो आजकल का स्टेटस सिंबल बहुत डिफरेंस है, सोसाइटी बहुत अच्छे से इन सब चीजों का एडॉप्ट कर चुकी है, और आजकल दोनों तरह के लोग हैं, कुछ पसंद भी करते हैं कुछ ना भी पसंद करते हैं, बट पसंद करने वालों की संख्या ना पसंद वालों से ज्यादा है।
1: सर, अब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अभी चल रहा है गर्मियों का मौसम, तो हम अपने पेट की देखभाल कैसे करें?
0: सबसे बड़ी मैडम पेट की सब खतरनाक चीज यदि अब इस समय है
1: हाँ।
0: तो वो है ग्रूमिंग एंड केयर।

0: पैरासाइट्स का भी खतरा रहता है।
1: अच्छा।
0: जिससे कि टिक्स, फ्लीज, माइट्स, इनका भी खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो फर है वो उनका प्रोटेक्टिव कवरिंग है।
1: ओके।
0: वो उनको गर्मी, ठंडी, बारिश

0: टिक्स फ्लीज टोल डस्ट सबसे बचाता है, और हमने उसको करा दिया जीरो, तो अब प्रोटेक्टिव तो बची नहीं, तो वो बेचारे पूरे एक्सपोज हो जाते हैं सारी प्रॉब्लम्स के बाद। हफ्ते में एक से दो बार बात देना पेट्स को जरूरी है, और साथ में उसको कॉम्बिंग करना जरूरी है, जिससे कि उसकी नॉर्मल हेयर फॉल जो शेडिंग हो रही है हेयर्स की वो रूटीनली शेडिंग हो जाए और नए हेयर्स ग्रो कर सके, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, टिक्स फ्लीज का पता चले। यदि टिक्स फ्लीज है बॉडी में तो उसके लिए आप स्पॉट ऑन्स अवेलेबल है, मार्केट में स्प्रेज अवेलेबल है, टिक कॉलर्स तक आ गई हैं जिनके अंदर दवाइयां डली हुई, आप बस कॉलर पहना दीजिए और पेट को घूमने दीजिए, वो दिन भर उसके बॉडी में खेलता रहेगा, उसमें से जो पाउडर है वो उसकी बॉडी पे स्प्रिंकल होता रहेगा और कोई भी टिक उस पर अटैच नहीं हो पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी एक चैलेंजेस वाली बात है कि खाना नहीं खाते पेट्स।
1: अच्छा,
0: कूलिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको ठंडा खाना पसंद हो जाता है, हर पेट आइसक्रीम खाना चाहता है। कई बार तो हमने ये तक देखा है कि सर बिना आइसक्रीम के तो ये पसंद ही नहीं करता, रोज ऐसे देखता है कि आज कौन सी आइसक्रीम लाए, आज कुल्फी है तो कल शायद वेनीला और उसके बाद बटर स्कॉच और मैंगो फ्लेवर इसकी फेवरेट है, मैंने तो ये भी सुन चुका। हमको क्या करना चाहिए इस समय कि हम उनको ठंडा पानी दे दें पीने के लिए, कुछ आइस क्यूब्स उनके पानी में डाल दें जिससे कि उनका एंटरटेनमेंट होता रहे, आइस क्यूब्स इधर से उधर फिसलते हैं उनके कटोरी में और वो उसको पकड़ने की बार बार कोशिश करते हैं। आपने बहुत ध्यान दिया होगा, एक डॉग पानी पीता है तो वो पानी को चाटता है, लैप करता है, और एक गाय पानी पीती है तो वो पानी को सक करती है स्ट्रॉ की तरह।
1: अच्छा,
0: आपने दोनों की अलग अलग पानी पीने की विधि देखी होगी, कभी गाय को पानी पिलाने देखा होगा और आपने डॉग को पानी पीते हुए देखा होगा।
1: हाँ।
0: तो डॉग जो है वो पानी को लैप करता है।
1: अच्छा,
0: उसका पानी पीने का बर्तन, उसका पानी पीने का तरीका अलग है, और गाय का पानी पीने का बर्तन और उसका पानी पीने का तरीका अलग।
1: तो क्या हमको दोनों के बर्तन भी अलग अलग
0: अलग अलग? बिल्कुल यस, गाय को एक ऐसा टैंक या डीप ड्रम टाइप की चीज चाहिए जिससे कि वो उसमें क्वांटिटी से सक कर सके, और डॉग के लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए।
1: अच्छा,
0: मतलब परात जैसा बात या बाउल जिसमें वो आराम से उसके टंग को मूव करके लैप करके कैच कर सके। डॉग को पानी सक करते नहीं बनता।
1: अच्छा,
0: डॉग लैप करता है।
1: ओके,
0: और हम उसके साथ साथ उनके लिए फूड जो है वो हम ठंडा करके दे सकते हैं।
1: ये तो पेट एनिमल की बात हुई, लेकिन जो हमारे घर के बाहर एनिमल है उनको हम किस तरह का खाना दे सकते हैं?
0: उनको, उनके लिए आप घर में खुद एक आइसक्रीम ऐसे तैयार कर सकते हैं जैसे कि तरबूज के आइस क्यूब्स। आप तरबूज के आइस बर्फ में जमा के थोड़ा सा तरबूज के बीजे निकालने पड़ेंगे, सीडलेस करना पड़ेगा उसको, उसके आइस क्यूब्स बना सकते हैं। खीरा बहुत अच्छा है, आप बाहर के कोई डॉग है तो उसको थोड़ा दही दे सकते हैं, दही चावल,
1: दही खा सकते हैं।
0: बिल्कुल मैडम, दही खा सकते हैं डॉग्स में। पहले तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले पूरा डॉग्स अपना जीवन दूध रोटी पे ही व्यापन कर लेते थे। अब ये नए चलन में है कि भाई पेडिग्री खिलाई जाए, ट्रीट लाई जाए, बोन लाई जाए।
1: ये तो अपने पेट एनिमल को हम खिला सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग को तो नहीं।
0: स्ट्रीट डॉग को भी खिला रहे हैं। बहुत सारे पेट लवर्स हैं जो घर में पेट नहीं रख सकते, लेकिन घर के बाहर जितने भी पेट्स हैं उनके लिए बहुत 100 रुपए किलो में आजकल पेट फूड अवेलेबल है, 100 रुपए किलो।
1: अच्छा,
0: एक बाउल सुबह एक बाउल शाम, 100 से 150 ग्राम आप सुबह शाम उसको दे रहे हैं, वो पेट की पूर्ति हो जाती है, बाकी दिन भर वो इधर उधर से रोटी और जो उसको मिलता है सामग्री वो अपना उसमें दिन गुजारा कर लेता।
1: इन दिनों किस तरह की बीमारियां और ऐसी कौन सी कॉमन बीमारियां होती हैं जिनकी चपेट में जो हमारे एनिमल हैं वो आते हैं, चाहे हमारे पेट हो या हमारी गाय हो, बिल्लियां हो?
0: जैसे ही हम जानते हैं कि हमको ही लू लगती है, ऐसे ही हमारे पेट को भी लू लगती है।
1: अच्छा
0: जी, जैसे लू लगना यानी गरम तपा, नौ तपा जब हमारे चालू होते हैं तो उसमें जो गरम हवाएं चलती हैं हीट वेव्स, उसके द्वारा उसकी चपेट में हम आ जाते हैं और हमारी बॉडी में हाइपरथर्मिया हो जाता है।
1: अच्छा।
0: हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, तब हम लोग ठंडे वस्त्र मतलब एक टॉवल से अपने लू उतारने का जो प्रक्रिया होती है पुराने घरों में वो करते हैं, पानी में गीला करके। कई बार घर में पना बनाया जाता है, पना पिलाया जाता है, नींबू पानी दिया जाता है, इलेक्ट्रोल्स दिए जाते हैं। ऐसे ही पेट के लिए भी इलेक्ट्रोल्स आजकल अवेलेबल है, उनमें 500 ml से 1 लीटर में आप घोल करके वो फ्लेवर्ड होते हैं, तो आप घर का पेट हो या बाहर का उसको वो दे सकते हैं।
1: अच्छा।
0: साथ ही साथ गर्मियों की चपेट में अपने पेट्स को बचाने के लिए आप उन पे गीली टॉवल लगा सकते हैं, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। जो हमारे पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, वो भी अपने फॉगिंग सिस्टम आजकल अवेलेबल है, उसमें कुछ नहीं है, कुछ सेट पर्टिकुलर टाइम में फॉग्स स्प्रे होते रहते हैं, फॉग यानी पानी के फुहारा, वो पानी का फुहारा वो बार बार स्प्रे करते रहते हैं जिससे कि वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ऐसे ही घर के बाहर की यदि कोई गाय है तो उसके लिए हमको बड़े पेड़ के नीचे सुविधाजनक स्थिति बना देके, वहां हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हो, एनिमल होगा तो हम उस पर पानी डाल देते हैं और बोलते हैं कि ये हमारी जगह, यहाँ से हटो, यहाँ हम कार खड़ी करेंगे ठंडी, तो वो एनिमल कहाँ धूप में बैठेगा। ये गलत है। आप अपनी कार अपने घर के अंदर रखें या उसके लिए कहीं व्यवस्था बनाएं, बट हमारे एनिमल के लिए जो पेड़ वाली जगह है उसके लिए दिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि उस एनिमल को बैठने के लिए भी तो कोई जगह बचे। वो बेचारे ना रोड पे रह सकते हैं, ना घर के सामने खड़े हो सकते हैं, पशुपालक है उनने उनको आवारा कर दिया होता है, या वो कहीं एक्सीडेंट में बेचारे थोड़े से टूट फूट जाते हैं, उनके हाथ पांव फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो वो बेचारे पूरे कॉलोनी में पूरे शहरों में मंडराते रहते हैं। शहर से बाहर जाते हैं तो हाईवेज में एक्सीडेंट हो जाती है, बड़ी बड़ी बसें आजकल जो बहुत हाई स्पीड में चल रही हैं,
1: एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है।
0: स्वाभाविक है। जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए हमको इस समय थोड़ी सी जगह अपना दरिया दिल बनाना पड़ेगा और उनको थोड़ी सी जगह देनी चाहिए। बेचारों को छाव में यदि जगह मिल जाती है तो वो वहां अपनी दोपहर तक काट लेते हैं, फिर शाम और रात में वो अपने फिर खाने पर निकल जाते हैं।
1: अभी बात हमने की हीट वेव्स की, तो यदि ये हीट वेव्स होती है और इस समय हमारे जो एनिमल हैं उनको लू लगती है, तो वो कौन से लक्षण होते हैं और उससे बचाव कैसे किया जाए?
0: उसमें लक्षण की बात तो मैं बताऊंगा मैडम, कि उसमें सबसे ज्यादा आंख पे दिखता है कि आंखें लाल हो जाती हैं।
1: अच्छा।
0: नाक के पास सूख जाती है, जो उनके नाक के नॉस्ट्रल्स होते हैं, नथुने बोलते हैं जिनको, वो एकदम ड्राई हो जाते हैं वो। अच्छा। जबकि वेट रहने चाहिए।
1: अच्छा।
0: जवान हल्की सी सफेद पड़ने लगती है, कान एकदम गर्म हो जाते हैं, पंजे गर्म हो जाते हैं, इवन उनका पेट एब्डोमिन जो है वो तक गर्म हो जाता है।
1: तो ये सेम लक्षण हमारे मतलब गायों
0: को भी, हम लोग हमारी गायों को भी प्यार करने जाएंगे तो हम कभी हमारी गाय को गले के पास प्यार करें, उसके थन के पास प्यार करें, कभी हम उसके चेस्ट के पास नीचे हाथ लगा के देखें और कानों को हम छू के देखें, तो हमको उसमें भी समझ में आएगा कि उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है।
1: अच्छा।
0: और हमारी गाय जो नथुने हैं, जो उसके नॉस्ट्रिल्स हैं सामने, मजल है उसका, वो भी ड्राई मिलता है।
1: अच्छा।
0: तो हम उसको भी देख सकते हैं कि ये काफी ड्राई है, मतलब उसको कोई ना कोई तकलीफ है। साथ ही साथ हम उसका रेक्टल टेम्परेचर, मतलब हम पीछे से टेम्परेचर चेक करते हैं उनका एनस के थ्रू, तो रेक्टल टेम्परेचर उनका देख सकते हैं। नॉर्मल डिजिटल थर्मामीटर जो हम घरों में यूज करते हैं उससे भी हम यूज कर सकते हैं और उससे हम टेम्परेचर देख सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 102.5 डिग्री मैक्सिमम रेंज है।
1: अच्छा।
0: और मिनिमम रेंज है 99.9, 100 से स्टार्ट होती है 102.5। यदि इस रेंज में टेम्परेचर है तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। यदि इससे ऊपर जा रहा है 103, 103.5, आजकल तो 104, 105, 106 के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें काफी हाई टेम्परेचर के कारण हाइपोथर्मिया, पेट खाना छोड़ देता है। लोग ये सोचते हैं गर्मी है, एक आध दिन छोड़ देते हैं, दूसरे दिन तक वो 103, 104 हो जाता है। फिर आदमी सोचता है आज भी खाना नहीं खा रहा है, ठीक है कल लेके जाएंगे डॉक्टर, वो 105, 106 करके लाते हैं। ब्लड रिपोर्ट चेक करने पर डॉग में अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं पाया जाता, बट बिकॉज ऑफ दी हीट वेव्स इनका हाइपरथर्मिया हो जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर जो हाइपोथैलेमस है हमारी बॉडी में वो टेम्परेचर अपना राइज कर लेता है और जिसके कारण ये तकलीफ बन जाती है। पेशेंट्स एनोरेक्सिया में चले जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं, वीकनेस आती है और कई बार तो इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, वो खड़े तक नहीं हो पाते।
1: गर्मी के मौसम में हम पशुओं का आवास और आहार का प्रबंधन कैसे किया जाए?
0: मैम आवास के लिए तो बेस्ट है कि आप उनके लिए शेडी प्लेसेस दें। घर के अंदर हैं तो आप एसी और कूलर का प्रबंध बनाएं। घर के अंदर नहीं रख सकते हैं तो आप बाहर एक शेडी प्लेस, शेड नॉर्मल या फिर हरी कनात बांध करके उनको दे सकते हैं, जिसमें वो अपना गुजारा कर लें कुछ दोपहर का जो टाइम है 12 से 4 का, उस समय के लिए। आहार के लिए तो मैडम फ्रोजन फूड्स, आइसक्रीम्स, खीरा, कर्ड, राइस, ठंडा दूध, ये सब चीजें उनको दे सकते हैं।
1: सर पशुओं को कौन कौन से जो वैक्सीन होती है, टीकाकरण होता है और क्यों कराना जरूरी होता है और कब कब कराना चाहिए?
0: मैडम पशुओं का टीकाकरण जो है वो बेसिकली डॉग्स का हम देखेंगे तो वो 45 दिन से शुरू हो जाता है। 45 दिन में उनका पहला टीका लगता है जिसको बोलते हैं 9-in-1। उसमें 5 वायरसेस और 1 लेप्टोस्पायरा के 4 स्ट्रेन होते हैं। उसके कई सारे आजकल एडिशनल फॉर्म्स आ गए, 10-in-1, 11-in-1 भी आ गया है, लेकिन 9-in-1 सबसे बेसिक है और इजिली है इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है और बेस्ट है। आप 9-in-1 से पहला 45 दिन पे उसको वैक्सीनेशन करें, उसके बाद उसकी डिवर्मिंग बहुत जरूरी है।
1: अच्छा।
0: पहले पेट्स को 30 दिन पे डिवर्मिंग करनी चाहिए, जब आप नवजात पशु लेकर के आ रहे हैं, किसी पपी को खरीद के ला रहे हैं, तो 30 डेज पे उसकी फर्स्ट डिवर्मिंग कर दें। डिवर्मिंग के 15 दिन बाद उसका पहला वैक्सीन लगवाएं। पहला वैक्सीन लगने के बाद उसका बूस्टर जरूर लगवाएं, जैसे हमने कोरोना में लगवाए थे, कोरोना में कोविशील्ड कोवैक्सीन, वैसे इनके बूस्टर्स हमने समय पे लगवाए, उसी तरह इनके भी वैक्सीन के बूस्टर हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रेबीज एक लाइलाज बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। रेबीज का वैक्सीन पशुओं में 90 दिन पे लगता है, पशु पैदा हुआ उससे 90 दिन, डेट ऑफ बर्थ जानना बहुत जरूरी है, आप उसके 90 दिन होते ही उसका वैक्सीन
1: 90 दिन से पहले भी लग सकता है?
0: 90 दिन से पहले नहीं लगा सकते मैम, यदि वो स्ट्रेप अप है तो भी उसकी एक अंदाजन उम्र पता चल जाती है, उसकी बॉडी कदकाठी वेट देख करके, उसके दांत देख करके और उसकी बेसिक ग्रोथ देख करके, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये 2 महीने का होगा या 30 दिन का होगा। यदि वो 60 दिन का है, 30 दिन का है या उसके बीच का भी है, तो कुछ वेट कर करके, क्वारंटाइन पीरियड मान करके, उसमें 1 सप्ताह या 2 सप्ताह या 3 सप्ताह वेट करके रेबीज का वैक्सीन लगाया जा सकता है। रेबीज एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है, इट इज़ अ वेरी नोटोरियस वायरस, वो बहुत ही बदमाश वायरस है। जैसे हम जानते थे कि कोरोना को रोकने के लिए हमारा सैनिटाइजर ही काफी है, या हमारे मास्क काफी है, हमने हर चीज को सैनिटाइज किया और हमने उसको यूज किया, वैसे ही रेबीज भी है तो वो बहुत कमजोर, लेकिन जब बच गया, यदि हमने उसमें लापरवाही करी और हमसे वो चूक होके वो बच गया, तो वो सबसे खतरनाक बन जाता है। किसी ने उसको बाइट करी, कुछ भी आपको लक्षण लग रहा है, आप तुरंत जाके वैक्सीन लगवा लें, जिसमें बोलते हैं प्री बाइट एंड पोस्ट बाइट।
1: कितने समय, जैसे अगर किसी डॉग ने जो रेबीज हुआ है उसने बाइट किया है किसी को, तो कितने समय के अंतराल पे हम
0: उसमें, मतलब, कितना समय बोलूंगा कि समय का इंतजार ना करा जाए, वैसे तो 24 घंटे तक का समय रहता है, लेकिन हमें समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, आजकल तो हर इंसान के लिए अवेलेबल है 24/7 हॉस्पिटल्स पूरे भोपाल में। किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, बहुत महंगा वैक्सीन नहीं आता है, 300, 350, 400 रुपए के बीच का वैक्सीन है, आप वो वैक्सीन लेकर के लगवा लें। वैक्सीन लगवाने के साथ आपको डॉग काटा है तो फर्स्ट एड नाम की चीज होती है, फर्स्ट एड में हमको सबसे पहले उसके अपने हाथ उसके साबुन से धुलवाने हैं, बीटाडीन, सेवलॉन या फिर सैनिटाइजर ही क्यों ना, आप उससे उसके हाथ का घाव जो है वो पूरा वाइप करें, और तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो सके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा इसके अंदर अंदर जाके आप एक वैक्सीन लगवा लें।
1: और अगर समय पे यदि वैक्सीन नहीं लगा पाया इंसान, तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे हमें?
0: सिम्टम्स मैडम बहुत एग्रेवेटेड होते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे कि पानी से डर जाना, आवाज से लैरिंजाइटिस हो जाती है, आवाज नहीं निकाल पाता इंसान, संग ढंग से बोल नहीं पाता, लाइट से डरना,
1: तो ये सारे सिम्टम्स जो दिख रहे हैं ये ठीक नहीं होते हैं?
0: ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी है मैडम।
1: अच्छा।
0: जैसे हमने कोरोना का आज तक कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए, सिर्फ हमने वैक्सीन ही एक उपाय ढूंढा, वैसे ही रेबीज है, रेबीज का भी कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक वैक्सीन ही उसका आखिरी उपाय है। इसलिए हमको जागरूक रहना है, यदि हमारे आसपास किसी भी डॉग, यदि हम खुद ही क्यों ना हम हमारा पेट पालें, हमने उसको वैक्सीन भी लगवा रखी, तो भी हमारा फर्ज बनता है कि हम स्वयं वैक्सीन लगाएं और जिसको भी काटा है उसको भी वैक्सीन लगवाने की सलाह दें।
1: डॉग को वैक्सीन लगाना भी जरूरी है और हमें खुद को भी
0: लगाना जरूरी है। यस, बिल्कुल मैडम, क्योंकि हमारे डॉग के संपर्क में तो रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं याद रहता कि हमारा डॉग किस किस के संपर्क में गया है।
1: अच्छा।
0: हमारे डॉग वॉकर्स के भरोसे छोड़ देते हैं हम, हमारे स्टाफ प्यून या घर में जो हाउस हेल्प है उनके भरोसे छोड़ देते हैं डॉग को, डॉग जाता है घूम फिर के आता है, लड़ झगड़ के आ गया, आपका डॉग आ गया, आपके डॉग को आपने बोला कि ठीक है भाई उसको जाओ डॉक्टर साहब के पास ले जाओ, डॉक्टर साहब ने जाके उसको वैक्सीन लगा दी पोस्ट बाइट, वो वापस घर गया, ओनर के साथ घर में खेल रहा है, उसके टॉयज छू रहा है, उसके सलाइवा से तो सिक्रीट होता है मैडम रेबीज वायरस, उसी से तो
1: घर के जितने भी मेंबर हैं सभी को वैक्सीन लगवा,
0: प्रिकॉशन रहना चाहिए। अच्छा। जो भी उसके कांटेक्ट में आता है उसको प्रिकॉशनरी रहना ही चाहिए कि हमको वैक्सीनेशन कराना है, और हमारे डॉग को किसी ने काट लिया है क्यों ना हम सभी वैक्सीनेशन साल में एक बार करा लिया करें।
1: अच्छा, साल में एक बार जरूरी है।
0: आपको आपके डॉग और किसी और डॉग से भी, कैट से भी, किसी भी एनिमल से भी यदि बाइट का कोई भी खतरा है तो वो दूर हो जाएगा।
1: और जो नहीं पालते उनको भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है
0: यदि वो पेट के संपर्क में आते हैं तो, यदि उनको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी जगह रह रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉलोनी में काफी सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स तो नहीं रखे हैं घर में पेट, लेकिन बच्चे
1: खेलते हैं ना
0: पेट्स के साथ, हाँ, खेलते हैं पपीज के साथ, हाँ, छोटे छोटे किटन्स के साथ, हाँ, जाके रोज दिन भर खेलते,
1: हाँ, उनको पसंद
0: अब बच्चों
1: है।
0: को यदि चोट लग जाती है तो बच्चे घर में आके ये बात छुपाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कल फिर मम्मी या पापा डांट देंगे और नहीं खेलने देंगे, तो इसलिए वो इस बात को छुपा देते हैं और वो अपने हाथ में कोई भी क्रीम कुछ भी पाउडर लगा करके चुपचाप बैठ के पढ़ाई करके नेक्स्ट डे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन इस बात को छुपाना नहीं चाहिए। आपके बच्चे यदि खेल रहे हैं तो आप जागरूक हो, आप अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। ये कोई वैक्सीन जानलेवा नहीं है, ये बहुत अच्छा वैक्सीन है, बहुत सेफ वैक्सीन है। इस वैक्सीन से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो आपका भला ही हो। किसी भी हॉस्पिटल में आपके घर के पास जो भी हॉस्पिटल हो, बच्चा है तो कोई पीडियाट्रिक डॉक्टर हो उनके पास चले जाएं, लेडीज हैं तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, कोई भी जनरल फिजिशियन के पास चले जाएं, या आपके घर के आसपास कोई गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हो उसमें भी जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं। प्राइवेट में इसके चार्जेस हैं लेकिन बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, 300 रुपए में आराम से ये वैक्सीन अवेलेबल है।
1: सर ये तो बात हुई पेट्स की, अब हम बर्ड्स की बात करना चाहते हैं, तो बर्ड्स के बारे में कुछ बताएं।
0: बर्ड्स को मैडम मेरे हिसाब से जो हमारे घर के बाहर पेड़ों पे आते हैं उनके लिए हम कुछ पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और कुछ दाने की व्यवस्था कर सकते हैं। बर्ड का मिश्रित मल्टीग्रेन फूड आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, पूरे हमारे जहांगीराबाद के एरिया में काफी सारे बर्ड मार्केट लगता है, वहां पे बहुत सारी क्वांटिटी में अलग अलग तरह से बर्ड फूड अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां से 150 रुपए का बर्ड फ्लू ला करके अपने घर के पास थोड़ा सा कटोरी में लेकर के पेड़ पे लटका सकते हैं, जिसमें वो बर्ड दिन भर उसमें दाना चुगती रहेगी। और अन्यथा आप अपने घर में खुद स्वयं बना सकते हैं, जिसमें कि जौ, बाजरा, खली, चरी, चुनी, ये सब चीजें आप मिला सकते हैं। जो पाउडर करा हुआ अनाज है उसको मिला सकते हैं, दलिया मिला सकते हैं,
1: अच्छा,
0: छोटे छोटे चावल के दाने डाल सकते हैं, जौ, बाजरा, ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, तो आप मक्का यूज कर सकते हैं। आप ये सब अवेलेबल ड्राई फूड, ड्राई ग्रेन्स के फॉर्म में उस कटोरी में रख दें और उनको खाने दें, साथ में पानी की व्यवस्था बनाए। यदि घर में पेट्स हैं, यदि हम घर में एक केज में बर्ड्स पाले हैं या हमने घर में एक बहुत बड़ा केज बना रखा है बर्ड्स की व्यवस्था के लिए, तो हम उन बर्ड्स के लिए भी एक कुछ एडिशनल दे सकते हैं। जैसे कि हम हमारी बर्ड्स के लिए कुछ हल्का सा स्प्रे या पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें वो हमारे बर्ड्स मतलब गर्मी में ठंड का मजा ले सके। जैसे कि उसमें वो खुल के खेले, नहाए, फाउंटेन में उछल कूद के अपने आप में स्प्रे कर ले। जैसे पैरट्स को बहुत मजा आता है, आप जब भी उनपे स्प्रे करें तो वो पूरे पंख खोल के आराम से ऐसे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे कि बहुत अच्छे से उनको मजा आ रहा हो स्प्रे और पूरी बॉडी में आगे और पीछे कर दे। ऐसी छोटी छोटी चिड़ियाओं के लिए आप एक छोटा सा बाउल या फाउंटेन रखें तो वो दिन भर उसमें पानी में खेलती रहेंगी। और साथ ही साथ हम हमारी बर्ड्स को फ्रूट्स सकते हैं,
1: अच्छा,
0: इस मौसम में हम उनको ठंडे फल खिला सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ तोता है तो वो अमरूद खाता ही है, अमरूद तो अवेलेबल नहीं है तो हम तरबूज दें, आम दें, चीकू दें, कीवी दें, इवन हम कुछ फलों में विटामिन सी के लिए नींबू भी निचोड़ के दे सकते हैं,
1: अच्छा
0: जी, जिससे कि उनको विटामिन सी की मात्रा भी मिले।
1: अच्छा।
0: और कुछ मल्टीविटामिन ड्रॉप अवेलेबल है जैसे कि बर्ड प्लस, वेन ग्रो, जो इजिली मार्केट में मिल जाते हैं, आप कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं उस पानी में और खाने में वो उसको पर्टिकुलरली चूज करके खा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पेट्स की, एक हमारे घर में आजकल नया पेट है, एक्सोटिक पेट, जिसका नाम है रैबिट और गिनी पिग्स। पहले हाँ। तो ये सिर्फ लेबोरेटरी एनिमल्स के नाम से ही जाने जाते थे, सिर्फ इन पर ड्रग्स और दवाइयां ही टेस्टेड होती थी, कुछ कुछ फार्मेसी के प्रोटोकॉल चलते रहते थे और ये बेचारों का जीवन सिर्फ केजेस में ही रह जाता था। लेकिन अभी अभी बहुत रिसेंटली मैंने देखा कि रैबिट, गिनी पिग, इवन हैमस्टर्स का भी बहुत अच्छा चलन आ गया है। लोग आजकल रैबिट और गिनी पिग्स को बिल्कुल ऐसी तरह से पाल रहे हैं जैसे कि डॉग और कैट। काफी सारे लोग कॉल करके पूछते हैं कि सर आप रैबिट देख लेंगे, आप हमारे गिनी पिग देख लेंगे, क्योंकि इसके पेट प्रैक्टिशनर्स भी नहीं मिलते उनको इजीली। बहुत सारे पेट क्लिनिक्स हैं लेकिन उनको डर लगता है, वो उनको बोल देते हैं कि हम रैबिट और गिनी पिग्स नहीं देखते। तो इसीलिए रैबिट और गिनी पिग्स भी आजकल बहुत सारे पेट्स मतलब पेट पेरेंट्स पाल रहे हैं।
1: हाँ।
0: और इनके लिए भी हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: हरे पत्तों की सब्जियां, पालक, मूली, गोभी और जो भी पत्तेदार सब्जी है, मेथी, धनिया, पुदीना, आप इनको, गाजर, आलू बॉइल्ड, आप टमाटर, ये सब चीजें, इवन फल, पपीता, केला, तरबूज, आम, चीकू, कीवी, आप इनको दे सकते हैं खाने के लिए। अंगूर, ये सब चीज़ें ये बहुत पसंद करते हैं। साथ ही में हम इसमें लेमन ड्रॉप्स ऐड करें, और इनके लिए जो बेडिंग मटेरियल है उसकी में आजकल कई लोग बेडिंग मटेरियल यूज करते हैं जिसमें कि ये लोग हे यूज करते हैं, बेसिकली अच्छा। सूखी हुई घास।
1: हाँ हाँ।
0: और इन लोगों के लिए टिमोती हे भी अवेलेबल होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग हरी घास या दुआ घास, जो रैबिट्स और खाते हैं। इसमें भी इनको पानी की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाती है।
1: अच्छा।
0: तो गर्मियों में इनके लिए हरी घास और लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लेमन ड्रॉप्स, नींबू के कुछ बूंद, कुछ भी एडिशनल आप उसमें ऐड करें तो उससे उनको बहुत फायदा मिलता है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, और मैं चाहूंगी एक अच्छा सा संदेश दें आप हमारे सभी श्रोताओं को, उनकी अपने पेट एनिमल के लिए भी और जो हमारे घर के बाहर जो जानवर हैं उनके लिए भी।
0: मैम मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि जियो और जीनो दो का मैसेज जो है वो बहुत अत्यधिक हमारे आज के लाइफस्टाइल में लागू होता है। सभी के लिए हमको सोचना चाहिए और सस्टेनेबल एनवायरमेंट के लिए बारे में हमको आगे चलना चाहिए कि हम जैसे भी हैं पन्नियों का कम से कम उपयोग करें, ताकि हमारे पेट्स को या फिर हमारे जानवर जो पशु हैं बाहर घूम रहे हैं, गाय घूम रही हैं, आवारा पशु हैं, वो इन पन्नियों के द्वारा, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि अननोटिस्ड है अभी भी, जिसमें पॉलिथीन का बैन होना अत्यधिक जरूरी होता जा रहा है, ना कि हमारे पोल्यूशन के लिए बल्कि हमारे एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि ये बेचारे हम कहीं भी हाईवेज पे जा रहे हैं, खा रहे हैं बिस्किट और फेंक दे रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं फेंक दे रहे हैं, ये सारी पन्नियां कहीं ना कहीं हमारे ही लाइफ साइकिल में वापस आएंगी और हमें इसके लिए बहुत बहुत बहुत सारी डेंजरस सिचुएशंस आगे देखने को मिल सकती हैं। इसलिए पॉलिथीन का कम से कम उपयोग करें, हमारे जानवरों को बचाएं।
1: अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर अंकुर नारद जी से, और सर आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, और चलते चलते हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी अदिति गौड की, और साउंड रिकॉर्डिंग थी अमित कुंदानी का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। अब हमारी पूरी टीम को दे अनुमति, नमस्कार, सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अंततः स्वामी जी बंबई से जहाज में बैठकर अमेरिका चले। बंबई छोड़कर जहाज दक्षिणी दिशा में कोलंबो की ओर चला। यात्रा का अंत होगा अज्ञात अमेरिका के अपरिचित जनसमाज में। जब तक भारत की पुण्य भूमि दिखाई देती रही, तब तक वे उसे सतृष्ण नयनों से देखते रहे। और जो लोग प्रेम पूर्वक विदा काल में इतने दूर आए हैं और यात्रा की सारी व्यवस्था कर दी है, अथवा जो लोग आ तो नहीं पाए पर उनकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब की बातें वे याद करते रहे और सबकी मंगल कामना करते रहे। उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने अपने गुरु को स्मरण किया, मां शारदा को शीश नवाया और अपनी मां से आशीर्वाद मांगा। जन्मभूमि को छोड़कर जाते वक्त उनका दिल टूट रहा था। उन्होंने देखा चारों ओर केवल समुद्र की नील जल राशि। उन्होंने मन ही मन जन्मभूमि को प्रणाम करके कहा, त्याग भूमि को छोड़कर मैं भोग भूमि की ओर चला।
1: परंतु उस भोग भूमि में भी वे भोग के लिए नहीं बल्कि कठिन कर्मों का पालन करने गए थे। वहां जाते ही वे जीवन युद्ध में जुट गए। विरामहीन प्रचार व्रत, अनिश्चयता और हाड़ तोड़ परिश्रम, विश्राम करने तक का अवसर नहीं परंतु वैदिक ज्ञान का अनंत भंडार जिनके हृदय में हो, उन्हें भय या उद्वेग कहां। जहाज असीम सागर के जल में तैरने लगा। स्वामी जी देश कालातीत अनंत के ध्यान में डूब गए।
0: धीरे धीरे समुद्र यात्रा के तौर तरीके और रीति नीतियों के वे अभ्यस्त हो गए। उनकी सरलता, मधुर व्यवहार और व्यक्तित्व ने यात्रियों का हृदय जीत लिया। स्वयं कैप्टन साहब उनसे गपशप करते और आग्रह पूर्वक पूरे जहाज को घूम घूम कर दिखाते। प्रायः सभी यात्री विदेशी थे और स्वामी जी उन लोगों के शिष्टाचार से अनभ्यस्त थे, किंतु ये सारी दूरियां क्रमशः मिट गईं। स्वामी जी की समुद्र यात्रा का विवरण हमें उनके 10 जुलाई को योकोहामा जापान से लिखे पत्र में मिलता है। उस पत्र में कोलंबो तक का विवरण है।
2: अपने कार्यकलाप की सूचना तुम लोगों को बराबर ना देते रहने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यात्रा में जीवन बहुत व्यस्त रहता है और विशेषतः मुझे तो बहुत सा सामान असबाब साथ में लिए घूमने की आदत नहीं थी। इन सब वस्तुओं की देखभाल में ही मेरी शक्ति लग रही है। ये सचमुच एक बड़े झंझट का काम है। बंबई से एक सप्ताह के बीच कोलंबो पहुंचा। हमारा स्टीमर वहां दिन भर ठहरा रहा। इस बीच में मुझे शहर देखने का अवसर मिला। हमने सारा शहर देख डाला। वहां की और सब वस्तुओं में भगवान बुद्धदेव की लेटी हुई मूर्ति की याद मेरे मन में अभी तक ताजी है। मंदिर में पुरोहितों के साथ वार्तालाप करने की चेष्टा की, किंतु वे लोग सिंहली भाषा के अतिरिक्त दूसरी कोई भाषा जानते नहीं हैं। अतः मुझे बातचीत करने की चेष्टा का त्याग करना पड़ा। वहां से प्रायः 80 मील दूर सिंहल के मध्य प्रदेश में अवस्थित कैंडी शहर सिंहली बौद्ध धर्म का केंद्र है, किंतु मुझे वहां जाने का समय नहीं था। यहाँ गृहस्थ बौद्धगण क्या पुरुष क्या स्त्री मत्स्य मांस भोजी हैं, केवल पुरोहित गण निरामिष हैं। सिंहलियों का पहनावा और चेहरा तो मद्रासियों के समान ही है। उनकी भाषा के संबंध में मैं भी कुछ नहीं जानता, तथापि उच्चारण सुनकर प्रतीत होता है कि तुम्हारी भाषा तमिल के अनुरूप ही है।
1: कोलंबो छोड़कर जहाज मलाया की ओर बढ़ चला।
2: कोलंबो छोड़कर जहाज बंगाल की खाड़ी पार कर मलय के अंतर्गत पेनांग में आकर रुका। पेनांग समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू है। शहर छोटा होने पर भी सुनिर्मित एवं सुविन्यस्त आधुनिक अन्य नगरों की भांति ही साफ सुथरा है। मलय निवासी अधिकांश मुसलमान हैं। जगह जगह पर अनेक चीनी लोग भी हैं एवं कालक्रम से अनेक भारतीय उसे स्वदेश मानने लगे हैं। किसी जमाने में मलयवासियों में कोई कोई समुद्र डाकू की वृत्ति अपनाकर व्यापारी जहाजों के सौदागरों में भय उत्पन्न कर देते थे, किंतु आजकल जहाजी बेड़ों के महामय से ये लोग डकैती छोड़कर शांतिपूर्ण धंधों में लग गए हैं।
0: मलाया के बाद जहाज पहुंचा सिंगापुर।
2: मार्ग में सुमात्रा द्वीप की पर्वतमाला दिखाई पड़ती है। इनमें जगह जगह पर समुद्री डाकुओं के अड्डे थे, जिन्हें हमारे जहाज के कप्तान ने अंगुलियों के इशारे से दिखा दिया। एक छोटा द्वीप होने पर भी सिंगापुर जहाजों के आवागमन के मार्ग में महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित होने के कारण एक अति सुंदर और बड़े बंदरगाह में परिणित हो गया है। सिंगापुर उन दिनों स्ट्रेटस सेंटलमेंट्स की राजधानी था। वहां एक सुंदर वानस्पतिक उद्यान है, उसमें ताड़ जाति के तरह तरह के पेड़ लगाए गए हैं। यहां पंखेनुमा पत्रों वाले ताड़ के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं और ब्रेड फ्रूट नामक पेड़ तो जहां देखो वहीं मिलता है। यहां मैंगोस्टीन नामक फल भी बहुत होता है। यह स्थान भूमध्य रेखा के बहुत निकट है। सिंगापुर में एक बढ़िया अजायब घर भी है, तथापि बंदरगाह के लोगों के जीवन में जैसा सामान्यता होता है, यहां भी वैसा ही मदिरापान का दोष और चरित्र दोष अत्यधिक है। बंदरगाह में कुछ देर के लिए जहाज के ठहरने का सुयोग पाकर मैंने उतरकर खास खास दर्शनीय स्थानों को देख लिया।
1: सिंगापुर के बाद जहाज चला हांगकांग की ओर।
2: जहाज अंग्रेजों के उपनिवेश हांगकांग द्वीप में रुका। संस्कृति की दृष्टि से हांगकांग बिल्कुल चीन नहीं है। सिंगापुर में ही मैंने चीनी सभ्यता का परिचय पाया था, क्योंकि सिंगापुर में चीनियों की संख्या बहुत अधिक है। हांगकांग में आकर मैंने सब कुछ लक्ष्य किया और हांगकांग तो वास्तव में चीन ही है। ज्यों ही जहाज वहां लंगर डालता है कि सैकड़ों संख्या में चीनी डोंगियां आपको तट पर ले जाने के लिए घेर लेती हैं। दो दो पतवारे होने के कारण ये डोंगियां कुछ विचित्र सी लगती हैं। माझी डोंगी पर ही सकुटुंब रहता है। पतवारों का संचालन प्रायः स्त्री ही करती है। एक पतवार दोनों हाथों से चलाती रहती है और दूसरी को पैर से, और उनमें से 90% स्त्रियों के पीछे उनके बच्चे इस प्रकार बंधे रहते हैं कि वे आसानी से हाथ पैर डुला सकें। मजे की बात तो ये है कि नन्हे चीनी बच्चे अपनी माताओं की पीठ पर आराम से झूलते रहते हैं और उनकी माताएं कभी अपनी सारी शक्ति लगाए पतवार घुमाती हैं, कभी कभी भारी बोझ उठाती हैं, या कभी बड़ी फुर्ती के साथ एक डोंगी से दूसरी डोंगी पर कूद जाती हैं। लगातार इधर से उधर जाने वाली डोंगियों और वाष्प नौकाओं की भीड़ सी लगी रहती है। हर समय इन चीनी बाल गोपालों के शिखायुक्त मस्तकों का चूर चूर हो जाने का डर रहता है, पर उन्हें इसकी क्या परवाह। उन्हें इन बाहर की हलचलों से कोई सरोकार नहीं। वे तो अपना चावल की रोटी कुतर कुतर कर खाने में मस्त रहते हैं, जो काम के झंझटों से बौखलाई हुई मां उन्हें दे देती है। चीनी बच्चों को पूरा दार्शनिक ही समझिए। जिस उम्र में भारतीय बच्चे घुटनों के बल भी नहीं चल पाते, उस उम्र में वो स्थिर भाव से चुपचाप काम पर जाते हैं। अभाव का महत्व ये अच्छी तरह सीख और समझ लेता है। चीनी और भारतीयों की नितांत दरिद्रता ने ही उनकी संस्कृतियों को निर्जीव बना रखा है। साधारण भारतीय या चीनी के लिए उसका दैनिक अभाव इतना भयंकर लगता है कि उसे कुछ और सोचने की फुर्सत नहीं। हांगकांग एक बड़ा ही सुंदर नगर है। वो पहाड़ के शिखरों और ऊंची ढालू जगहों पर बसा हुआ है। वहां शहर की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। पहाड़ के ऊपर एक ट्राम गाड़ी प्रायः एकदम सीधी चढ़ती है। लोहे के तारों की रस्सी से खींचकर और भाप के द्वारा वो ऊपर की ओर परिचालित होती है। हांगकांग में हम लोग 3 दिन रहे। वहां से कैंटन देखने गए। यह शहर एक नदी के चढ़ाव की ओर हांगकांग से प्रायः 80 मील पर मिलता है। वहां की भीड़ भाड़ और वहां के व्यस्त जीवन का क्या कहना। नावें तो इतनी अधिक हैं कि मानो उनसे नदी पट गई हो। ये नावें केवल व्यापार के ही काम नहीं आती, बल्कि सैकड़ों ऐसी भी हैं जिनमें घर की भांति लोग रहते हैं, और इनमें से बहुतेरी बहुत बढ़िया हैं और बड़ी बड़ी हैं। वास्तव में इन्हें पानी पर तैरते हुए घर ही समझिए। सच पूछो तो ये बड़े बड़े दुमंजिले या तिमंजिले मकानों की भांति हैं, जिनके चारों ओर बरामदा है और बीच में रास्ते, पर ये सब कुछ पानी के ऊपर तैरता हुआ है।
1: ये रहा कैंटन नगर का वर्णन, जो एक तैरता नगर प्रतीत होता है। आगे जानिए उनकी चीनियों के बारे में प्रतिक्रिया।
2: जिस जगह हम लोग उतरे वो चीन सरकार की ओर से विदेशियों के रहने के लिए दी गई है। हमारे चारों ओर नदी के दोनों किनारों पर मीलों तक ये नगर बसा हुआ है। एक असंख्य जनसमूह जिसमें निरंतर कोलाहल, धक्का मुक्की और परस्पर स्पर्धा का ही बोलबाला दिखाई देता है, परंतु इतनी आबादी, इतनी क्रियाशीलता होते हुए भी मैंने इतना गंदा शहर अब तक नहीं देखा। अर्थात जिसे आप लोग भारतवर्ष में गंदगी समझते हैं उस दृष्टि से नहीं, चीनी लोग कूड़े का एक तिनका भी जाया नहीं होने देते। पर ऐसा जान पड़ता है कि इन लोगों ने कभी ना नहाने की कसम खा ली है। हर एक घर में नीचे दुकान है और छत पर लोग रहते हैं। गलियां इतनी सकरी हैं कि उनमें से गुजरते हुए दोनों ओर की दुकानों को आप हाथ फैलाकर लगभग छू सकते हैं। हर 10 कदम पर मांस की दुकानें मिलती हैं। ऐसी दुकानें भी हैं जिनमें कुत्ते बिल्लियों का मांस बिकता है। हाँ, इस तरह का मांस वही लोग खाते हैं जो बहुत गरीब हैं।
1: चीनी महिलाओं के लिए उन्होंने लिखा था,
2: चीनी महिलाएं बाहर दिखाई नहीं देती, उनमें उत्तर भारत के ही समान पर्दे की प्रथा है। केवल मजदूरों की ही औरतें बाहर दिखाई पड़ती हैं। इनमें भी एकाध स्त्री ऐसी दिखाई पड़ जाएगी जिसके पैर बच्चे के पैर से भी छोटे हैं और वो लड़खड़ाती हुई चलती हैं।
0: स्वामी जी चीन वासियों की दरिद्रता, जीवन यापन प्रणाली, श्रम परायणता, राजनीतिक और सांस्कृतिक विभिन्न पक्षों को लक्ष्य कर ही निवृत्त नहीं हुए। वे उन लोगों के धर्म से भी परिचित होने को उत्सुक थे। उन्होंने लिखा है,
2: मैं बहुत से चीनी मंदिरों में गया। कैंटन में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो प्रथम बौद्ध सम्राट और सबसे पहले बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले 500 पुरुषों का स्मारक स्वरूप है। मंदिर के बीचों बीच बुद्ध देव की मूर्ति स्थापित है, उसके नीचे सम्राट की और दोनों ओर शिष्य मंडली की मूर्तियों की कतारें हैं। ये सभी लकड़ी में खूबसूरती से खोदकर बनाई गई हैं।
0: उन्होंने बौद्ध मूर्तिकला का भलीभांति पर्यवेक्षण किया तथा लक्ष्य किया कि भारतीय मंदिरों के साथ इन मंदिरों की समानता है। निश्चय ही विषमता भी काफी थी एवं इस वैषम्य के बीच ही चीन वासियों की मौलिकता का परिचय पाकर वे आनंदित हुए थे।
1: इसके पश्चात विशुद्ध चीनी मंदिर देखने की उनकी आंतरिक इच्छा हुई, किंतु वे मंदिर ऐसे स्थानों पर स्थित थे जहां विदेशियों का प्रवेश वर्जित था, तो फिर क्या किया जाए। जब उन्होंने दुभाषी से इस संबंध में जिज्ञासा की तो पता चला कि वहां जाना तो असंभव है, किंतु इससे उनकी इच्छा और प्रबल हो गई, चीनी मंदिर देखना ही होगा। उन्होंने दुभाषी से पूछा,
2: मान लो कि कोई विदेशी वहां चला गया तो फिर क्या होगा।
0: दुभाषिया बोला तो मंदिरवासीगण उस पर अत्याचार करेंगे।
1: स्वामी जी ने मन ही मन सोचा कि यदि मठवासी साधुगण ये जान जाएंगे कि वे हिंदू सन्यासी हैं, तो वे लोग उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। वे दुभाषिये और जर्मन सहयात्रियों से ऐसे किसी एक मठ में चलने का तीव्र अनुरोध करने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा,
2: चलो ना, देखें वे लोग हमें मार डालते हैं या नहीं।
0: वे मंदिर की ओर ज्यादा बढ़ नहीं पाए कि दुभाषिया चीख कर बोला, भागिए सज्जनों, भागिए, वो देखिए वे लोग धमकी देते हुए आ रहे हैं। वे क्रोधित हो गए हैं।
1: 2-3 व्यक्ति हाथों में लाठी लिए दौड़े आ रहे थे। उन लोगों की भयंकर मुद्रा देख स्वामी जी और दुभाषी के अलावा और सब भाग गए। स्वामी जी ने दुभाषी का हाथ पकड़कर रोक लिया।
2: अरे भाई, चीनी लोग अपनी भाषा में भारतीय योगी को क्या कहते हैं, इसे बताए बिना कैसे जा सकते हो।
0: दुभाषी से शब्द सीख कर वे जोरों से चीनियों से कहने लगे कि वे भारतीय योगी हैं और इस योगी के लिए प्रयुक्त चीनी शब्द ने जादू का कार्य किया। क्रुद्ध लोग श्रद्धापूर्ण भाव से उनके चरणों में झुक गए और फिर उठकर कर जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से अनेक बातें कहीं, जिसमें एक शब्द को स्वामी जी समझ सके, कवच। उन्होंने अनुमान किया कि यह हिंदू शब्द ही होगा, किंतु निसंदेह होने के लिए दूर खड़े दुभाषिये को चिल्लाकर पूछा कि ये लोग क्या चाहते हैं। दुभाषिया भय के कारण दूर भागकर इन सारे दृश्यों को देख किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसने कहा, महाशय, ये लोग भूत प्रेत एवं अपवित्र प्रभावों से बचने के लिए रक्षा कवच चाहते हैं। वे आपके आश्रय की याचना करते हैं। स्वामी जी क्या करेंगे ये अकस्मात सोच नहीं सके, क्योंकि सिद्धाई में वे विश्वास नहीं करते थे। तब उन्होंने एक युक्ति सोची। अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा लेकर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया और प्रत्येक टुकड़े पर वेद का पवित्रतम शब्द ओम संस्कृत में लिखकर उन लोगों के हाथों में थमा दिया। उन लोगों ने कागज के टुकड़े लेकर कृतज्ञता पूर्वक अपने माथे से लगाया और स्वामी जी को मठ के भीतर ले गए।
1: मठ के अत्यंत एकांत भाग में उन्होंने स्वामी जी को कुछ प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें दिखाई। वे संस्कृत भाषा में रचित एवं प्राचीन बंगला लिपि में लिखित थी। इस प्रकार भारतीय विचारधारा ने चीन पर अपना प्रबल प्रभाव डाला था। इसके बाद का विवरण स्वामी जी के इस पत्र में कुछ इस प्रकार पाया जाता है।
2: कैंटन से मैं फिर हांगकांग लौटा और वहां से जापान पहुंचा। पहला बंदरगाह नागासाकी था। यहां हमारा जहाज कुछ घंटों के लिए ठहरा और हम लोग गाड़ी में बैठकर शहर घूमने गए। चीनियों में और इनमें कितना अंतर है। सफाई में जापानी लोग दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। जापानी लोग ठिगने, गोरे और विचित्र वेशभूषा वाले हैं। उनकी चाल ढाल, हाव भाव, रंग ढंग सभी सुंदर हैं। जापान सौंदर्य भूमि है। प्रायः प्रत्येक घर के पिछवाड़े में बगीचा रहता है। इन बगीचों के छोटे छोटे लता वृक्ष, हरे भरे कुंज, छोटे छोटे जलाशय और नालियों पर बने हुए छोटे छोटे पत्थर के पुल बड़े सुहावने लगते हैं।

0: बिना पासपोर्ट के किसी भी विदेशी को जापान में भ्रमण करने नहीं दिया जाता। जान पड़ता है जापानी लोग वर्तमान आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण सचेत हो गए हैं। उनकी एक अच्छी सुव्यवस्थित सेना है जिसमें यहीं के अफसर द्वारा विष्कृत तोपें काम में लाई जाती हैं और जो संसार में अद्वितीय कही जाती हैं। ये लोग अपनी नौशक्ति बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने एक जापानी इंजीनियर की बनाई करीब 1 मील लंबी सुरंग देखी है।
1: स्वामी जी ने जापान के मंदिरों को ही नहीं देखा, वहां के कारखानों में भी गए।
0: दिया सलाई के कारखाने तो देखते ही बनते हैं। जो आवश्यक चीजें इनको लगती हैं, उन सबको अपने देश में ही बनाने की चेष्टा में लोग तुले हुए हैं। चीन और जापान के बीच में चलने वाली एक जापानी स्टीमर लाइन है जिसे ये लोग कुछ ही दिनों में बंबई और याकुहामा के बीच चलाना चाहते हैं।
2: जापान के मंदिरों को भी उन्होंने देखा था। पुरोहित वर्ग सामान्यतया रूढ़िवादी और परिवर्तन विरोधी होता है, किंतु स्वामी जी ने जापान के मंदिरों को देखकर और पुरोहितों से वार्तालाप कर जान लिया कि वे सब के सब बड़े बुद्धिमान हैं। आसानी से उन्नति करने का आधुनिक जोश पुरोहितों तक में प्रवेश कर गया है।
0: एशिया के ही एक देश नए जापान के शिल्पोद्योग ने मुझको मुग्ध कर दिया था। ऐसा सुंदर देश, ऐसे सुरुचि संपन्न नर नारी, उन लोगों के सब कुछ, घर द्वार, रास्ते, उद्यान, चाल चलन, भाव भंगिमा सुंदर है। और इन्हीं सब में ये विशाल कर्मोद्योग, नए विश्व की रीति नीतियों के प्रति वे अत्यंत जागरूक हैं और उन्हीं रीति नीतियों के अनुसार चलकर अपने देश की उन्नति के लिए वे कटिबद्ध हैं। मैं अपने देश की आर्थिक उन्नति के विचार में डूबा था।
1: मन ही मन जापान और चीन से भारत की तुलना कर स्वामी जी ने लिखा था,
0: जापानियों के विषय में जो कुछ मेरे मन में है वो सब मैं इस छोटे से पत्र में लिखने में असमर्थ हूँ। मेरी केवल ये इच्छा है कि प्रतिवर्ष यथेष्ट संख्या में हमारे नवयुवकों को यहाँ आना चाहिए। जापानी लोगों के लिए आज भारतवर्ष सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का स्वप्न राज्य है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? जीवन भर केवल बेकार बातें किया करते हो। आओ इन लोगों को देखो और इसके बाद जाकर लज्जा से मुंह छिपा लो। सठियाई बुद्धि वालों, तुम्हारी तो देश से बाहर निकलते ही जाति चली जाएगी। अपनी खोपड़ी में वर्षों के अंधविश्वास का कूड़ा करकट भरे बैठे सैकड़ों युगों के सामाजिक अत्याचार से जिनकी सारी मानवता कास्त हो चुका है, भला बताओ तो सही तुम कौन हो और तुम इस समय कर ही क्या रहे हो? मूर्खों, किताब हाथ में लिए तुम केवल समुद्र किनारे फिर रहे हो। यूरोपियनों के मस्तिष्क में निकली हुई बातों को लेकर बिना समझे दोहरा रहे हो। 30 रुपए की मुंशीगिरी के लिए अथवा बहुत हुआ तो एक वकील बनने के लिए जी जान से तड़प रहे हो। यही तो भारतवर्ष के नवयुवकों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। तिस पर इन विद्यार्थियों के भी झुंड के झुंड बच्चे पैदा हो जाते हैं जो भूख से तड़पते हुए उन्हें घेर कर बाबूजी खाने को दो कहकर चिल्लाते रहते हैं। क्या समुद्र में इतना पानी भी ना रहा कि तुम उसमें विश्वविद्यालय के डिप्लोमा, गाउन और पुस्तकों के समेत डूब मरो?
2: अनेक संक्षिप्त किंतु अग्निवर्षी वाक्यों में स्वामी जी ने अपने देश की आशा और विश्वास के केंद्र स्थल शिक्षित युवकों का एक स्पष्ट चित्र खींचा, किंतु मात्र अभावात्मक या नकारात्मक पक्ष दिखाकर सबको निराशा के सागर में डुबाने के लिए तो स्वामी जी अवतरित नहीं हुए थे। इसी से उन्होंने उदात्त स्वरों से आह्वान किया,
0: आओ मनुष्य बनो। उन पाखंडी पुरोहितों को जो सदैव उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं बाहर निकाल दो, क्योंकि उनका सुधार कभी न होगा, उनके हृदय कभी विशाल न होंगे। उनकी उत्पत्ति तो सैकड़ों वर्षों के अंधविश्वासों और अत्याचारों के फल स्वरूप हुई है। पहले इनको जड़मूल से निकाल फेंको। आओ मनुष्य बनो, अपने अंधकूप से बाहर निकलो और बाहर दृष्टि डालो। देखो अन्य सब देश किस तरह आगे बढ़ रही हैं। क्या तुम्हें मनुष्य से प्रेम है? क्या तुम्हें अपने देश से प्रेम है? यदि हाँ तो आओ हम लोग उच्चता और उन्नति के मार्ग में प्रयत्नशील हों। पीछे मुड़कर मत देखो। अत्यंत निकट और प्रिय संबंधी रोते हों तो रोने दो, पीछे देखो ही मत, केवल आगे बढ़ते जाओ।
2: योकोहामा से स्वामी जी कैनेडियन पैसिफिक मार्ग के एम्प्रेस ऑफ इंडिया नामक जहाज से अमेरिका की ओर चले। इस जहाज पर दो भारतीय सहयात्री थे, एक जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा और दूसरे लालू भाई। जमशेद जी से स्वामी जी का परिचय जापान में ही हुआ था। जहाज ने 14 जुलाई को योकोहामा छोड़ा। स्वामी जी के 20 अगस्त के पत्र से रास्ते का थोड़ा सा समाचार हमें मिलता है।
0: जापान से मैं वैंकूवर पहुंचा। मुझे प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से से होकर जाना पड़ा। ठंड बहुत थी, गर्म कपड़ों के अभाव से बड़ी तकलीफ हुई। अस्तु किसी तरह वैंकूवर पहुंचकर वहां से कनाडा होकर शिकागो पहुंचा और वहां लगभग 12 दिन रहा।
1: स्वामी जी को लोगों ने रेशमी वस्त्रों से सजाकर भेजा था, परंतु गर्मी के दिनों में भी प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी इतना ठंडा रहता है कि गर्म कपड़ों की जरूरत होती है। इसका अंदाजा भारतीयों को नहीं था, अतः केवल जहाज में ही नहीं, जहाज से उतरकर भी स्वामी जी को ठंड में बहुत कष्ट झेलने पड़े।
2: प्राचीन भूभाग को छोड़कर 25 जुलाई मंगलवार संध्या 6 बजे स्वामी जी नवीन भूभाग के पश्चिमी तट पर एक छोटे द्वीप में स्थित वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे। वैंकूवर उत्तरी अमेरिका के कनाडा राज्य में स्थित है। वैंकूवर से दूसरे दिन सुबह 10:45 पर वे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग से प्रसिद्ध रॉकी पर्वतमाला को भेद कर पूर्व की ओर चल पड़े। मार्ग अत्यंत मनोरम था। अनेक नद नदियां, वन नगरों, महानगरों को पार कर ट्रेन चल रही थी और विनिपेग होकर स्वामी जी 30 जुलाई सन 1893 ईस्वी की रात के लगभग 10:30 बजे शिकागो नगर में उपस्थित हुए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन। कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको बता दें हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जीवन सौरभ, 7:15 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा 7:20 से। भूला भाई देसाई की पुण्यतिथि पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग सुनिएगा 8 बजे से। इतिहास के पन्नों से ये कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। साइबर क्राइम के बारे में आप सुनेंगे कार्यक्रम टेक गुरु में 9 बजे से। इस विषय पर जानकारी देंगे विषय विशेषज्ञ शिवेंद्र कुभांकर से। रानी रेकवार की वार्ता सुनेगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत विभूति सुनेगा 9:30 से। परिक्रमा और रेडियो रिपोर्ट आप सुन सकेंगे 10 बजे से। 10:30 पर सुनेगा कार्यक्रम काव्य गुंजन। सर विश्वेश्वरैया पर केंद्रित कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक आप सुन सकेंगे दिन में 11 बजे से। प्रस्तुति होगी दीपक नेमा और स्वाति गिरी की। युग प्रवर्तक विवेकानंदी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 11:30 से। ये थी जानकारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।